मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि तदनुसार 11 जून सन 2026 प्रातः के 5:55 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सूरज की पहली किरण के साथ हो चुकी है प्रातःकालीन की शुरुआत। थोड़ी ही देर में सूर्य की अनंत किरणें संपूर्ण धरती को अपने आगोश में समा लेंगी और संपूर्ण धरती एक नई ऊर्जा के साथ भर जाएगी। इसका प्रत्येक कण ऊर्जा और उल्लास से भरा होगा। इसी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाने हम लेकर आए हैं कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा

0: का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश

0: है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए चर्चा भी होनी उतनी ही जरूरी है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक भेंट वार्ता ओमकार सिंह त्यागी से। वार्ता का विषय है जल विलेय उर्वरकों से फसल पोषण, और आपसे बात कर रहे हैं सुशील कुमार राय। कार्यक्रम है कृषि चर्चा।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आजकल बहुत सारे स्मार्ट उर्वरक आ गए हैं, इनमें एक जल विलेय उर्वरक भी है। इससे फसल पोषण कैसे होता है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं ओमकार सिंह त्यागी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। त्यागी साहब, ये बताएं कि ये जो स्मार्ट उर्वरकों में जल विलेय उर्वरक है, ये है क्या?
3: नमस्कार किसान भाइयों। देखिए डॉक्टर साहब, तो हमारा जो जल विलेय उर्वरक हैं, जो पानी में घुल करके हम फसलों पर छिड़काव करते हैं, उनको हम जल विलेय उर्वरक या वाटर सोलबिल फर्टिलाइजर कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो हमारा फसलीय पौधा होता है वो दो तरीके से पोषण लेता है, एक जड़ के द्वारा लेता है, एक पत्तियों के द्वारा लेता है। जड़ में आमतौर पर किसान भाई DAP, यूरिया, पोटाश डालते हैं, जो जड़ के माध्यम से पौधा अवशोषित करता है। दूसरा, जलीय उर्वरक पत्तियों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनके द्वारा जलीय उर्वरक हम स्प्रे करने से पौधे में फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में उसका प्रवाह हो जाता है।
2: तो ये जल विलेय उर्वरक अलग अलग पोषक तत्व वाले होंगे?
3: जी, अलग अलग प्रतिशत मात्रा के आधार पर सरकार ने इनका मापदंड किया है। तो जैसे अगर मैं इसके प्रतिशतता के आधार पर किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ क्रम संख्या के अनुसार, जैसे पहला जो उर्वरक है यूरिया फास्फेट उर्वरक है, जिसमें 17% नाइट्रोजन होती है, 44% फास्फोरस होता है और पोटाश जीरो होता है।
2: यानी 17-44-0।
3: जी, 17-44-0। आमतौर पर आम भाषा में इसको 17-44 ही बोला जाता है किसानों की भाषा में।
2: तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीन पोषक तत्वों के लिए मुख्य रूप से जल विलेय उर्वरक हैं।
3: जी, इस दो हैं, इसमें 17% नाइट्रोजन है और फास्फोरस 44% है, पोटास इसमें 0% है।
2: इसी तरह के और फार्मुलेशंस होंगे?
3: और भी फार्मुलेशंस हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको विस्तृत से बताना चाहूंगा कि 17-44 का प्रयोग किसान भाई किस समय कर सकते हैं। तो मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि फसल में फूल आने से पहले और फूल आने के बाद, एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह के बाद 2-3 स्प्रे करेंगे तो इसमें फसल में गुणवत्ता और उत्पादकता पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन भी करते हैं, ड्रिप इरिगेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
2: चाहे वो फूल वाले पौधे हों, सब्जियां हों या बागवानी के, जहां ड्रिप लगा है वहां इसका प्रयोग हो सकता है।
3: हाँ, ड्रिप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। इसकी जो डोज है 50-70 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोल करके स्प्रे करना चाहिए।
2: अब जो और फार्मुलेशंस हैं, जैसे आपने 17-44 की बात की, इसके अलावा
3: दूसरा फार्मुलेशन है NPK 18-18-18।
2: अच्छा,
3: यूरिया फास्फेट उर्वरक आमतौर पर गांव में किसान भाई कहते हैं 18-18-18 ले आओ, तो 18-18-18 का मतलब होता है नाइट्रोजन 18% है, फास्फोरस 18% है, पोटास 18% है। इसमें सल्फर भी 6% अलग से होता है, जो इनबिल्ट होता है, जो इसके अंदर सल्फर होता है।
2: यानी चार पोषक तत्व हैं।
3: जी, चार पोषक तत्व होते हैं, बट FCO में इसको 3 ही लिखा जाता है, लेकिन सल्फर भी इसमें 6.5% होता है।
2: इसके अलावा
3: इसका हम स्प्रे करने से दानों में चमक आती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, उत्पादकता बढ़ती है और सल्फर की जो पूर्ति भी होती है स्प्रे करने से।
2: तो इस समय जो जायद की फसलें हैं, बागवानी है, गन्ने की फसल में इसका उपयोग हो सकता है?
3: जी, हो सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें तीनों चीजों इकट्ठी मिल जाएगी और इसकी जो स्प्रे की मात्रा है हम 10-15 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करेंगे। यानी कि आमतौर पर जो टंकी होती है ना 15-16 लीटर की, उसमें 100-150 ग्राम तक इसको रख सकते हैं और 15 लीटर पानी को उसके हिसाब से स्प्रे करेंगे। यानी कि प्रति लीटर 10-15 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे करना चाहिए।
2: त्यागी साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर

0: सारे सवाल होंगे जल विलय उर्वरक से फसल पोषण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9005609062 9005609062। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस समय जल विलय उर्वरकों का काफ़ी प्रयोग भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है किसानों के लिए, जैसे नैनो आ गया है, नैनो डीएपी आ गया है, तो आने वाले समय में इनका भविष्य बढ़ेगा। और जो नीचे हम खाद डालते हैं वो काफ़ी ज़मीन के अंदर एसिडिक नेचर हो जाती है, ज़मीन अम्लीय बन जाती है। अगर हम फसल पर पड़ने छिड़काव करेंगे तो फसल की बढ़वार भी होगी और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा होगा, किसान को इससे फ़ायदा मिलेगा।
0: ओमकार सिंह त्यागी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जल विलय उर्वरक से फसल पोषण कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुविचार।
3: वर्तमान भौतिकवादी जीवन में जो कुछ भी हम आचरण करते हैं वही हमारी चर्या होती है। अतीत में हमारे जीवन क्रम निर्धारित थे, आज की भागती जिंदगी में यह कठिन होता जा रहा है। तत्वदर्शियों का मानना है कि हमें अपने सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने सद्मार्ग को अपनाकर ही तपश्चर्या की जा सकती है। इसके लिए किसी जंगल पहाड़ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तप उष्णता गर्मी या ऊर्जा प्राप्त करने का नाम है। जैसे तपकर सोना खरा हो जाता है, दूध तपकर मलाई और फिर घी के रूप में अपनी चमक के साथ दिखने लगती है, सामान्य खाद्य पदार्थ भी तपने के बाद सुस्वादु हो जाते हैं। एक प्रकार से तप का अर्थ प्रखरता की स्थिति है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करने की आत्मिक प्रक्रिया भी तप है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में तप का विशेष महत्व है। जिस किसी ने जिस क्षेत्र में अपने को तपाया है, अपनी ऊर्जा लगाई है, वह उस क्षेत्र का श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बना है। तप मोक्ष के लिए एक विशेष आवश्यकता भी है। मनुष्य की उन्नति का मार्ग तप है, उसकी चर्या तन मन और आत्मभाव से की जानी चाहिए। जैसे अरण्य के परस्पर घर्षण से अग्नि और स्वयं की हथेलियों के रगड़ से ताप होती है, वैसे ही आत्मिक सक्रियता से तप का बल प्राप्त होता है, अन्यथा शरीर निस्तेज अशक्त और विकारग्रस्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि तपसा पारम आपनोति तपसा हन्ति किल विषम तपसा वर्तमान स उन्नते मूर्धनि तिष्ठति, अर्थात तप से श्रेष्ठ को प्राप्त करता है, तप से पाप को नष्ट करता है, तप से वर्तमान में वह उन्नति के शिखर पर आसीन होता है। अथर्ववेद के अनुसार भद्रम इच्छति ऋषयः स्वः विदः तपो दीक्षाम उपसेदग्रे ततो राष्ट्रबलम ओजश्च जातम तदस्यैव देवा उपसनन्तु, अपने कल्याण की इच्छा करते हुए शिव संकल्पी ऋषियों ने अपने व्रत से दीक्षित होकर तप किया, जिससे राष्ट्र का जन्म हुआ और कामना की गई कि हम तपस्वी जीवन जिए। तप से ही सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। तप क्रियाशीलता का नाम है जो मनुष्य को पवित्र बनाती है। बिना तप भगीरथ मुनि भी माता गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हो सके थे। माता पार्वती को मनोवांछित फल भी तप के बल पर मिला। स्वार्थ परार्थ से हटकर परमार्थ के लिए आगे बढ़कर आना ही तप का प्रत्यक्ष लक्षण है। त्रेता युग में अग्नि तत्व की प्रधानता थी, इस कारण उस युग में अग्नि को तप से जोड़ा जाता था। वर्तमान युग में कर्म तप का है, इसलिए इस युग में पृथ्वी तत्व प्रधान है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर अर्जुन से तप की चर्चा की तो कहा कि यह तीन प्रकार का है, शारीरिक तप, वाचसिक तप और मानसिक तप। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जमम ब्रह्मचर्यम महिंसा च शारीरम तप उच्यते, अर्थात देवता माता पिता गुरु पंडित का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तप हैं। प्रत्यक्षतः ये समाज का कल्याण करते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय च यत् स्वाध्याय अनभ्यसनम चैव वाङ्मयम् च तपुच्यते, अर्थात उद्वेग न करने वाला वाक्य सत्य प्रिय हितकारी स्वाध्याय और अभ्यास करने वाला जो हो उसे वाचसिक तप कहा जाता है। तप के तीसरे प्रकार के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः

0: साधः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिः इति एतत् तपो मानसम् उच्यते। अर्थात मन की स्वच्छता, सौम्यता, मौन, मन का निग्रह और हृदय की सम्यक शुद्धि, ये मानसिक तप कहा जाता है। तप का फल वैसे ही दिखलाई पड़ता है जैसे एक विद्यार्थी विद्या अर्जन के लिए तप पूर्वक शिक्षा अर्जन का तप अगर नहीं करता है तो उसका फल भी उसे वैसा मिलता है जैसा उसका तप होगा। यह शाश्वत सत्य है। परोपकार, जन सेवा, दान इसी के नाम है। तपश्चर्या का फल सदैव पूर्णदायी होता है। आत्मा विद्या और तप से ही शुद्ध होती है। तपश्चर्या से ईश्वर सृष्टि रचना में समर्थ हुआ। मनुष्य भी अपनी अभीष्ट उपलब्धियों के लिए तप के सहारे सफल होता रहा है। मनुष्य नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने में तप से सक्षम हो जाता है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये सुविचार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, करके मनके को डालकर मनके को फेरने की कला ही भक्ति है। तो आइए श्रोताओं, प्रस्तुत है अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओ, भक्ति ही शायद वो मार्ग है जहाँ पर इंसान चलकर अपने आप के साथ साथ अपने संतुलन को भी पाता है। शिव ही अनंत हैं, शिव ही सागर हैं। जी हाँ, भोले बाबा शिव शंकर का नाम है जो भक्ति से करते हैं हर काम। उनकी कृपा से मिटे सब त्रास, शिव ही है जीवन का प्रकाश।

वाहे गुरु का नाम सच्चा उजियारा है, हर अंधेरे में बनता है सहारा। जिसने सच्चे मन से उनका सिमरन किया, उनके जीवन में प्रेम और शांति से भर दिया।

कि माँ जगत जननी तेरी महिमा अपार है, तेरे चरणों में बसता सारा संसार है। तेरी कृपा से हर संकट दूर हो जाए, तेरे आशीष से जीवन सुख और शांति पाए।

कबीर की वाणी सच्चाई का प्रकाश, हर दोहे में छिपा जीवन का विश्वास। सरल शब्दों से गहरी सीख दे जाते हैं, मन को ज्ञान और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं।

मर्यादा के प्रतीक हैं प्रभु श्री राम, सत्य और धर्म है जिनका धाम, करुणा और प्रेम और नीति का दिया है संदेश, उनके चरणों में बसता है जीवन का विशेष।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति रस का कार्यक्रम आराधना में, यह आकाशवाणी लखनऊ है। कई महंतम ग्रंथों में सबसे सर्वोच्च स्थान है श्री रामचरितमानस का। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीत में प्रसारण। आज प्रस्तुत है भाग 199, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में इस समाचार होंगे।

0: श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44.5 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे NDA घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24 2000 तम

0: लिए आहार में कैल्शियम और आयरन का महत्व और जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे।

0: जीवन के लिए पोषण की सही मात्रा लेना कितना आवश्यक है। प्रोटीन से भरपूर आहार भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मांसपेशियों के विकास और शरीर की मरम्मत में सहायक होता है। लेकिन कैल्शियम और आयरन को प्राथमिकता देना, खासकर तब जब आप जीवन के किसी खास चरण में हों, आवश्यक है। अंत में ये भी जरूरी है कि आप पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित आहार लें जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों, क्योंकि केवल कैल्शियम और आयरन ही नहीं बल्कि पूरे आहार का संतुलन होना आवश्यक है। ये न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आप अपने जीवन का बेहतर तरीके से आनंद ले सकेंगी। तो श्रोताओं, महिलाओं के लिए कैल्शियम और आयरन के महत्व को समझना और उसे अपने आहार में शामिल करना बेहद जरूरी है। ये आपको न केवल आज स्वस्थ बनाए रखेगा बल्कि आने वाले वर्षों में भी आपको मजबूती और ऊर्जा प्रदान करेगा। आशा है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपने आहार का ध्यान रखें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। विषय होगा साइंस एंड टेक। ये कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत का समय होगा 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद अहमद अली खां का गायन राग।

जानकारी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय होगा साइंस एंड टेक। कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत का समय होगा 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद अहमद अली खां का गायन राग तोड़ी। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे 9:30 पर। 8:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की आवाज में गजलें। हिंदी कार्यक्रम होगा 8:00। खेल जगत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:31 पर। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी होगा 6:30 पर। 5:45 का समय होगा नई उड़ान का, और हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग 5:10 पर। श्रोताओं, विज्ञान और किसानी कार्यक्रम होगा 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंटवार्ता डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर से। विषय होगा खरीफ सब्जियों की अगेती खेती, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। 2:45 पर लोक माधुरी के अंतर्गत सुनिएगा संजोली पांडे के स्वर में अवधि लोक गीत। हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए होगा 1:50 पर। दोपहर 1:15 पर हमारी ग्रामीण बहनों का होगा कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता डॉक्टर मंजू शुक्ला से। वार्ता का विषय होगा खेल के मैदान बच्चों के व्यक्तित्व को देते हैं नया आयाम। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन सकेंगे 11:00। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकेंगे 12:30 पर। कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत प्रातः 9:50 पर सुनिएगा संजोली पांडे के स्वर में अवधि लोक गीत। उर्दू कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 पर। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा।

प्रातः 9:15 पर आप सुनेंगे आज चंदौली व रामपुर जिले की हलचल। पत्र व ईमेल पर आधारित इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम आपके मेल व आपके गीत ये कार्यक्रम होगा प्रातः 8:45 पर।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रातः 7:31 पर सुनेगा उस्ताद अब्दुल लतीफ के सारंगी वादन राग होगा राग ललित।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। और श्रोताओं, आज का विषय है हमारा भारत के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।

अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज का विषय है भारत के वीर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक वीरों और क्रांतिकारियों और बलिदानियों की अमर गाथाओं से भरा हुआ है। इन महान विभूतियों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वो केवल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ओजस्वी कवि, लेखक, विचारक और अद्भुत राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनका बलिदान भारतीय युवाओं के लिए आज भी एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। जी हां श्रोताओं, अगर उनके जीवन की बात की जाए तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आज ही के दिन यानी 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती देवी था। बचपन से ही उनमें तेजस्विता, साहस और स्वाभिमान के गुण विद्यमान थे। आर्य समाज के विचारों का उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं ने उनके मन में राष्ट्रप्रेम और समाज सुधार की भावना को उत्पन्न किया। जब भारत अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब युवा बिस्मिल देश की दुर्दशा देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे।

साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके युवा स्वतंत्र आंदोलन की, तो वे मानते थे कि विदेशी शासन से मुक्ति के लिए केवल भाषण और प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि साहस और बलिदान भी आवश्यक है। उन्होंने कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ कार्य किया, बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेताओं में भी शामिल हुए। उनका उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगर आपको याद हो तो काकोरी कांड एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना रही जहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह व अन्य साथियों ने काकोरी के निकट अंग्रेजी सरकार के खजाने को ले जा रही ट्रेन को रोककर सरकारी धन अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान चलाया। अंततः राम प्रसाद बिस्मिल सहित अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार भी कर लिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल केवल एक क्रांतिकारी नहीं, एक ओजस्वी कवि भी थे। जी हाँ, महान कवियों में उनकी एक गणना की जाती है। उनकी कविताओं में देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी रचनाएं युवाओं में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित करती थी। उनका प्रसिद्ध शेर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में।

जी हाँ श्रोताओं, आज भी देशभक्ति का प्रतीक ये शेर माना जाता है। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं थी बल्कि क्रांति का उद्घोष थी। वे अपने लेखन के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की चेतना को जागृत किया करते थे। काकोरी कांड के मुकदमे में अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई। यह निर्णय सुनकर भी उनके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे गर्व से कहते थे कि देश के लिए मरना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। फांसी के समय उनके होठों पर राष्ट्रभक्ति के गीत और हृदय में भारत माता की स्वतंत्रता का सपना था। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन अमीर सपूतों में माने जाते हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। तो श्रोताओं, आज की विविधा यहीं तक।

0: मीडियम वेव के बीच पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कहा, पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देशवासियों के विश्वास ने और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर

0: श्री काशीनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू SUV ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान।

0: भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, संगीत का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। संगीत जीवन को लयबद्ध और अनुशासित बनाता है। आइए इसको जानने के लिए चलते हैं शास्त्रीय संगीत की ओर और सुनते हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन, राग ललित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद अब्दुल लतीफ का सारंगी वादन और राग ललित। ये आकाशवाणी लखनऊ है और इसी कार्यक्रम के साथ आज का कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में इस समाचार प्रभात होंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35

इस राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री

0: याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।

0: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। प्राइम मिनिस्टर सेज लिफ्टिंग मोर देन 25 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग पास्ट 12 ईयर्स ऑफ NDA गवर्नमेंट शोज दैट इट्स पॉलिसीज आर करेक्ट एंड मूविंग इन राइट डायरेक्शन। इंडियन

0: लगता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही संत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशीक मगरबी बंगाल जेली हिमालयी खित्ते उड़ीसा केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वजीर आजम के नजरिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र खित्ते सिन्फ या समाजी और माशी पस मंजर के कतई नजर हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नजरिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान चार बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोजगार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वक़ार शामिल हैं। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
1: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तिमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर भी तवज्जो मरकूज करेगी, जो पिछले साल दिसंबर के अवाखिर में हुई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की उमंगें यकीनन पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के भरोसे को तकबीयत बख्शी है। जनाब मोदी कल शाम नई दिल्ली में वाक़ भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि 2014 में उभरती हुई उम्मीद की किरण आज एक नए एतमाद की किरण में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोगों ने पहली बार इसका मुशाहिदा किया है कि जब हुकूमत सही नीयत के साथ चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज़ रफ्तार से होती है। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए हुकूमत के 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और ये सही समत में गामजन हैं।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में कि जब दुनिया भर के बड़े ममालिक इक्तिसादी मसाइल से दोचार हैं, भारत ने साल 2025-26 में 7.7% की शरह तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि मुल्क 5 कमजोर मईशतों के जुमरे से निकल चुका है और अब दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक बन चुका है।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल

0: ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है।
1: ऐसे भारत का सफर है जिसने बड़े अहदाफ मुकर्रर करके और आलमी अदम इस्तेहकाम के हालात में भी इन अहदाफ को हासिल करने की अनथक कोशिश करके पहली बार अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना शुरू किया। कल कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की तारीफ की गई है। बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली में एनडीए के कॉन्क्लेव में 35 सियासी पार्टियों के 75 मंदूबीन ने शिरकत की। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब नवीन ने कहा कि एनडीए के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत के तई तशक्कुर का इजहार किया और तारीखी संग मील पर उन्हें मुबारकबाद दी और इसे मुल्क के 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब नितिन नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ुज़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
3: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
2: हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज़ अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
4: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरी करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में

तो श्रोताओं, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है आप जो हमें मेल करते हैं या फिर आपके जो पत्र हम तक पहुँचते हैं। तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com APKEPATRA APKEMAIL@ ये सारे ही लेटर्स जो हैं स्मॉल में है, कोई भी अंडरस्कोर बीच में नहीं है, @gmail.com पर। जैसे कि हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जानते हैं, जुड़े हुए हैं, पहले से मेल ईमेल आईडी जानते हैं, तो बहुत सारे जो ईमेल हैं बहुत लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे हैं। सभी का शुक्रिया बहुत बहुत तहे दिल से, जो कि शायद हमारे साथ सुबह 5:30 या 6 बजे से जुड़ जाते हैं, उन श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि पहला जो मेल मेरे पास आया है वो शायद सुबह 6 बजे के आसपास का है, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जैसे ही हम लोग ऑन एयर होते हैं और आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग हमें मेल कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो भाई अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मेलों की, और इतने सारे मेल हैं, कोशिश पूरी करूंगी कि सारे मेल को कवरअप कर पाऊँ, उन सारे मेलों के नेटलिस्ट नाम मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। और कोशिश सिर्फ एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूंगी कि जो आप एक बार मेल कर चुके हैं तो कम से कम थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे पढ़ने का। एक ही मेल अगर आप बार बार बार बार करेंगे तो सिर्फ आप ही का मेल दिखाई देगा, बाकी और मेल मुझे नहीं दिखाई देंगे। तो उसके लिए देखिए, मेल करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि एक बार मेल करके थोड़ा सा रुके ताकि मैं भी आपका नाम पढ़ सकूँ भाई। तो देखिए, हमारे पास ये मेल हमें भेजा है नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जो जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, और साथ में है दिशा। और अगला ये मेल हमारे पास आया है अगला ये मेल हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, और इन्होंने लिखा है, नमस्कार बहन जी, नमस्कार आपको भी प्रोग्राम में, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं बहुत बहुत। चंडीगढ़ में बारिश की फुहारों का मौसम सुहावना हो चुका है, यहाँ शायद थोड़ी सी धूप निकली है लेकिन हाँ हवा चल रही है। और अगला ये मेल हमारे पास से आया है, ये मेल हमें भेजा है गांव कमलंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत और इनका समस्त परिवार। और अगला ये मेल हमारे पास पहुंचा है मारहरा दरवाजा एटा से, भेजने वाले हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज नावेद हसन, सुहेल हसन, अमन अब्बासी, यशफ अब्बासी, रसीद, सिकंदर राव से, मुबीन अब्बासी।

और अगला ईमेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है सत्येंद्र चंसोलिया ने। सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, आप सभी लोग हैं ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से। और अगला ये मेल की फरमाइश हमारे पास आई है दिग्दर्शन और कविता गोड़ मेरठ केंट से है, और इन्होंने लिखा है आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आपने सुनना चाहा है फिल्म आराधना का ये प्यारा सा गीत, तो भेजिए श्रोताओं, प्यारा सा गीत पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला ये मेल हमारे पास आया है। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से भेजने वाले हैं राम राज, राजू भानु, राम शंकर, साथ में है रक्षा मौर्य, शाहू रसूलपुर वाले, और इन्होंने हमको प्यार भरा धन्यवाद भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और अगला ये मेल हमारे पास आया है डेर पाटन गुजरात से, भेजने वाले हैं धीरज वी रबारी। और अगला ये मेल हमारे पास आया है ग्राम

पोस्ट गौना कुस्माड़ थाना सौजन तहसील मेहरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। बाप रे, मतलब पूरा पूरा एड्रेस एक एक गांव का भेजा है। और अगला, और जो इन्होंने मेरी मेल किया है, मेल भेजने वाले हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक, द्रौपदी देवी, राम देवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश, रानी परी, सुबरी, और साथ में हैं पायल और इनके मम्मी पापा। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है, नहीं इन्होंने सिर्फ लिखा है, कार्यक्रम पेशकर्ता दीदी को प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, पर आपने मेल हमें भेजा कहाँ से है? हाँ, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं लालगिरी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है ऑक्सीजन पार्क, क्या बात है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर होती होगी। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से भेजने वाले हैं सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हीरामण शिंदे जी, साथ में है प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है ग्रामवा पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से भेजने वाले हैं शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और साथ में है डीजे प्रधान, क्या बात है। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से भेजने वाले हैं अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर, साथ में है राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं सोहन जोशी और पायल जोशी, इनके साथ में हैं, हाँ नहीं ये वाले नाम मैंने ले लिए, ये दो बार नाम लिख गए हैं ये। और अगला ये मेल हमारे पास भेजा है, ये मेल हमें आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहाँ, आप सभी लोग हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से भेजने वाले हैं। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर, और आप सभी लोग हैं बस स्टैंड लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। अगला ये मेल हमारे पास आया है, और ये मेल हमें भेजा है बठिंडा रोड मंडी डाबवाली से, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।

और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है जिला खरदौन सनावद मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं मास्टर अशोक वर्मा जी। इनका मेल इतनी बार आया है, मतलब मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 बार आ चुका होगा, लेकिन हाँ चलिए आपका मेल अब शामिल हो चुका है। साथ में है अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रामेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बडोना, और आप सभी लोग हैं सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। आपने सुनना चाहा है फिल्म आंधी का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ में। तो भाई लीजिए श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत पहुंचता है आपके रेडियो सेट तक।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं मेल व पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और मैं हूं आपके साथ आपकी हमजोली, जी हां संजोली। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, मेल हमें भेजा है पता उमरिया मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई सिंह और साथ में है विकास सिंह। इन्होंने हमको नमस्कार भी बोला है, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, मेल हमको भेजा है अनारकली बाजार जागरों से भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका, गाव्या मल्होत्रा, साथ में है भाई सुच्चा सिंह पाठक। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, भेजने वाले हैं मुसरत जहानाज। अच्छा, साथ में उन्होंने लिखा है एक शिक्षिका है, और थैंक यू सो मच। जब देखिए हर एक शिक्षिका या टीचर की ना वैल्यू होती है बहुत बहुत, तो और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया। साथ में हैं तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया नाजिया, नूरी नाज। हम बहनों को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। देखिए पूरी कोशिश करी है कि हाँ आप सभी को शामिल किया जा सके। आपका मेल मैंने पढ़ दिया है। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है बंडी खेड़ा पंजाब से, भेजने वाले हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और साथ में है आरती अरोड़ा। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमको भेजा है अच्छा नीचे लिखा है, ये मेल हमको आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से, भेजने वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। इन्होंने बड़ी दो लाइनें बड़ी प्यारी से लिखी, उन्हें ज़रूर पढ़ूंगी मैं, कि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है। क्या बात है, बड़ा प्यारा दो लाइनें लिखी हैं। और उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म नगीना का प्यारा सा गीत, तो भाई लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पे पहुंचता है ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट तक।

श्रोता, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और देखिए, मेलों का जो सिलसिला है लगातार बना हुआ है। अगला मेल हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद से, भेजने में ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और इनके साथ में है बलवीर सिंह। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हमें भेजा है दत्तरेंगी भारापाड़ा छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी। और अगला ये मेल हमारे पास आया है, ये मेल हम पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया है। ये मेल हमको भेजा है गांव नथाना पंजाब से, भेजने वाले हैं हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी और साथ में है सीता और गीता। बड़े इन्होंने प्यारी दो लाइन कही है, वक्त भी चलता रहा, जिंदगी सिमटती रही, दोस्त बढ़ते गए लेकिन दोस्ती घटती गई। अरे नहीं, ऐसा ना कहिए, हमारी और आपकी दोस्ती बिल्कुल नहीं घटेगी, चिंता ना कीजिए। अगला ईमेल हमारे पास आया है, ईमेल हमें भेजा है मोनू सेठ, गुनगुन सेठ, परी सेठ, खालिसपुर ऊंचा गाँव भेल से, और इन्हें सुननी चाहिए बड़ी प्यारी सी गज़ल। तो भाई आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल।

तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने पत्रों के माध्यम से जरूर बताइएगा। और पत्र भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है pkld पत्र के लिए धन्यवाद @gmail.com पर। श्रोताओं, कार्यक्रम के इसी अंतिम गजल के साथ दीजिए अनुमति अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल व आपके गीत मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
1: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री जी की

0: सप्ताह से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जो जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
1: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कैनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता परखी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण कार्य एवं उसकी मोटाई और मजबूती की भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
2: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं, जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, उनका प्रयोग कैसे करें, और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं हरी खाद बनाने के लिए। सनई ढैचा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
1: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैचा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
3: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
4: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क, राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व

0: प्रदेश में नकल विहीन एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले दो दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी।
1: इसके विरुद्ध हमने 18,300 एमटी गेहूं की खरीद अब तक कर ली है, जो कि लक्ष्य का 105% है। बाकी सभी किसानों से हमारी अपील है कि जो भी किसान बंधु गेहूं विक्रय चला गए हैं, वो अपना गेहूं निकटतम क्रय केंद्र पर ले जाएं और विक्रय करें।
0: वहीं गेहूं के केंद्र मंडी समिति भगवतीगंज में गेहूं बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मध्यनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर शंकरी का पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा जल है तो कल है का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदौली और बलरामपुर जिले की हलचल। अब प्रस्तुत है संवेद स्वर में देशगान।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दिया आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब सामयिन समाप्त फरमाएंगे उर्दू कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश है।
5: आकाशवाणी लखनऊ के सभी सामयिन को मेजबान आसिफ इकबाल और शमसुल आरफिन की तरफ से आदाब। आप सभी का आज के नगमगी प्रोग्राम में इस्तकबाल है। उर्दू अदब में यूं तो एक से बढ़कर एक सुखनवर गुजरे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने उदासी को मुस्कुराहट का लिबास पहनाया, जिसने सफरनामों को दास्तान बना दिया और जिसकी शायरी सुनकर दिल आज भी भर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्दू के मायना शायर, मजाह निगार और सैयाह इब्ने इंशा की।
6: इंशा जी का नाम जहन में आते ही उनकी लिखी वो लाफानी गजल गूंजने लगती है। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या?

0: मतलब जोगी का नगर में ठिकाना क्या।
1: आज के इस सफर में हम इंशा जी की जिंदगी, उनके आवारा मिजाज और उनकी लाजवाल तहरीरों की सैर करेंगे। कुछ कहने का वक्त नहीं ये,
0: पर
1: कुछ ना कहो,
0: सूरज
1: खामोश
0: ही
1: रहो।
0: को
1: ऐ
0: घूमने
1: लोगों
0: दो
1: खामोश रहो,
0: खामोश,
1: हाँ ऐ लोगों खामोश रहो।

0: रहो। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून 1927 को पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए। वो यूनेस्को जैसे आलमी इदारे से भी वाबस्ता रहे, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया भर की सियाहत का मौका मिला।
1: इंशा जी की सबसे बड़ी खासियत उनका वो मुनफरिद लहजा था, जिसमें तंज व मजाक के साथ साथ एक गहरी मिठास भी थी। उन्होंने रिवायती गज़ल को एक नया रंग दिया, जहां वो हिंदी और उर्दू के खूबसूरत तालमेल से जादू जगाते थे। उनकी शायरी में पंडित, चांद, जोगी और नगर नगर घूमने वाले मुसाफिर का जिक्र बार बार मिलता है। सुनिए उनकी ये खूबसूरत गज़ल। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

दोस्तों, इब्ने इंशा सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक बेमिसाल नसर निगार भी थे। उनके सफ़रनामे रिवायती नहीं हैं कि हम वहाँ गए और ये देखा, बल्कि उनके सफ़रनामे तो तंज़ो मज़ाह के शाहकार हैं। आवारा गर्द की डायरी दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में और चलते हो तो चीन को चलिए, ये वो किताबें हैं जिन्हें पढ़ते हुए आप हंसते हंसते लोट पोट हो जाते हैं और साथ ही दुनिया भर की सैर भी कर लेते हैं।

उस रोज जो उनको देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है। उस रोज जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या, उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू न सकें, जिसे देख सकें पर छू न सकें, वो दौलत क्या, वो खजाना क्या।

0: इंशा जी ने बच्चों के लिए भी बहुत खूबसूरत नज़में लिखीं जो आज भी हमारे बचपन की याद ताज़ा करती हैं। ये बच्चा कैसा बच्चा है, ये बच्चा काला काला सा, ये काला सा मटियाला सा, ये बच्चा भूखा भूखा सा, ये बच्चा सूखा सूखा सा, ये बच्चा किसका बच्चा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है जो रेत पे तन्हा बैठा है।
1: न इसके पेट में रोटी है, न इसके तन पर कपड़ा है, न इसके सर पर टोपी है, न इसके पैर में जूता है, न इसके पास खिलौनों में कोई भालू है कोई घोड़ा है, न इसका जी बहलाने को कोई लोरी है कोई झूला है, न इसकी जेब में ढेला है, न इसके हाथ में पैसा है, न इसके अम्मी अब्बू हैं, न इसकी आपा खाला हैं।
0: ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा कैसा बच्चा है। हम जिस आदम के बेटे हैं, ये उस आदम का बेटा है। ये आदम एक ही आदम है, ये गोरा है या काला है, ये धरती एक ही धरती है, ये दुनिया एक ही दुनिया है। सब एक दाता के बंदे हैं, सब बंदों का एक दाता है। कुछ पूरब पश्चिम फर्क नहीं, इस धरती पर हक सबका है।

डायरी को एक नहायत दर्दनाक मोड़ दे दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे मशहूर गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो ये लिखी, तो उसके कुछ ही दिनों बाद सचमुच उन्होंने इस दुनिया से कूच कर दिया।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सबको हंसाने वाले इब्ने इंशा को ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कैंसर जैसे जानलेवा मरज ने आ घेरा। इलाज के लिए वो लंदन गए, लेकिन वहाँ की तन्हाई और बीमारी ने उनकी

0: 11 जनवरी 1978 को लंदन के एक अस्पताल में उर्दू अदब का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया और उन्हें वहीं लंदन में सुपुर्दे खाक किया गया। इब्ने इंशा रुखसत हो गए मगर हमें हंसने का करीना और रोने का सलीका सिखा गए। जब भी उर्दू दुनिया में सच्चे और मुखलिस शायरों का नाम लिया जाएगा इंशा जी सफ़े अव्वल में खड़े नजर आएंगे।
1: सामईन, आज के प्रोग्राम नगमगी में इब्ने इंशा की यादों के साथ बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को दें इजाज़त। आदाब।
2: अभी सामाईन समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत संजोली पांडे के स्वर में अवधि लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप आनंद दे रहे थे संजोली पांडे के स्वर में। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम था लोक रंग। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद दीजिए फिल्म संगीत का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज

0: से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
7: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
6: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।

0: कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे कुछ कमर्शियल ब्रेक का, और उससे पहले आनंद ले रहे थे आप फिल्म संगीत का।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
8: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
7: मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोता, प्रस्तुत है न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण।

ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टे बेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 आज रात से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शुभकामना

0: भावनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के नागरिकों के हित में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संदेश पर कहा कि वे भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को बेहद महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत कनाडा साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संदेश के जवाब में कहा कि भारत और इसराइल के बीच मित्रता आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगी। विदेश मंत्रालय ने कल ओमान के तट के पास भारत के वाणिज्यिक जहाज सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के उपराजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 सदस्यों के लापता होने की खबर है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमलों की लगातार घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें बेहद चिंताजनक बताया है। इस बीच भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और शांति के लिए बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के संचालन की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब इन संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप दें। डॉक्टर जयशंकर ने बुल्गारिया के विदेश मंत्री विलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में 3 मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए सहयोग शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद 25% से अधिक की वृद्धि है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई महीने में बढ़कर 4.2% हो गई है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के बाद ये दर तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अप्रैल की तुलना में कीमतों में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि जैसे जैसे होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल की आपूर्ति सामान्य होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की करीवा में एक रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। ये कदम वैश्विक तेल संकट के बीच बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये संयंत्र जापान के उन कई परमाणु संयंत्रों में शामिल है जहां प्रयुक्त ईंधन के कूलिंग पूल लगभग भरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ संयंत्रों में अगले 5 वर्षों में क्षमता पूरी हो सकती है। वर्ष 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद जापान के 54 में से केवल 15 रिएक्टर ही फिर से शुरू किए जा सके हैं। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था और लगभग 1,60,000 लोग विस्थापित हुए थे। कनाडा की सरकार ने एक

0: नया विधेयक पेश किया है, जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को ये साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी उन्हें छूट मिल सकेगी। विधेयक में आत्महानि को बढ़ावा देने वाली, हिंसा या घृणा फैलाने वाली तस्वीरों जैसी हानिकारक सामग्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कनाडा में एक डिजिटल सुरक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ अब कनाडा भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत और ताजिकिस्तान ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात उन्होंने वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में उद्घाटन भाषण में कही। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मोहित यादव और ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार उपमंत्री नूरुद्दीन जोदा अहलुद्दीन ने की। श्रीलंका के लोक सुरक्षा मंत्री आनंद विजयपाला ने कल संसद में कहा कि पूर्व खुफिया सेवा प्रमुख सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुरेश सल्ले के खिलाफ 2019 में ईस्टर संडे पर हुए बम धमाकों से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। इनमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। विजयपाला ने आरोप लगाया कि सल्ले को हमलों की पूर्व जानकारी थी। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और फीफा विश्व कप आज रात से शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं में प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: आरपी सिंह जी, सर आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
5: पहले के कई युद्धों का

0: परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफ़ी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे, और उसमें जो है एक तरह से भारत के अंदर इतनी ताकत आएगी कि जो भारत के अंदर क्षमता है वो एक तरह से खुद लड़ाई लड़ने की पूरी क्षमता के लिए। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से वो है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना क्यों जरूरी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए वो सुनते हैं।
2: विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा, और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है।
1: अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खास तौर पे और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं, जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं।
3: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 16 गुने आपने रक्षा निर्यात की वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर हैं, और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं, तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है, और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी

0: नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी। आप
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
2: नहीं देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है, जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस इतना सक्सेसफुल हो गया है कि वो तेजस एयरक्राफ्ट जो है अभी तक काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है, इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर HAL के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के, भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया, कल्याणी के 1.055 के आर्टिलरी गन, जो SP गन्स हैं, वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने को है। इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां मैंने नाम लिए हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही।
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है, जिस तरह से हमने देखा।
2: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें RT गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए RT गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी हम भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सेटेलाइट्स हैं जो इसरो के हैं, जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इसराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
2: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है, और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के, बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है। मेड इन इंडिया मतलब कि 100% अपना है, मेक इन इंडिया यानी कि बाहर से आकर के आया, लेकिन हमारा 51% 60% 70% की तरफ इनका हमारा शेयर है, उनके एम्प्लॉयबिलिटी है, उनके एक्सपर्टीज बस वो हमारे साथ हैं। हो सकता है कि आगे चल करके 100% उसमें भी हम लोगों की दावेदारी आ जाए।
1: लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर, यहाँ होने वाले रक्षा उत्पादन को लेकर, आइए उसको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
3: लखनऊ अब सिर्फ तहजीब नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है, अब यह इंडस्ट्रीज का शहर बन गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है, और यहां से निकलने वाला हर कदम भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक यह प्रभावी कदम है। और मुझे लगता है कि समय के साथ ही ब्रह्मोस की विश्वसनीयता के साथ साथ लखनऊ की विश्वसनीयता बढ़ी है।
1: अनुपम सर, उत्तर प्रदेश

0: डिफेंस कॉरिडोर को आप भारत के रक्षा इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: ब्रह्मोस से लेकर के राइफल तक सब कुछ अब उत्तर प्रदेश बना रहा है, यानी कि जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है उसमें उत्तर प्रदेश एक मेजर प्लेयर बन के उभर रहा है। और ये अचानक से ही हुआ है, आप देखें उत्तर प्रदेश कहीं नहीं था आज से 10 साल पहले तक, कम से कम डिफेंस इकोसिस्टम में कहीं दिखाई नहीं देता था। आज आपके पास देश की दूसरे सबसे बड़ी डिफेंस कॉरिडोर है। सबसे बड़ी जब मैं कहता हूं तो मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहूंगा। 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2024-25 और 26 में। किसके ऊपर? यूपीडीसी के ऊपर, यूपी डिफेंस कॉरिडोर के ऊपर। इससे हुआ क्या है, 50,000 के आसपास लोगों को नौकरी मिली है। एमएसई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, जहां जहां पर ये कॉरिडोर के चीजें हैं वहां पर एमएसएमई सेक्टर में बूम आया है। 50,000 के आसपास बेरोजगारों को नौकरियां मिली। और तीसरी सबसे बड़ी बात, यूपीडीसी ने किया क्या है, भारत के रक्षा निर्यात जो मैं अभी बता रहा था 16 गुना जो बढ़ा है उसमें इसका योगदान 15% है। अब आप मान सकते हैं कि एक पिछले 2 वर्षों में इसने इतना बना लिया है कि देश के कुल रक्षा निर्यात का 15% यूपी में मैन्युफैक्चर हो रहा है और बाहर बेचा जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी चीजें हम नहीं बेच रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सर ने बताया था, ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता दुनिया ने देखी है। आज ब्रह्मोस को खरीदने के लिए दुनिया के तमाम देश लाइन लगा के खड़े हुए हैं और इसके 3 वर्जन हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसमें से ब्रह्मोस की एक बड़ी फैक्ट्री हमारे इसी जगह पर जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, लखनऊ में ही ब्रह्मोस बन रही है। इंसास राइफल हम सब जानते हैं, एक ऐसा रेडी टू यूज हथियार है, एक ऐसी राइफल है जो हमारे सैनिकों के लगभग सबके पास होती दिखती थी, पूरे डिफेंस में तीनों सेनाओं में लगातार दिखती है। इंसास ऐसा माना जा रहा था कि अब आउटडेटेड हो रही है, AK-203 वो भी अमेठी बन रही है। इंसास की भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई गई है आगरा के अंदर। ड्रोन वॉरफेयर खूब चर्चा में लगातार, इंटरनेशनली नेशनली हर जगह ड्रोन वॉरफेयर चर्चा में है, इसमें भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। कानपुर में ड्रोन पार्क की स्थापना हुई है 2026 में, कई मॉडल ड्रोन के कामिकेजी से लेकर के अटैक और जितने भी तरह के ड्रोन हो सकते हैं, एंटी ड्रोन नेटवर्क भी कानपुर में बन रहा है। तो ये चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में भी बदलाव ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में बदलाव ला रहे हैं। जौनपुर का उदाहरण देता हूं, बहुत छोटा सा जिला है जौनपुर, वहां पर अंकिता टैंक्स बन रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, देश के टैंक्स जौनपुर में बनाए जा रहे हैं। तो ये डिफेंस कॉरिडोर की वजह से ही तो संभव हुआ है। चित्रकूट जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थाटन के लिए जाना जाता था, आज ये माना जा रहा है कि जब उस पूरी परिकल्पना साकार होगी डिफेंस कॉरिडोर की, और उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो चित्रकूट और उसके आसपास का इलाका, उसके आसपास के जिले पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर एक अपनी खास पहचान रखेंगे रक्षा के क्षेत्र में। तो ये जो रक्षा इकोसिस्टम है इसमें तेज बदलाव हुआ है और इसमें तेज बदलाव होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने इसमें एक लीडिंग भूमिका निभाई है। और ये सब चीजें एक आश्वस्त करती हैं कि हम सही जगह पर चल रहे हैं और सही दिशा हमने पकड़ी हुई है। और ये सब चीजें एक्सपोनेंशियल होती हैं, एक बार जब हमने फिफ्थ गियर लगा दिया तो उसके बाद फिर पीछे मुड़के हम नहीं देखेंगे, हम इसमें और आगे प्रगति करते ही जाएंगे।
0: ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर इससे पहले एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, आरपी सिंह सर आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने बॉर्डर के साथ ही बॉर्डर पार जिस तरह से सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है, क्या संदेश गया है पिछले 12 सालों में भारतीय सेना की कार्यशैली को लेकर?
2: सुलन जी, बड़ा अच्छा आपने पूछा है और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि अगर आपने पहले अपने स्कूल डेज में देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि भारत जैसे आजाद हुआ भारत की पॉलिसी कुछ अलग थी, लेकिन जब कारगिल आया तब एक सिचुएशन पूरी चेंज हो गई कि हम नहीं, हम स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे, हम कैप्चर करेंगे, हम हिट करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो ये पॉलिसी कुछ चेंजेस आई थी जब एक गवर्नमेंट आई थी उस समय 98-99 के टाइम पे और चली कुछ दिन तक, जो कि अब पिछले 12 साल से मेरे ख्याल से उसको एक तरह से कार्यान्वित कर दिया गया कि नो, और चूंकि ओपनली किया गया इस तरह से, अब धीरे धीरे अब पॉलिसी कुछ और आगे बढ़ रही है कि हम उनको कहां कहां पे ऐसे करें कि आगे वो 10 बार सोचे कोई कार्रवाई करने के लिए। इसका परिणाम आपने जो नाम लिया उरी सेक्टर के ऊपर जो कार्रवाई थी उसके पहले, और अभी जो आप सिंदूर जो हुआ उस पर जो कार्रवाई, आप सिंदूर में हमने किया क्या? हमने पहले दिन कुछ नहीं किया था, बस एक नमूना पेश किया था, भाई हमने 2-3 स्ट्राइक किए हैं जो हमारे को जिसने हिट किया मैंने उसको हिट किया है, अब आप कुछ मत करिए। लेकिन उन्होंने जो कोशिश की उसको नाकाम करने के लिए 9th और 10th नाइट को हमने वो पूरे के पूरे जो है आप सिंदूर में जो ब्रह्मोस की आप हम लोग बात कर रहे थे वो हमने दिखाया, तब जाकर के उनको पता लग गया कि ये आकर के दूर इनसाइड उनके जो वॉरहेड्स हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके जो एयरफील्ड्स हैं, उनको हम इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिए थे, उनकी आधी वायुसेना एक तरह से ग्राउंडेड हो चुकी थी कि वो फ्लाई भी नहीं कर पा रही थी, नौसेना ने अपने जलवे दिखाए नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये रहता है कि हम लोगों की रणनीति अब बदल गई है। अब मेरे कहते हुए बड़ी गर्व की बात है कि भारतीय सेनाएं उसी के ऊपर काम कर रही हैं। उसके ऊपर काम करने के लिए केवल सेनाएं नहीं, यहाँ तक कि इंटरनल्स जो भारत के अंदर जो जितनी भी शक्तियां वो काम कर रही हैं। बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग चालू हो चुकी है, आपके जितने भी कम्युनिकेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जितने भी ट्रुप्स हैं उनको फॉरवर्ड लोकेट किया जा रहा है, जितने भी रोड एंड ट्रैक्स हैं वहां तक जा रहे हैं, जिससे भी कि किसी तरह की अगर बातचीत भी करनी है, अगर किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है तो उसको रोकने में हम पूरी तरह से सक्षम रहे और इफेक्टिव रहे।
0: अनुपम सर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से

0: हथियारों को शामिल किया गया है वायुसेना में, इससे जो हमारी क्षमता है उसमें कितना बदलाव आया?
1: देखिए शैलेंद्र जी, आप आधुनिक युद्धों को अगर आप देखें उनको गौर से, तो आपको एयरफोर्स का रोल शुरुआती दौर पे, युद्ध के शुरुआती दौर पे बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देगा। आपको दुश्मन के ऊपर अटैक करना है, आपको दुश्मन को एक तरह से घुटनों पर ला देना, और उसके बाद अगर आप ग्राउंड इन्वेजन करना चाहें तो फिर हमारे ग्राउंड ट्रूप्स जाएंगे, टैंक्स चलेंगे, गोलियां चलेंगी, और उसके बाद हम दुश्मन को हर तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और नेवी का भी रोल है, लेकिन एयरफोर्स का रोल मैं मानता हूं किसी भी ऑपरेशन में सबसे ज्यादा बढ़ गया। और भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड जो भी सिनेरियो दिखता है, चाहे आप अमेरिका का उदाहरण ले लें, अमेरिका भी ईरान के ऊपर जब अटैक करता है सबसे पहले एरियल अटैक्स ही करता है, इजराइल भी करता है तो एरियल अटैक्स करता है, बाद में मिसाइलें चलती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइलें चलती हैं, और वो सब होता है। अब एयरफोर्स का महत्व बहुत ज्यादा है, तो एयरफोर्स को अपने आप में बदलाव भी लाना चाहिए। एयरफोर्स ने बदलाव लाया है, S-400 का जिक्र आपने किया, सर ने भी किया था। S-400 एक ऐसा सिस्टम है, ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से एक बड़ी दीवार बनके वो हमारे बॉर्डर पे खड़ा हो गया और हमारे पास एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी किसी भी तरह कोई अटैक होने ही नहीं दिया,
0: इंटरसेप्ट कर लिया,
1: सब कुछ इंटरसेप्ट किया, एवरीथिंग। और इसमें खैर S-400 अकेले उसने नहीं किया, उसमें कुछ हमारे स्वदेशी हथियार भी लगे हुए थे, स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम सारे कुछ लगे हुए थे, और सबने 100% एक्यूरेसी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मशीन तब तक काबिल है जब तक उसके पीछे के हाथ काबिल हैं। तो S-400 हो या फिर जो नए चीजें आई हैं एयरफोर्स में, आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए, आप चिनूक हेलीकॉप्टर ले लीजिए, ये कुछ गैप्स थे हमारी एयरफोर्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास ऐसे कोई हेलीकॉप्टर थे या बहुत कम मात्रा में थे जो कि बहुत तेज गति से और बहुत संकरी जगहों पर, घाटियों में, नदियों के ऊपर, ऑल वेदर कंडीशन में हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके, वहां पर ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट दे सके, वहां पर कुछ अगर सामान को ड्रॉप करना हो या लोगों को पुल बैक करना हो वो कर सके। उसके लिए आपको रनवे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जगह नहीं मिलेगी और वहां पर इनका ऑपरेशन कराना है। तो चिनूक ने और अपाचे ने उस जगह को फिलअप किया है, और हमको याद रखना चाहिए कि हमारी एक लंबी हिमालयन बाउंड्रीज है जहां पर इस तरह की जबरदस्त घाटियां हैं कि जहां पर आप दुर्गम क्षेत्र हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां पर आप सामान हेलीकॉप्टर, सामान फाइटर जेट्स लेकर के नहीं जा सकते, और दुश्मन हमारा वहां पर इंतजार भी करता है। तो उसके लिए हमको अपने बेड़े में इस तरह के हथियार रखने पड़ेंगे। तो जैसे आपने कहा कितना बदलाव आया है, तो मैं तो मानूंगा कि इन अत्याधुनिक हथियारों से, सिर्फ चिनूक, अपाचे और S-400 से, हमारी एयरफोर्स ने पिछले दशक से अब के बीच में करीब 40-50% का बदलाव देख लिया।
0: आरपी सिंह सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आए थे तो उन्होंने कहा कि युद्ध में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, हम किसी एक स्ट्रेटजी के साथ लगातार आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर, जिस तरह से लड़ाई के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं, चाहे ड्रोन के प्रयोग की बात कर लें, मिसाइल हमले की बात कर लें, भारत ने अपने आप को इन सारी परिस्थितियों में कैसे खुद को तैयार किया है?
2: नहीं, भारत एक तरह से जो भी युद्ध अभी हो रहा है चाहे हुआ है, और बल्कि सिचुएशन के हिसाब से भारत अपने को काफी एक तरह से चेंज करता जा रहा है और हो रहा है, और भारत भी भविष्य को ये देखते हुए उसमें काफी बदलाव लाया है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा अभी बात हो रही थी ड्रोन के बारे में, आपको बताते हुए मुझे ये भी है कि ड्रोन कैसे इस्तेमाल हुआ था यूक्रेन वॉर के अंदर, ड्रोन कहाँ था, रशिया के अंदर घुसा हुआ था। दूसरी बात, ये जो हवाई की बात हुई थी वो तो एक अलग से ही वॉरफेयर है, लेकिन उसको हवाई वॉरफेयर को अगर किसी को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अंदर क्या है, साइबर, हवाई की पूरी के पूरी साइबर रुक जाएगी, ग्रे वॉरफेयर जो आपके डिजिटल जो है, तो उसमें क्या होगा,
0: मतलब सर कई
2: तो मतलब कि कई मुद्दों पे लड़ना है, और ये नहीं कि हमारा ये बड़ा स्ट्रांग है, हम उसके अंदर जाकर के हम कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपकी लड़ाई की जो आजकल के मॉडर्न युग है उसके अंदर जो है किस तरह से लड़ाई होगी, इसी में ये थ्रेडर कमांड आ रहा है, इसी में ये आ रहा है कि कौन क्या है, कोई सुप्रीमेसी किसी की नहीं है, हर एक सेनाओं का एक एक अंग जो है सुपीरियर है, और सेनाओं के अंग जो है बढ़ते जा रहे हैं और इतने बढ़ रहे हैं कि आप कल देखेंगे कि हो सकता है आपका डिजिटल कमांड अलग हो सकता है ग्रे वॉरफेयर अलग है, आप ये देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अलग है, इंटरनल प्रॉब्लम अलग है। आप ये बताइए कि बांग्लादेश और नेपाल के अंदर जो है सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ था, इंटरनल वॉरफेयर आर्मी होते हुए भी सिचुएशन चेंज हुई, कुछ नहीं कंट्रोल कर पाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो भारत को ये सोचना पड़ेगा हम कहां कहां किस किस फील्ड में काम करें। और ये भी है कि अगर जो हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे थे, जो आतंकवादियों के अटैक थे, उन्होंने फॉर्मूला चेंज करके पहलगाम के अंदर जो अटैक किया, पहली बार ऐसे अटैक हुआ था जो एक रिलीजियस माइंडेड अटैक था, जो ड्रोन के अटैक्स थे इतने मैसिव हो रहे थे कि भारत उसके लिए उसकी जो है केवल एंटी ड्रोन जो थी एक तरह से पूरी की पूरी सक्षम थी, तभी रोक पाया। तो ऐसी सिचुएशन में भारत अब क्या कर रहा है, पहले से आगे की सोच रहा है, और उसमें भारतीय सेनाएं, वायु सेनाएं और नौसेनाएं काफी परिवर्तन ला रही है। अभी देखिए भारतीय सेना में दो परिवर्तन आए थे, अभी छोटी टुकड़ियों में इन्होंने ब्रिगेड ग्रुप्स बना दिए हैं जो कि माउंटेन्स के अंदर काफी सक्सेसफुल हो, एक छोटे से ग्रुप के द्वारा आप कहीं भी जाकर के अटैक कर सकते हैं, आपके पास पूरी के पूरी मल्टीपल फोर्स है उसके पास। थिएटर कमांड में क्या है, उसके पास नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, उसके पास आर्मी भी है। तो जिस

0: कि जो जरूरत है एक ही कमांडर के नीचे सभी हैं। भारत ने इसी में कभी बटालियंस खड़ी कर दी हैं, भैरो बटालियंस की जो काबिलियत है कि कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर वो ऑपरेट कर सकती है, वो एक मिनी कमांडोज हैं उस इलाके का, जिसको एक एक चप्पा चप्पा पता है। तो ऐसे सिचुएशन में भारत के जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफी उसमें है, जिसमें मेन चेंजेस आपकी है कि पूरे के पूरे जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है, एयर कैप पूरी की पूरी जो है एक तरह से एक थिएटर कमांड भी इसकी बननी है एयर डिफेंस की, जिसे कोई भी चीज है एक यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना कर सके, ना अंदर आ सके, ना वो होने पड़े। उसी तरह से आपका ग्रे वॉरफेयर के बताया, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बताया आपको मैंने, डिजिटल वॉरफेयर बताया। तो ये सब चीजों की जो है एक तरह से अलग ही स्टडी हो रही है, अलग से ही इनके पूरे के पूरे विंग्स बन रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें क्या होना है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है।
1: बिल्कुल सर, लगातार परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन अनुपम सर आपसे जानना चाहेंगे, सेना का मनोबल बढ़ाने और समन्वय बढ़ाने पर भी सरकार का ध्यान पिछले 12 वर्षों में रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की बात हम कर ही रहे हैं, या फिर अग्निवीर की एंट्री की भी बात करें, सैनिकों की सुविधा के प्रयासों या फिर सेना को सुविधा देने के मामले रहे, आपने किस तरह से इन बदलावों को देखा है?
2: देखिए, निश्चित तौर पर CDS की डिमांड बहुत पुरानी थी और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से वॉरफेयर बदल रहे हैं, हमारी चुनौतियां बदल रही हैं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो तीनों सेनाओं के ऊपर तीनों को डायरेक्शन दे सके, और ये डिमांड काफी दिनों से लंबित थी, जिसको कि अब जाके पूरा किया गया था। अभी हमारे पास तीसरे CDS ही इस समय है, तो इस CDS के आने से समन्वय तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मनोबल की बात करी शैलेन जी, मनोबल एक ऐसी चीज है जिसको आप नाप नहीं सकते। सैनिकों का मनोबल तो वैसे ही बहुत हाई रहता है, हमने फिल्मों में देखा है और एक्चुअल हमने फील भी किया है। तो उस मनोबल को और कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आपको सामाजिक प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको राजनीतिक रूप से प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं और साथ ही साथ हौसला अफजाई के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है। एक बहुत छोटी चीज है सैनिकों के रहने की जगह, उनके आवासों कहां पे रहते हैं, उनकी फैमिली को जो क्वार्टर्स मिले उनमें क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, या क्या और बेहतर किया जा सकता है, इनके ऊपर काम हुआ। और देखिए, देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन अगर आप सैनिक के रहने के खाने के पीने के उन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल कर दें या उसको फील करा दें कि हम आपके इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो वो दुगने जोश से लड़ाई करता है। आप उसको सही समय पर सही हथियार दे दें, सैनिक का मनोबल अपने आप बढ़ जाता है, और जब सैनिक का मनोबल बढ़ जाता है आपकी सेना का और आपके देश का मनोबल ही बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों का काम हुआ है, और ये बहुत ही मार्के की बात थी कि अग्निवीर का जो इनटेक आया उसने भी ये चीज दिखाया कि आपको इस समय एज ऑफ नाउ कम से कम 2.5 लाख नए सैनिक तो मिल ही चुके हैं, यानी कि एक जो सुधार की गुंजाइश है उसके ऊपर काम चल रहा है। और जो मनोबल की हम बात कर रहे थे, अब ये देखिए एक बहुत छोटी सी चीज होती है, देश का प्रधानमंत्री किसी बड़े पर्व पर 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, दिवाली में, होली में सैनिकों के बीच चला जाता है, और ये ऐसा लगता है कि केवल फोटो ऑप नहीं है, उन सैनिकों से पूछे जिनके साथ हम इसमें खाना खा रहे हैं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री इस देश के, उनका मनोबल बढ़ता है और वो फिर उस जज्बे को सेना में लेके जाते हैं। और हमने देखा आदमपुर गए S-400 जिसके बारे में पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया था कि हमने S-400 गिरा दिया, प्रधानमंत्री ने उस नैरेटिव को वहीं से तोड़ दिया कि वो गए और वहां पर S-400 के सामने खड़े होकर उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं, ये आपका जो एक्चुअल वार है उसके साथ साथ ये भी चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल अगर आपके प्रश्न पर आऊं तो मनोबल, सैनिकों की सुविधा और CDS का अपॉइंटमेंट, ये तीन एक ऐसे विषय थे जिनके ऊपर लगातार काम हुआ है और इन काम करने से हम रिजल्ट सामने देख रहे हैं।
1: जिस तरह से सर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात करें, RP सिंह सर आपसे हम जानना चाहेंगे, वैश्विक साझेदार हमने ढूंढे हैं रक्षा क्षेत्र में, साझेदारियां हमने बढ़ाई हैं, इम्पोर्टर से हम एक्सपोर्टर बने हैं, इन सारी चीजों के बीच भारत की जो सोच बदली है, जिस तरह से भारत अब आगे बढ़ रहा है, इसका पूरी दुनिया में क्या संदेश गया है?
0: देखिए, दुनिया में संदेश तो बड़ा अच्छा गया है कि भारत जो है सभी के साथ मैत्रिक व्यवहार कर रहा है, भारत सबके साथ मिला हुआ है, चाहे कोई भी दुश्मन नहीं है, सभी दोस्त हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। और लेकिन भारत जो है अपने लिमिट में ही रहता है, आगे बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कब क्या हो, जैसे कि भारत किसी के बीच में दखलंदाजी नहीं करता है कि मैं आकर के उसके समझौता कराने के लिए आगे आ रहा हूं और समझौता ना हो चाहे वो हो, क्योंकि भारत ने ये भी देखा दुख में कौन साथ है। तो भारत के पास ये सब है, भारत को पूरी जानकारी है, तो उस चीज को जानते हुए भारत जो है अब धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज को इतने चेंजेस लाए हैं कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर जो है जो उनका पास रिकॉर्ड जो है कभी भी फिर से खुल सकता है, कभी भी वो अपने चेंजेस नहीं लाएंगे। तो भारत इन सब बातों को देखने के लिए उसी में मेरे ख्याल से यही लिया गया कि आत्मनिर्भर बनो, हमारे पास इतने वेपन और सिस्टम होने चाहिए कि 3-4 साल 5 साल 10 साल तक की लड़ाई हम खुद लड़ सकें, जैसे कि ईरान कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, और इन लोगों के पास जो भी सप्लाई आ रही है। लेकिन भारत चाहता है कि हम खुद अपना मैन्युफैक्चर करें, न कि पाकिस्तान की तरह रहें कि हमें चाइना से मंगाना पड़ रहा है, टर्की वाले भेज रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं। एक तरह से वहां पे फायरिंग रेंज हो गया था, वहां पे ट्रायल हो रही थी किसका हथियार चल रहा है, किसका हथियार नहीं चल रहा। तो ये सब चीजें जो है भारत उसमें काफी सक्षम है, और मेरे ख्याल से भारत बड़ी शांतिपूर्वक

0: से इस चीज में आगे बढ़ता जा रहा है, और जो उसकी हर एक राष्ट्र के साथ जो भी राजनीतिक तौर से, आपके जो मेडिकल के तौर से, चाहे और भी एजुकेशन के तौर से, मिलिट्री के तौर से, जो भी उनके साथ उनके समन्वय है, संधि है, उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है और आगे चल के भी ये काम करेंगे और उसमें आगे जो है एक तरह से उनको काफी सक्सेसफुल होता जा रहा है उसमें, तो भारत की स्थिति काफी मजबूत है। और अगर इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, और भारत का ये आत्मनिर्भरता के ऊपर अगर काफी आगे काम जो चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा और इसको तरह तरह की सहायताएं मिलती रही, और जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की डिफेंस कॉरिडोर सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री आगे आ रही है, तो मेरे ख्याल से भारत एक सक्षम राष्ट्र इसमें बनेगा।
1: अनुपम सर, आपसे आखिरी सवाल है, हम नाम से जानना चाहेंगे कि भारत को रक्षा क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों की बनाने की बात हो रही है, जिस तरह से आरपी सिंह सर ने भी जिक्र किया, तो फिर इसे शामिल कराने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और पिछले 12 सालों में उन प्राथमिकताओं पर कैसे देश आगे बढ़ा है?
2: देखिए शैलेंद्र जी, प्राथमिकताएं पता करना बहुत जरूरी है, और प्राथमिकता हमारे इस डिस्कशन में निकल के आया है कि 75% तक हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, 2030 के आसपास हम 75% आत्मनिर्भर हो जाएंगे डिफेंस सेक्टर में, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर के साथ साथ अगर हम उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम निर्यात से जोड़ जाए तो वो भी एक बहुत वेलकम चीज है। हमारा टारगेट है 50,000 करोड़ रुपए डिफेंस निर्यात से, जिस दिन हम 2030 तक जो हमें टारगेट रखा है, अगर हमने वो अचीव कर लिया तो ये एक बहुत बड़ा लीप होगा हमारे लिए, एक बहुत लंबा कदम होगा। तो ये दूसरी प्राथमिकता, इसके ऊपर हमें लगातार काम करना पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल करिए, प्राइवेट प्लेयर्स को लाइए, पीपीपी मॉडल लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन ये आपको टारगेट अचीवेबल है और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, आपको टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस को और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको डीआरडीओ और इसरो जैसे शक्तियों को, संस्थानों को और ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ अपने डिफेंस को और मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इन सबको प्राथमिकताओं में बिना लाए आप काम नहीं कर सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन पार्क, ये देश भर में 200 के आसपास बनाए गए हैं, क्या हम इनको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये सिर्फ डिफेंस पार्क नहीं है, ये इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पे आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जहां पर आप एमएसएमई को भी खड़ा कर रहे हैं और लोगों को डिफेंस के साथ जोड़ रहे हैं। इसको भी हम प्राथमिकताओं में शामिल करें, शुरुआत अच्छी है, इसको और बेहतर कर सकते हैं। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर ने हिंट दिया था क्वाड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ब्रिक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए क्वाड प्लस की, क्वाड प्लस में हम और कुछ मेंबर्स लाएं और उसको हम लीड करें। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ब्रिक्स प्लस में, और ब्रिक्स के भी जो नेशंस हैं उनको हम अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश करें। नेटो प्लस की हम अवधारणा के ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, हमारे पास प्राथमिकताएं भी बहुत हैं, और हम उनको एक सही डायरेक्शन में कदम दर कदम अगर हम बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य हमारा है, और भविष्य हमारा है तो भविष्य विश्व का भी है। हम जब बात करते हैं मेक इन इंडिया तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा होता है मेक फॉर वर्ल्ड, तो हम जो बना रहे हैं वो दुनिया के लिए भी बना रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक फिनोमिना रहा है, उसके ऊपर हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे, और हमारी हर एक पॉलिसी में कुटुंबकम दिखता है, मेक फॉर इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड दिखता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः भी दिखाई देता है। शैलेंद्र जी,
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: थैंक यू वेरी मच।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आइए सुनते हैं देशकान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज चुके हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहेगा। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं दस्तक फिल्म का ये गीत जिसे गाया है उदित नारायण ने।
1: मुझ

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मिला सकते हैं 0522 2238 825, ये हमारा नंबर है, और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। हमारे साथ श्रोता एक जुड़े हैं, देखते हैं कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी हेलो।
1: इश्क की यादों में सफर करते हैं, चांद के उजाले में चमक करते हैं। इश्क की यादों में सफर करते हैं, चांद के उजाले में चमक करते हैं। कैसे दूं मैं तुझे वफा का सिला, कैसे दूं मैं तुझे वफा का सिला। मैं अपने सीने में तेरी सांसों की सफर करते हैं।
0: क्या बात है?
1: मैं अपने सीने में तेरी सांसों की सफर करते हैं।
0: बहुत सुंदर।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग शमा जी, कैसी हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, और जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल, आपको भी नमस्कार। कैसी
1: मैम
0: हैं?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम रेडियो पे सुन रहे हैं तब जवाब दे रहे हैं।
0: आवाज मेरी नहीं आ रही है?
1: हल्की बहुत कम आ रही है। और बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी।
1: जी मैम हम बहुत अच्छे हैं, आपने मेरा फोन रिसीव कर लिया, इसके लिए थैंक यू, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: जी। हमें
1: और
0: भी
1: आज मेरा फोन बहुत दिनों के बाद लगा है
0: जी। तो आज

0: ये कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगी, जल्दी से ये भी बता दे।
1: हंगामा मूवी से सुनेंगे हम नहीं तेरे दुश्मनों में। वो मैम आपका नाम क्या है, हमने सुना नहीं।
0: मेरा नाम पूनम शर्मा है।
1: आपसे पहली बार बात हो रही है मैम
0: जी। चलिए कार्यक्रम में
1: हम अपने भाई बहन के नाम लेना चाहते हैं,
0: जल्दी से ले लीजिए। मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ आप तक क्या नहीं पहुँच रही है
1: जी। मैम नहीं आ रही है, हम रेडियो पे सुन रहे हैं तब जवाब दे रहे हैं। मैम हम सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं और फिर हसीना मंसूरी अप्पी हैं जो इंदौर में रहती हैं, प्रेम सिसोरिया भाई हैं जो उज्जैन में रहते हैं
0: जी।
1: और बाबू अंसारी भाई हैं, रिंकी पिंकी हैं, आरजे पूनम है, शबनम अब्बासी हैं और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को हम सुनवाना चाहते हैं।
0: ठीक है, सभी के लिए आपकी
1: तिवारी अंकल हैं उनको भी सुनवाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का गीत आपके सभी मित्रों के लिए।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय।

0: हेलो
1: हेलो, कैसे हैं? अपना नाम बताइए।
0: मैम, हम जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं फतेहपुर जिला से। मैम नमस्ते।
1: नमस्ते, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: जी हम तो बढ़िया हैं, आप कैसी हैं? आप बताइए।
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज के
0: बिल्कुल
1: कार्य
0: अच्छे हैं
1: क्या
0: हम।
1: करते हैं आप?
0: जी हम किराने की दुकान करते हैं और आपके कार्यक्रम को सुन रहे थे और
1: जी
0: कॉल भी
1: जी
0: लगाए, कॉल भी तुरंत लग गई।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैम मूवी रहेगी काली टोपी लाल रुमाल। गाने के बोल हैं तेरे मेरे प्यार का, कल हो गया ऐसे करके गाने का ऐलान। और मैम जी कुछ मित्रों के नाम ले सकते हैं?
1: जल्दी से ले लीजिए।
0: सबसे पहले तो आप हैं और दीप्ति
1: बिल्कुल।
0: मैम है, पूजा बिमल मैम है और हमारे मित्र हैं बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकारी से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं और मिंटू तिवारी जी हैं। और मैम जी जितने भी लोग सुन रहे हैं
1: सुन
0: सभी
1: रहे हैं,
0: लोगों के लिए गाना डेडिकेट
1: ये
0: करते हैं।
1: सबसे अच्छी लाइन होती
0: और
1: है।
0: हमारे भाई हैं अश्वनी पाल।
1: ये सबसे अच्छी लाइन होती है जो हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये गाना है आपकी तरफ से। तो कार्यक्रम में जितेंद्र जी आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारा नंबर है 0522-2238-825 और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। हमारे साथ श्रोताएं जुड़े हैं, जान लेते हैं कहां से हैं। हेलो,

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता, कहां से जान लेते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम राहुल कुमार है, जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से बात कर रहा हूँ। दीदी जी,
0: राहुल जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताएं।
1: दीदी जी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है।
0: अभी आ रही है? हेलो
1: जी, हेलो
0: जी।
1: हाँ भाई, ये कह रहा हूँ मुझे जन्म से दिखाई नहीं देता है और मैं घर पे ही रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए तो आज
1: जी आपके प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गाने के बोले ये बंधन दो प्यार का बंधन है, लेकिन कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ।
0: जल्दी से कुछ ही मित्रों के नाम लीजिएगा।
1: जी
0: हाँ।
1: मांगीलाल चंदेल भाई साहब हो गए, फूलचंद पाल भाई साहब हो गए
0: जी।
1: और दिनकर सिंह जी हो गए, फरुखाबाद से सतीश भाई साहब हो गए और इटावा से ओम नारायण कुशवाहा जी हो गए और गंगनदीप कमल जी हो गए औरैया से,
0: चलिए चलिए,
1: और इनकी बिंकी हो गई जगदीशपुर से,
0: बिल्कुल,
1: और कानपुर से पूनम जी हो गई,
0: सभी के लिए,
1: और जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए,
0: सभी के लिए ये आपकी तरफ से गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। हमारे साथ श्रोता कहाँ से जुड़े हैं जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कैसे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी, लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहे हैं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: कार्यक्रम में लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम, मैं खेती बाड़ी करता हूँ।
0: जी, खेती बाड़ी करते, तो इस समय कोई फसल लगी है आपके खेत में?
1: नहीं, कटाई हो गई मैम अभी मूंग की।
0: जी जी, तो आप और इसके साथ भी कुछ करते हैं या खेती ही प्रमुख आपके यहाँ का कार्य है आपका?
1: नहीं, प्रमुख खेती ही मैम।
0: जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे लक्ष्मण जी?
1: फिल्म का नाम है ये रात फिर में आएगी।
0: जी,
1: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत है, फिर मिलेंगे इस बात का वादा कर लो।
0: चलिए, तो आपकी
1: और मैम आकाशवाणी लखनऊ के लिए मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ मैम जब फोन लगा है।
0: चलिए, देखिए जब आप मेहनत करते हैं ना तो फल तो मीठा मिलता है, तो कोशिश करते रहिए, आपकी कॉल जरूर लगेगी, कभी ना कभी तो लगेगी, क्योंकि देखिए सभी श्रोताओं को फोन करने का जो होता है ना,
1: इस
0: लाइन बिजी होती है।
1: लखनऊ बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी बिल्कुल, और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आप सभी का प्यार है। और तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे लक्ष्मण जी?
1: फिल्म मिलेंगे इस बात का वादा कर लो गीत के बोल है, ये रात फिर आएगी फिल्म का नाम है।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत सुना दे।
1: एक दो मित्रों के नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ, जल्दी से ले लीजिए।
1: ओम प्रकाश नेमा है, मांगीलाल चंदेल हैं, और गोलू भाई हैं, भूपेन कटारी जी हैं, और समस्त रेडियो जितना हमारा आकाशवाणी परिवार है।
0: बिल्कुल, सभी के लिए जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक श्रोता, जानते हैं कहाँ से हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताइए। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मेरा नाम है धन्वंतर मौर्य, जिला महाराजगंज से बोल रहा हूँ मैम, लेहड़ा मंदिर के बगल से।
0: जी धन्वंतर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: काम तो मेरी खेती बाड़ी होता है,
0: जी जी,
1: बात तो कुछ नहीं है, काम नाम।
0: चलिए, खेती बाड़ी ही बहुत बड़ा काम है
1: जी,
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई भोलेनाथ का कोई गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं, किशोर कुमार की आवाज में, गुवारा बाप फिल्म का ये गीत है
1: जी।
0: कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से एक श्रोता राजेंद्र जी, जानते हैं उनके बारे में। हेलो हेलो।
1: हम उस रब से गुजारिश करते हैं, तेरी दोस्ती की ख्वाहिश करते हैं, हर जन्म में तेरे जैसा ही दोस्त मिले, तू मिले तो सही वरना जिंदगी ही ना मिले। नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है।
1: पहली बात तो आपको धन्यवाद जो आपने कॉल रिसीव की। कस्बा कवरिया तहसील नवाबगंज झुमका सिटी बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं मैम जी।
0: जी राजेंद्र जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं?
1: अभी तो मैम जी हमारा थोड़ा मकान का काम चल रहा है। वैसे मकान से जब फुर्सत होती है तो हम जरी का काम करते हैं मैम जी।
0: अच्छा अच्छा, मतलब अब इस समय आप बहुत व्यस्त हैं।
1: हाँ मैम जी, अभी तो खैर मजदूर की छुट्टी हुई, वैसे ही कॉल लगाई आप तो जैसे ही पहले क्लिक किया वैसे ही कॉल भी लग गई।
0: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉल लग गई, हमें बहुत खुशी हुई। हमारे साथ एक नए श्रोता जुड़े हैं, और कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जल्दी से बता दें।
1: मैम जी हमारी तो खैर कॉल लगती रहती है,
0: हमारी बात आपसे पहली बार हो रही है।
1: हाँ जी
0: जी, चलिए तो आज के कार्यक्रम में बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा राजा। इसमें एक सॉन्ग है, चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। और मैम जी कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
0: जल्दी से कुछ ही दोस्तों के नाम लीजिएगा।
1: हाँ जी कुछ ही लेंगे, जैसे भगवान सिंह परमार जी हैं, सारू नूर अंसारी जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गंगाधर सावंकर जी, सोनू जी हैं, और हमारे राजू यादव जी हैं, और पूनम जी है कानपुर से आरजे, उनको भी सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम जी।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत आपके सभी मित्रों के लिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारा नंबर है 0522-2238-825। हमारे वो श्रोता जो अभी जुड़े हैं वो भी मिला सकते हैं ये नंबर और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अपना नाम बताइए।
1: हम मिंटू तिवारी, ग्राम भकरना, तहसील खागा, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं। मैम,
0: मिंटू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं
1: जी?
0: आप क्या करते हैं?
1: मैम, एक खेती किसानी के काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, हर दम चलता रहता रेडियो।
0: तो हमारे यहाँ के कौन कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद आते हैं?
1: अब प्रोग्राम जैसे हेलो फरमाइश हो गया, 9:30 बजे वो आता है मेल हमारे गीत हमारे वाले, वो भी सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: उसके बाद खेती किसानी वाला सुनते हैं रोज।
0: मतलब है कि सभी कार्यक्रम आप लगभग सुनते हैं।
1: रेडियो नकलाऊ हरदम चलता ही रहता है मेरे यहाँ।
0: जी जी, चलिए आप सुनते हैं और पसंद करते हैं। आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमको मन का गाना सुनाइए, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। थोड़ा अपने बहुत दिन में लगा तो दोस्त का नाम ले ले, थोड़ा
0: जल्दी से ले लीजिए।
1: पहले तो होगा अपनाथ जी, भगवान सिंह परमार जी होगा, राम बाबू शर्मा जी होगा, जितेंद्र पाल जी होगा, और प्रभाकर तिवारी जी होगा, रसूलपुर गुलरास होगा, मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, और जितने लोग सुन रहे हैं, और राहुल भाई इटावा से होगा, और जितने लोग सुन रहे हैं उन
0: सभी के लिए,
1: खासकर आपको, आपके जितने आर्जे उन सभी के लिए।
0: सभी के लिए, ठीक है। आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू जी। चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा देते हैं।

0: आइए जान लेते हैं हमारे साथ श्रोता कहाँ से जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: जी। नमस्कार बहन जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोगा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: सुरेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे
1: थैंक यू
0: हैं आप?
1: बहन जी। करीब करीब 3 माह बाद कॉल लगी है मेरी
0: अच्छा, बहुत
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी श्रोताओं को मौका देते हैं कि उनकी भी कॉल लगे, उनसे भी बात हो।
1: जी
0: जी, तो आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी आज मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, इसका टाइटल सॉन्ग,
0: जी
1: और साथ में कुछ हमारे श्रोता मित्रों को भी याद कर लूं क्योंकि बहुत दिनों बाद कॉल लगी है
0: बिल्कुल, याद कर लीजिए।
1: जी। गजाल लोधी जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, राम जी गर्ग जी है, विजय पांडे जी है, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो सुन रहा है उन सभी के लिए, क्योंकि
1: जी
0: सभी श्रोता आपके हैं, मित्र हैं, सभी साथी हैं आपके। और कभी होता है उनकी कॉल नहीं लगती है, लेकिन वो भी खुश हो लेते हैं कि हमारे हमारे लिए भी कोई गाना डेडिकेट किया
1: हाँ,
0: जा रहा
1: याद कर रहा है कोई
0: है ना। चलिए,
1: जी।
0: आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं और सभी मित्रों के लिए।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और आज के कार्यक्रम में हमारे आखिरी जो श्रोता हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी, हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैडम जी, हम किसान हैं
0: जी। चलिए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे जल्दी से वो भी बता दें।
1: कमल का गाना सुनवा दीजिए, ये सभी श्रोताओं के लिए है।
0: चलिए,
1: हमारी दोस्त बहुत लंबे हैं।
0: बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि सभी श्रोताओं के लिए आपकी
1: तो बहुत मतलब रेडियो मतलब हम बरोबर सुनते हैं
0: जी,
1: डीटीएच भी लगवाए हैं उससे भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा रेडियो सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए तो कार्यक्रम में आपने कॉल किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंच रहा है कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये

0: सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन

0: और उनका शैक्षिक दर्शन।
1: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉ. कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन

कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र

0: अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी।
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी।
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी।
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी।
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी।
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी।
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी।
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी। अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के

0: कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो यह है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल,
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ सदाबहार नगमे, जहां हर धुन में छुपी है एक कहानी, हर लफ्ज में है एक एहसास। कार्यक्रम का अगला जो गीत है वो सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि उन पलों की याद है जब मोहब्बत मासूम थी और जज्बात सच्ची।

दोस्तों, ज़िंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, ये गाने हमें एक पल ठहरने और मुस्कुराने की वजह दे ही देते हैं।

कभी प्यार की मीठी बातें, कभी दोस्ती के रंग, तो कभी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, सब कुछ समेट लेता है ये गीत संगीत।

दोस्तों, ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं, तो सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। ये गीत वही सुकून लेकर आते हैं।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। और इसी के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार

0: अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। धर्मेंद्र ने हमें थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि पिंकी, जिनकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 2 जून 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने पीला सूट, काली पैंट, सफ़ेद दुपट्टा पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9815228383। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9815228383। सुधा देवी ने थाना फकरपुर जनपद बहराइच से सूचित किया है कि बबलू, जिनकी उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गद्दुम, चेहरा लंबा और सामान्य शरीर है, ये दिनांक 15 मार्च 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने काली पैंट, सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9161628402। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9161628402। मीरा देवी ने हमें थाना लालगंज जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि खुशबू उर्फ देवी, जिनकी उम्र 15 वर्ष, कद 5 फीट, रंगे हुआ, चेहरा गोल, सामान्य शरीर है, ये दिनांक 7 मई 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने नीली जीन्स व लाल टॉप पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9728192324। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9728192324। ब्रजेश ने हमें थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि मनीषा, जिनकी उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा लंबा, ये दिनांक 5 अप्रैल 2026 से लापता है। घटना के समय इन्होंने टी शर्ट, लोवर व चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9956611696। नंबर एक बार पुनः सुन लें 9956611696। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके

0: संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र पर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें नष्ट की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के क़त नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इस मौके पर नई दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिशात ज़रूर पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के अवाम ने देखा है कि जब कोई हुकूमत सही नीयत के साथ चलती है तो तरक्की भी तेज़ी से होती है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क मुसलसल तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे कबल मरकजी काबीना ने भी कल एक करारदाद पास करके वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत करने वाले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: रियासती इलेक्शन कमीशन ने कल 3 सतही पंचायत इंतखाबात की हतमी वोटर लिस्ट शाया कर दी। रियासत में कुल 29.01 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। इसके साथ अब वोटरों की कुल तादाद 12 करोड़ 58 लाख हो गई है, जबकि 2 करोड़ 3 लाख नामों को हजफ किया गया है। वोटरों में इजाफे के मामले में बलिया रियासत में पहले नंबर पर रहा, जहाँ 1,60,376

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार और सब श्रोता बहनन का ममता के नमस्कार। और श्रोता बहनी, गर्मी तो भाई बहुत भीषण पड़ रही है कि नहीं? और घर में आजकल देखो गदर भी कटत हुई, काहे कि भाई लड़कन बेटियन के स्कूली के गर्मी की छुट्टी जो चलत है, घर में नाते नतकुर पोता भांजा सब आए हुई हैं। कोई कहत हुई ई खाब तो कोई कहत हुई ऊ खाब, कोई कहत हुई ई खेलब तो कहू कोई कहत हुई ऊ खेलब। कुछ लड़का बच्चा भाई टहरे घूमे के तैयारी में हुई हैं, तो कुछ घूम टहर के घरे आ गए हुई हैं। तो ई सब माँ भाई विद्यालय के गृह कार्यक्रम न भूल जाओ, काहे कि संजा होते खेले कूदे चल देते हैं लड़का बच्चा अपने सही सहेलन मित्रन के साथ है। पहले बहनी देखो, एक कहावत कहा जात रहा कि पढ़ी हो लिखी हो तो बनी हो नवाब, और खेली हो कूदी हो तो बनी हो खराब। मुलाब असनाई है, अब तो पढ़ाई लिखाई के साथे खेल कूद बहुत जरूरी है और ये एक तरह के व्यायाम भी है। बहनी जब लड़का बच्चा ननुहार होते हैं तो उनके खेल तनी दूसरे मेर होते हैं, और जब बढ़वार हो जाते हैं तो घर माँ कम बहिरे के खेल ज़्यादा पसंद करते हैं। ननुहारेपन से बच्चन का अस खेल मने जीमा गिनती आवे अक्षर आवे ये सब खेले खातिर जागरूक करे का चाहिए, ताकि खेल खेल में ये बहुत निकी तना से सीख लेते हैं, जिसे इनके शारीरिक मानसिक और भावनात्मक मने सर्वांगीण विकास होते हैं। समस्या के समाधान क्षमता और भाषा कौशल भी विकसित होते हैं, मने बोले चाले का भी इनका आवत है। बहनी लड़का बच्चा जो उन घर माँ देखत हैं वह है सब वो घर घर वाले खेल में खेलत हैं, और जो उन स्कूली माँ देखत हैं जैसे शिक्षक के बातचीत छात्र कैसे छात्रा से बातचीत करत हैं कैसे पढ़ावत हैं, तो उके नकल करे के घर माँ आए के कोशिश करत हैं। तो यह लिए दोनों जगह घर और स्कूली के वातावरण इनका अनुशासित करत है तो वह बहुत बढ़िया होएगा चाहिए। बहुत लड़का बच्चा तो भाई कहानी कविता सुने माँ बड़ी रुचि लेते हैं, तो उनका अस कहानी कविता सुनावा जाए जिसे उनका शिक्षा मिले। और खेल कूद के साथ है बहनी इनका अगर गावे बजावे में भी रुचि होए तो इनका यह का खातिर भी प्रेरित करें, तो ईश्वर करे खूब खेलें कूदें और पढ़त लिखत रहें और भाई चुटाएं ना। यह कामना के साथ है आप सब सुनो ई लोक भजन।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अश्वता बनी, देखो आज 11 जून का खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, जो उन खेल का संरक्षित करत है और बढ़ावा और प्राथमिकता देते है कि सब लड़का बच्चा यह के लाभ उठावे और जागरूक होए। और श्रोता बहनी, गेदहरन के खेल और उनके रुचि, उनका जो है

0: वाले जीवन मां आगे बढ़े खातिर प्रेरित करत है और उनके व्यक्तित्व का बढ़ावत है और नवा रास्ता दिखावत है। और पहले के खेल को जोन रहा जोन आज आजीविका के मार्गदर्शक बन गया है, जैसे कबड्डी कुश्ती जैसन खेल। तो देखो यह मेर खेल के मैदान बच्चों के व्यक्तित्व को देते नए आयाम। ई विषय पर वार्ता डॉक्टर मंजू शुक्ला बहिनी से आप सब सुनो जोन रुचिकर ढंग से हमका सबका सुनाइन है।
1: मैं डॉक्टर मंजू शुक्ल आज आपसे खेल के मैदान बच्चों के व्यक्तित्व को देते नए आयाम विषय पर वार्ता करूंगी। बालकन पूरे साल कड़ी मेहनत किए रहो तो परिणामों अच्छा आवा हुई। अब तने खेल कूद की बात हुई जाए, खेले का मतलब पूरे दिन मोबाइल पर उंगली घुमावे ते नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि तुम दिन भर मोबाइल पे जो खेल आवत है वो खेला करो। ऐसा करे ते आँखी तो अंधियाए जात है। दिना भर मोबाइल पर खेला करियो तो व्यायाम कब करियो? ये तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ना ही ठीक है, ना ही शारीरिक कसरत के लिए। यही तेने या हम कुछ ऐसे खेलन के बारे में बतियायु जिनके बारे में तुमका पहले से मालूम हुई है, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, है ना मज़ेदार खेल। कोई हारत है, कोई जीतत है, लड़ाइयो होत है, बड़ा मजा आवत है। ये खेल घरों में खेले जा सकत हैं और तुम खेलतो हुई हो। देखे वाली बात ये है कि खेल में कौन जीतत है और कौनो हारत है। कभी तुम जीती हो, कभी दूसरा जीती। खेल हमका सिखावत है कि जीत हार जीवन केर भाग है, तो हारते मन मार के ना बैठ जाओ। जब तक जिंदगी में जीत ना पाओ, लक्ष्य ना हासिल कर लो, लगे रहो, मेहनत करो। अगर दूसरा जीते तो वाको बधाई जरूर देओ। जब तुम जीते हो तो तुमको का बधाई मिली, है ना अच्छी बात। लूडो की ही तरह एक खेल है शतरंज। ये हमारे देशवा का खेल है। शतरंज पहले चौपड़ की नाई खेला जात रहा। अपने भारत के कई मंदिरन माँ शिव पार्वती चौपड़ खेले दिखाए गए हैं। बाद में यही शतरंज बन गवा जो अब पूरी दुनिया में खेला जाता है। ये खेल दुई लोग खेल सकत हैं। इके कई नियम हैं विश्व माँ जिनका जानब जरूरी है। यही माँ सफ़ेद और करई गुटियाँ होती हैं। यह शतरंज शाही खेल कहा जाता है। कहते यही माँ राजा रानी वजीर हाथी घोड़ा पैदल सभी तरह की गुटियाँ होती हैं, पर सबकी चाल अलग अलग होता है। और देखो राजा रानी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और साथ में जो पैदल हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो अपनी चाल समय समय पर बदल लेते हैं। बच्चों तुमका बताई यह खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है। यही माँ हमारे देश के लड़का लड़कनी विश्व विजेता हैं। तो आओ छुट्टियन माँ घर बैठे शतरंज खेला जाए। शतरंज से मिलत जुलत ताश केर खेल है। ताश छोटे बड़े सबे खेलत हैं। यहाँ तक कि अगर तुम रेलगाड़ी में जाओ तो लोग ताश खेलत मिल जाई हैं। ताश माँ 13-13 पत्ते चार समूहन माँ चार रंगन माँ होत हैं। कई तरीके से ताश खेला जाते हैं। और हाँ बच्चों, ताश पैसे से कबहू ना खेलियो, यह सही नहीं है। ताश केर आदत नहीं डाले चाहिए, नहीं तो पढ़ाई कब करी हो। एक और खेल है कैरम, यह घरे में खेल सकत हो। यही माँ दो ही लोग या चार लोग खेल सकत है। कैरम सफ़ेद और करिया गोटी से खेला जाता है। 9 करिया तथा 9 सफ़ेद गोटी। एक और लाल रंग की गोट होते है रानी, एक स्ट्राइकर होता है जिसे चलाए के गोटियन का पॉकेट में डाला जाता है। पॉकेट जो है ना वो बोर्ड के चारन किनारन पर बने होते हैं और पूरा उंगलियन का खेल है ये और स्ट्राइकर का है। और जो रानी जीत जात है मानो जीत गया, अक्सर वही जीत जात है। उंगलियन ते स्ट्राइकर का गुटियन की तरफ फेंका जाता है जैसे वो जो चारों पॉकेट हैं उनमें कहीं ना कहीं चली जाए। कई तरीके से ये खेला जाता है। इसके अलावा और बहुत खेल हैं गाँव में जो तुम जरूर खेले हुई हो, जैसे सिकड़ी रस्सी कूद तथा गुट्टा। ज्यादातर लड़की नहीं खेलती हैं ये गेम बच्चों।

वो छुट्टी माँ गांव की हरियाली मन मोह लेते हैं। कहूं पे आम आम तोड़त हुई हो ना, और कहूं नदिया में नावत हुई हो, बाबा दादी नाना नानी के दुलारों मिलत है। पर खेलो बा जरूरी है, पढ़ाई के साथ खेल से शरीर तथा दिमाग दोनों ठीक रहत है, दोनों केर व्यायाम हो जाते हैं। बच्चा लोग तुम कबड्डी तो जरूर खेले हुई हो, हमहू कबड्डी बहुत खेलती रहे। ये 12 खिलाड़ी का दुई टीम होती हैं, लेकिन एक समय माँ केवल 7 खिलाड़ी खेलत हैं, बाकी बैठे रहे था। जब उनकी टीम का कोई आउट हुई जाई है तो दूसरा खिलाड़ी जाई। इमा बिना सांस टूटे कबड्डी कबड्डी कहत दूसरे पाले में घुसकर खिलाड़िन का चुवे का होता है, बिना पकड़े जाए अपने पाले में आवे खोए थे। और बहुत अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं वो लाइन पर, जो दोनों पालन के बीच की लाइन होता है ना, हुआ पहुंच के कबड्डी कबड्डी कहते हैं। जब सब लोग उनका पकड़े का आवत हैं तो वो सबका छूके अपने पाले में आए जाते हैं, तो सभी जो हैं वो आउट मान लिए जाते हैं। है ना बढ़िया बात। यह खेल ताकत और फुर्ती देते हैं और शासन का भी मजबूत करते हैं, सांस को कैसे रोका जाए, ये खिलावत है जो बहुत जरूरी है शारीरिक विकास के लिए। यह एक विश्व स्तरीय खेल है, इसके विश्व स्तरीय नियम भी बन गए हैं। इनमें हमारा भारत बहुत आगे है कबड्डी कबड्डी में। भारतीय गांवों में एक खेल खो खो खेला जाता है, ये तो खूब खेले हुई हो तुम लोग। ये खेल में तेजी फुर्ती की बहुत जरूरत है। खो खो के खेल में 2 टीमें होती हैं, 12 12 जन इनकी, और 9 9 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं। एक टीम के खिलाड़ी इधर उधर मुंह करके बैठ जाते हैं जबकि दूसरी टीम चक्कर लगावत है उनका, और खो खो खो बोलकर दूसरे खिलाड़ी का उठावत है कि वो जो चक्कर लगाए रहे हैं खिलाड़ी उनका पकड़े, और जितनी जल्दी पकड़ ले उतनी जल्दी जो है वो आउट हो जाते हैं और उनके पाले का खेल वे जीत जाते हैं। यह भी विश्व स्तरीय नियमों से खेली जाती है। इस खेल में तुरंत निर्णय लेख पड़त है, यहुमा अंक दिए जाते हैं। अब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय हुई गवाह है, बिना खर्चा के खेला जाने वाला खेल है खो खो। एमा तुरंत निर्णय लेख पड़त है कि कहका खो बोली कि वो ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी का पकड़ सके। बच्चों एक और खेल मजेदार है, यह है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब 7 गिट्टी का खेल। ये गांव और शहर के बच्चे खूब खेलते हैं। इमें एक के ऊपर एक गिट्टी 7 गिट्टी रखी जाते हैं, तुम हूँ जरूर खेले हुई हो। यह तेजी और फुर्ती के साथ संयम का खेल है। 7 छोटे पत्थर गिट्टी एक के ऊपर एक धरे बहुत आसान काम नहीं है। ये गिरते जाते हैं फिर रखे पड़त है, फिर गिर जाते हैं फिर रखे के पड़त है। एक निश्चित दूरी से पत्थरन का गेंद से निशाना लगा के गिराया होता है। ऐसा गिराया जाता है कि दूर दूर तक बिखर जाए गिट्टी, जिससे जहीते दूसरे टीम के खिलाड़ी एक के ऊपर एक गिट्टी रख रहे जो मीनार खड़ी करते हैं उमा देरी हो जाए और दूसरा आदमी जीत जाए। एमा धीरज बैलेंस सभी की बहुत जरूरत है। देखा मां आसान लगत है लेकिन 7 गुट्टी एक के ऊपर एक रखना इतना आसान नहीं होता है, बहुत संयम चाहिए। इमा नाराजगी से काम ना चली कि हम तो हारे जाते हैं तो हम नाराज हो गए। एक और खेल गांव की लड़कियां गुट्टा खेलती हैं। यह दुई या दुई से अधिक बिटिया खेल सकती हैं। यही मां निगाह केर और बैलेंस तथा उलटना पलटना पड़ता है, दिमागी खेल है। एक पत्थर उछालकर उसी समय में बाकी गोटिन का एक घेरा मां डाले का पड़त है। यही तरह सिकड़ी का खेल है, ये एक टांग पर खेलने वाला खेल है, कंचा और गुल्ली डंडा भी है। इस प्रकार के पारंपरिक घरेलू खेलन के साथ क्रिकेट बैडमिंटन वॉलीबॉल तथा फुटबॉल भी बच्चा लोग खेलते हैं, इमा बड़ा मजा आवत है। ये सभी खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। इन खेलन मा इनका सामानों चाहिए और मैदानों चाहिए, मैदान के बिना कैसे खेली हो। अगर कोई खेल मा आदत गड़बड़ पड़ जाए, तुम ठीक नियमन से ना खेलो, तो फिर तुम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

0: उमा भाग ले जा पाइयो। यही ले आवश्यक है कि आरंभ से ही इन खेलन का जो उनके नियम है, जो उनकी सामग्री है, नापजोक है, उन्हीं के साथ खेला जाए। सभी प्रकार के खेल हमका अनुशासन भाईचारा सिखावत है। कैसे परिश्रम एकाग्रता से संयम से हमका खेल खेलने चाहिए कि जब कभी दूसरे हार जाए तो बहुत खुश हो जाए, हम ताली बजाए लगे, और कभी हम हार जाए तो रोवे लगे, यह तो ठीक नहीं है ना। तो अनुशासन सिखावत है, अपने पर कैसे हम विश्वास करी यहू सिखावत है। हार जीत कैसे एक समान समझना, कभी जीत हुई है कभी हार हुई है, हारने पर ज्यादा अभ्यास करे के चाहिए और मेहनत करे की आदत डाले के चाहिए। शरीरों स्वस्थ रहत है, बीमारी नहीं आवत है। हमारे गांव घर की मिट्टी से बच्चन के जुड़ाव मजबूत होते है। जब हम गांव में निकल के खेलबे तो हमारा जुड़ाव मजबूत होता है और अच्छा खिलाड़ी बन के तुम अपन और परिवार के मान बढ़ाई सकत हो। सब लोग तुमका देख के ताली बजाइए, मान बढ़त है, खेल भविष्य में बहुत काम आ सकत है, बल्कि इमा नौकरी ही वो मिल सकत है।
1: खेल के मैदान बच्चों के व्यक्तित्व को देते नए आयाम, ई विषय पर अभी आप सब डॉक्टर मंजू शुक्ला बहनी से सुनियो ई वार्ता, जिमा बहनी बड़े विस्तार से खेल के बारे में बताइन, तो यह का खातिर इनका धन्यवाद दे दीन जाए। उम्मीद है नौनिहाल सब ई वार्ता से जरूर जागरूक भई हुई हैं और हमार बहनी होरी भी जागरूक भई हुई हैं कि चलो हमहू सबे कुछ अस्कीन जाए कि हमरो सबके मनोरंजन होए। भाई घर गृहस्थी माँ मनई अकुलाए तो जाते हैं, बहनी अकुलाओ ना, चलो आनंद उठाओ। इनकटा के स्वर है अनुराधा यादव बहनी के।

0: तो बहनी देखो, उम्मीद है हमारी बहनी सफोरी नकटा सुन के बड़ी प्रसन्न हो गई हुई हैं, है कि नहीं? तो जैसन खाएं अन्न वैसन रहे मन। हाँ श्रोता बहनी, खान पान हमेशा शुद्ध और पौष्टिक होकर चाहिए, जौन शरीर के साथे मन और बुद्धि खातिर बहुत निक होत है। तो चलो आप सब आनंद उठाओ ई लघु नाटिका के समझदार गृहिणी। चलो चलो गौरी, दोपहरिया खाना के बेरिया होएगा, भूख नहीं लागे का बहनी?
1: अरे हाँ हाँ चलो बहनी।
0: अरे गौरी, पनीर भिंडी लौकी इतनी सारी जो है बढ़िया बढ़िया सब्जी कैसे बना ली हो तुम आज सवेरे 4 बजे उठ गई रहो का?
1: ना ही हो इतनी भी सारे को उठ पावत है। असल में भिंडी की सब्जी कल रात के बच गई रहे और पनीर लौकी परों के आए।
0: अच्छा, मतलब तुम आज ताजा नहीं बनाए हो?
1: हम तो बहनी ऐसे खाई थे, सब्जी बनाई के फ्रिज में धाई दे थे तो खराब होना ही होते। सही कहा थी रमा बहनी, ताजे पके खाना के स्वाद अलग होते है।
0: हम तो भाई एक सब्जी बनाओ और खाओ पसंद करी थे, हमेशा ताजा बनाई थे और खाई थे।
1: तो हमका ई बताओ बहनी कि ई जोन बची जाए सब्जी तो उका का करी, ओ भी पनीर अत्ता महंग उका कैसे बहाई दे फिर हम। लो हमें तो लाग रहा है कि फ्रिज में धरा खाना है तो नीक हुई है और खाए में कोनो बुराई नहीं है।
0: अरे ज्यादा बनेबे काहे करो कि दूसरे दिन खाए का परे, बतने बनाओ जितनी जरूरत होए। पनीर और दूध से बने पकवान तो भाई ताजे बनावे का चाहिए और ताजिन खाए का चाहिए, ना ही तो ओमा बहुत जल्दी जो है कीटाणु पनपे लागत हैं और देखो इके पोषक तत्व तो भी खत्म हो जाते हैं।
1: लो हमें तो लाग रहा कि फ्रिज में खाना धरा है तो निके हुई और खाए में कोनो बुराई ना है।
0: देखो खाना तो भाई ताजे बनावे का चाहिए और ताजे खाए का चाहिए, और हम देखो फल और सब्जी सब खरीदी थे, ताजे बनाई थे और ताजे खाई थे।
1: अरे तो बहनी हम तो बड़ी दुकानन से तरकारी खरीदी थे।
0: हाँ सब्जी तो भाई ताजी हो चाहिए, हम तो यह कहब कि

0: जो ना अपने करीबे कोनो दुकान होए और चाहे ना छोटे दुकान होए नाने दुकान होए वहां से खरीदें। अक्सर देखो देखे का मिलत है कि जो न फल वल होते है ना ऊपर मोम के परत चढ़ी होते है, जिससे का होते वो ताजे ताजे चमकदार लागत है, देखे में बड़े नीक लागत है।
1: अरे तो बहनी ई बताओ कि ताजी सब्जी पावे का कोनो औरो तरीका है कि हम घर ही में कुछ साग सब्जी उगाई ले ताकि ताजी सब्जी भी हमका मिल पावे और हमार बचत भी हो जाए।
0: हाँ जैसे धनिया मेथी या फिर लौकी तरोई के बेल आसानी से घर में उगावा जा सकत है। और जानत हो बहनी आम और अमरूदों घर में लगा सकत हो, और शिमला मिर्च के तरकारी और टमाटर बैंगन ये सब जो है घर में उगावा जा सकत है। और जब जरूरत हो बस ताजा ताजा तुरो और बनाओ खाओ।
1: अरे वाह बहुत नीक है बतायो बहनी, हम तो अब है तक ई बात सोचबे नहीं की रहन।
0: अच्छा और देखो ये ताजी सब्जी तूर के बनावे खाए तो है ही है भाई, मुला पर्यावरण खातिर भी बहुत नीक होत है। कि कहे कि जब घर में भाई बाग बगीचा हुई है तो पर्यावरण भी शुद्ध रही और हरियाली भी बनी रही और बचत भी होत है। यह तो समझदार गृहिणी के पहचान है।
1: बचत तो भाई
0: हम
1: हम
0: सब
1: सब
0: गृहणियन
1: गृहणियन
0: के
1: के
0: अधिकार
1: अधिकार
0: है।
1: है।
0: सतत खाद्यान्न प्रणाली, जब शुद्ध होगा पर्यावरण और भोजन तभी आएगी खुशहाली। यह विषय पर आधारित आप सब सुने हो ई लघु नाटिका समझदार गृहिणी। आलेख रहा आभा प्रसाद बहिनी के और इमा किरदार हम ममता सक्सेना और साधना बहिनी निभान रहा। तो कहा जाते है ना ताजा भोजन उच्च विचार है कि नहीं। पहले कहा जाता रहा सादा भोजन उच्च विचार, लेकिन अब सादा के साथ है ताजा भोजन उच्च विचार। तो भाई बरखा से पहले आप सब भी हाली हाली बढ़िया बढ़िया बिरवा लगा लो, जौन फल फूल तरकारी भी दें और पर्यावरण भी शुद्ध करें। कहे कि बरखा में हरियाली भी बाढ़ जाई और शुद्ध चीज मिली जो ननुहारन का और हम सबका स्वस्थ भी राखी। तो चलो यह बात पर उठाओ आनंद, इस सोहर के स्वर है साधना भारती बहिनी के।

और श्रोता बहनी देखो, हमरे ग्रामीण बहनन के भी अब बात कह लीन जाए तो श्रोता बहनी, हमरे ग्रामीण बहनन के भी सपन होत है कि कुछ कह दिखावे के लालसा मुला कबो कबो परिस्थितियां आड़े आ जाती हैं, ज्यादातर तो आर्थिक स्थिति। यह लिए देखो भारत सरकार द्वारा इनके सहायता खातिर कई योजनाएं चलाई गई, जिमा से है लखपति दीदी योजना, जो उन ग्रामीण बहनन का आर्थिक और सामाजिक रूप से

सशक्त और आत्मनिर्भर बनावे खातिर है। इमा ग्रामीण बहने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होए का चाहिए। ये योजना मा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास खातिर आसान लोन मुहैया करावा जाते है। 2026 मा उच्च स्तरीय उद्यमिता के रूप में विकसित की जाई जी माँ उई खुद व्यवसाय कह सकत हैं जिका खातिर 5 लाख रुपया तक ऋण मिली और व्यवसाय जी के छोट हो या उका बढ़ाए भी सकत हैं। बहनी यह के लाभ के खातिर आय प्रमाण पत्र, ये लाभ उठावे खातिर आय प्रमाण पत्र परिवार के लागी मने 1 लाख रुपया सालाना आय होए का चाहिए, 10,000 रुपया महीना तक। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो बहुत जरूरी है और ईमा लागे वाले दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बैंक खाता, स्वयं सहायता समूह सदस्यता का प्रमाण पत्र और कौन व्यवसाय करे का है उके भी विवरण और इके आवेदन करे खातिर आप अपने ग्राम पंचायत या विकास खंड के दफ्तर में जाए के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आवेदन करो और ई योजना के लाभ जरूर उठाओ। और अब देखो श्रोता बहनी यह के साथ है, देखो आज के कार्यक्रम के बरिया समाप्त हो रही है। मुला चलत चलत हम आप सबका एक और बात बतावा चली कि हमरे शब्द एक गीत अनेक के कार्यक्रम के अबकी के शब्द है फूल और बहार। तो आप सब पाती और ईमेल द्वारा ई शब्द पर फिल्मी गीतन के फरमाइशी लोग जो है फिल्मी गीत जरूर भेजो और आनंद उठाओ। भूले ना शब्द है फूल और बहार। अब आज के कार्यक्रम से ममता सक्सेना का देव आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज गीतों का ये सफ़र आप तय करेंगे मेरे यानी पूनम शर्मा के संग। हमारे पास ईमेल आई है विजयपाल यादव जी की। ये सुनना चाहते हैं नया दौर फिल्म का ये गीत, और इन्होंने लिखा है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ का नियमित श्रोता हूँ, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और आज का कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सदाबहार गानों का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रस्तुत हुआ। इसके लिए, आपकी प्रस्तुति के लिए दीदी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका विजयपाल जी। और आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा देते हैं। आपने सुनना चाहा है नया दौर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और बलबीर ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है नितिन अमेठी उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी सूरज की, और इन्होंने सुनना चाहा है मोहरा फिल्म का ये गीत। तो आपकी पसंद पर सुनवा देते हैं मोहरा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है पंकज उधास और साधना सरगम ने। इसी गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप पाटिल, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने, और लखनऊ से उमेश दुबे, माधुरी दुबे, उत्कर्ष दुबे, प्राची दुबे, सोनू मोनू और श्याम जी।

कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है जान की बाजी।

जान की बाजी, अभी आपने सुना एस जानकी और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये गीत, और इस गीत की फरमाइश आई थी नरहरपुर सफ़ीपुर ज़िला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, लक्ष्मी, राहुल, मीठी, मोहिनी, सार्थक और उनके पूरे परिवार ने। इसी के साथ इसी गीत को सुनना चाहा था किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी ने, और लखनऊ से सुनना चाहा था आलमबाग लखनऊ से विजय कुमार शर्मा, नताशा शर्मा, छवि और लवी ने। कार्यक्रम में आइए अब आपको अगली फरमाइश की तरफ ले चलते हैं, और अगली फरमाइश हमारे पास आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की, और इन सभी ने सुनना चाहा है लाल दुपट्टा उड़ गया फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जद्दार फिल्म का ये गीत, और इस गीत की फरमाइश आई है राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें।

0: लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में US मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और

0: एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर से की गई भेंटवार्ता, विषय है खरीफ सब्जियों की अगेती खेती। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ सब्जियों के उत्पादन की जहां योजना है तो अब समय आ गया है इसकी। उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश डॉक्टर आर के तोमर साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ सब्जियों का उत्पादन करना है किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है?
2: किसान भाइयों, अब आप गेहूं की कटाई के उपरांत खेत खाली हो जाते हैं और खाली खेत में आगे खरीफ के मौसम में हमें क्या सब्जी लगाना चाहिए और जिस क्षेत्र में जो सब्जी उत्पादन हो रही है क्या बाजार भाव हैं, किस तरह की जलवायु है और किस तरह की भूमि है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम किस फसल की तरफ करें। आप अपने खेत, अपनी जलवायु, अपने जो आप काम करते हैं, जो आप आवश्यकता है उसके अनुसार अपने खेत की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए करें।
1: और बाजार का भाव,
2: और बाजार में भी मैं उदाहरण के तौर पर सभी को समझा दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश या मध्य का क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दूसरी सीमाओं से लगे हुए आप हरी मिर्च का यदि उदाहरण लें या करेले का उदाहरण लें तो सभी जगह अलग अलग किस्म के बाजारों में अलग अलग किस्म के करेला या हरी मिर्च की बिक्री होती है। यदि हमने गलत प्रजाति का चयन कर लिया तो आपको बाजार भाव अच्छे नहीं मिलते। आपकी सब्जी किस बाजार में जानी है इसके अनुसार या वहाँ के उपभोक्ता की क्या पसंद है इसको जरूर आपको सोचना चाहिए कि हमें, क्योंकि हमें जो पैसा मिलना है, जो हमें उसके दाम मिलने हैं वो उस उपभोक्ता से मिलने हैं, इसलिए उनकी पसंद नापसंद आवश्यक।
1: डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सब्जी की फसलें चुने खरीफ के लिए जिसमें आमदनी अधिक हो, उत्पादन अच्छा हो?
2: देखिए, इस समय सब्जी की सभी फसलें, यहाँ तक कि जो बुआई की फसलें हैं, सीधे बुआई हम करते हैं, जैसे भिंडी है, तुरई है, या लता वाली फसलें लेंगे, कद्दू वर्गीय सारी फसलें ये चली जाती हैं। फिर गोभी वर्गीय फसलें आ जाती हैं जिसमें बंद गोभी है, फूल गोभी आ जाती है, गांठ गोभी भी है, उसके साथ साथ टमाटर है, बैंगन है, ये सारी वे फसलें हैं, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये सभी इनकी बिहन तैयार करना। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका सीधे हम खेत में, कुछ पत्ते वाली सब्जी हैं अभी जिसमें थोड़ा सा समय है, वो थोड़ा देर में शुरू हो जाएंगी, जो आगे जा करके, चाहे पालक है, मेथी है, ये चीजें ऐसी हैं, धनिया को भी आप कॉमर्शियल रूप में करते हैं, दूसरी फसलों के साथ मिलाकर भी करते हैं, और दूसरे के जिन्होंने गन्ने में बुआई की है, गन्ने के साथ हम कौन सी फसल कर सकते हैं, खरीफ में प्याज की भी फसल ले सकते हैं। तो ये सारी वे फसलें हैं जिनका आप इस खरीफ के मौसम में उत्पादन ले सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी शॉर्टेज है, वो प्याज की शॉर्टेज है। प्याज की अगर हम खरीफ की बुआई करते हैं तो आपका उत्पादन उस समय आता है जब खरीफ में जो आपका प्याज के जो दाम है वो अच्छे रहते हैं और किसानों को अच्छी दाम मिलते हैं मंडी में। तो आप खरीफ के में प्याज की भी खेती कर सकते हैं, अभी तुरंत बुआई कर सकते हैं, ये 20 जून 25 जून तक जो है सीधी बीज की बुआई करने के उपरांत भी आप इससे काम कर सकते हैं। लेकिन चाहे प्याज हो, चाहे आपका बैंगन हो, शिमला मिर्च हो, इनके लिए बिहन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेहन में सावधानी रखना सबसे मुख्य कारण है कि बेहन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

0: डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन की बात हम लोग करेंगे, प्रजातियों का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
1: प्रजातियों का चुनाव, जैसे मैंने कहा, सब्जियों में सबसे ज्यादा हाइब्रिड्स हैं, और जितने भी हमारे जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ज्यादातर वे ही हाइब्रिड्स में हैं।
0: हाँ।
1: दूसरे हमारे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हैं, ओपन पॉलिनेटेड कितनी उपलब्धता नहीं रहती है, क्योंकि किसान अधिकतर जो है वो हाइब्रिड्स की तरफ चलते हैं। और मैं जैसे पहले कहा था कि हर कंपनी का अपने हाइब्रिड्स हैं, और उन हाइब्रिड्स में वो किसान जो पहले से कर रहा है वहाँ के बाजार का, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है हरी मिर्च का, कुछ क्षेत्र में लाइट मतलब जो हल्की पीले रंग की होती है, कहीं गहरे हरे रंग की होती है, कहीं थोड़ा सा हल्का रंग हरा रहता है, तो उस मिर्च को उसके आधार पर उस बाजार में चलता है। कुछ जगह जैसे आप देखेंगे, जो आप करेले की मैंने बात की, कहीं कांटेदार करेला लगता है, कहीं ऊपर से चिकने वाला रहता है,
0: कहीं
1: लंबे वाला रहता है, कहीं वो छोटे वाला है जिसको भर के वो बनाते हैं। तो ये निर्भर करता है उपभोक्ता के ऊपर, और इसी का चयन करना है हमें।
0: डॉक्टर साहब, जहाँ नर्सरी डालनी है, चाहे आपने कहा कि मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, तो इनकी नर्सरी में क्या कुछ खास करना?
1: देखिए, नर्सरी का मैंने जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्यों मैं आवश्यकता करता हूँ, यदि किसी भी किसान का नर्सरी का पौधा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, तो उसकी फसल भी आगे मजबूत होगी। इसके लिए अगर आप ट्रे आती है जिसमें 99 खाने होते हैं, यदि इसमें कोकोपीट और उसकी सहायता से करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन क्योंकि उसमें वो प्लेट जो है एक कम से कम 30-35 रुपए की आती है, 2-3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, वो करते हैं तो एक एक बीज का आपका जर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे हाइब्रिड्स हैं उनकी जो बाजार भाव है, कीमत है, वो बहुत ज्यादा है।
0: बीज की कीमत
1: बहुत ज्यादा है। जैसे शिमला मिर्च का बीज 1,00,000 रुपए किलो तक है, आपका अगर 200 ग्राम भी आता है तो भी आपका 20,000 रुपए का सीड है, उसमें से यदि 10% भी खराब हो जाता है तो आपको मान के चलिए कि 2,000 रुपए का नुकसान है। जितने भी हमारे उत्पादक हैं, इसीलिए नर्सरी उत्पादन पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्लग होल ट्रे में करेंगे, यदि प्लग होल ट्रे में नहीं करते कोई बात नहीं, आप अच्छी बेड बनाइए जो कम से कम 75 सेंटीमीटर चौड़ी हो, लंबाई उसकी कितनी भी हो। अब मौसम आता है बरसात का और गर्म, इस मौसम में हम ऊपर पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं, जो लो टनल बनाते हैं उसको ढकने के लिए इंसेक्ट नेट हाउस का इस्तेमाल जरूर करें आप
0: जी,
1: इंसेक्ट नेट का करेंगे जो
0: मच्छरदानी
1: है, कीड़ों से सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डैम्पिंग ऑफ।
0: हाँ।
1: अगर हमने अपनी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ को नियंत्रण कर लिया, और डैम्पिंग ऑफ के लिए सबसे बढ़िया है कि आप बायोपेस्टिसाइड है जो ट्राइकोडर्मा है
0: जी,
1: अगर उसको हम ट्रेंच कर देते हैं,
0: यानी
1: भूमि शोधन कर देते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बेड जो जमीन से कम 6 इंच ऊपर उठी हो, और वो बहुत ही अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, और बीज को जितना बीज का साइज है इस बात का विशेष ध्यान रखें। आम तौर से क्या होता है कि वो थोड़ा गहराई पे बीज बुआई कर देते हैं, और गहराई पे बीज बुआई करने के बाद वो उसके ऊपर मिट्टी ज्यादा आ जाती है, वो ऊपर नहीं निकल पाता और आपको नुकसान हो जाता है। जब भी करें लाइन में बुआई करें, हाथ से एक एक हाथ से आप बना करके कम से कम 3-4 सेंटीमीटर का कम से कम उसमें अंतर अगर रहता है, 2 सेंटीमीटर का, जैसे कि बीज का साइज हो उसके अनुसार अगर करते हैं, और उसके ऊपर जो आप चाहे केंचुए की खाद हो चाहे आपकी कंपोस्ट खाद है, इसको बहुत बारीक कर लेते हैं और हल्का सा जो आपने लाइन बनाई है उसके ऊपर बुरक देते हैं, और पहली सिंचाई अगर आप फुहारे से कर दें या स्प्रे मशीन से थोड़ा इतना स्प्रे कर दें कि वहां गीला हो जाए, क्योंकि अगर एकदम फ्लड कर देते हैं तो उसमें ज्यादा पानी हो जाता है। और ये मैं बताऊं, सब्जी का जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही हल्का होता है, थोड़ा सा दबाव मानते ही, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा है प्लग होल ट्रे सबसे अच्छा है। और असली चीज क्या है, सबसे बड़ी बात, इस प्लग होल ट्रे में जो भी नर्सरी तैयार करते हैं उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल और, कि आपने बताया कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, लता वाली सब्जियां हैं, तो उनको तो मचान पे करना ज्यादा अच्छा होगा।
1: देखिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, मचान एक तरह से हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देता है, और जब हम लता की फसलों को मचान करते हैं, और विशेष तौर से बरसात के मौसम में तुरई

0: लो की है, थोड़ा सा गोल में नहीं लेते, ये सीधा रहता
1: और
0: है,
1: बाजार में अच्छा
0: बाजार में
1: भाव।
0: अच्छे। दूसरी बात, जब आप हार्वेस्ट करते हैं मचान के ऊपर, तो आपको आपकी फसल दिखाई देती है कि हाँ मुझे ये सब हार्वेस्ट कर ली, तो आपकी 100% हार्वेस्ट होती है, ओवर मैच्योरिंग नहीं हो पाती। तीसरी, जितना आप स्प्रे करेंगे वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9415520162, 9415520162, 94-155-20-162।
1: डॉक्टर आर के तोमर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ सब्जियों की अगेती खेती, डॉक्टर रविंद्र कुमार तोमर से की गई भेंटवार्ता अभी आप सुन रहे थे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। बाबूलाल ने थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि रूबी, जिनकी उम्र 11 वर्ष 1 माह, कद करीब 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा शरीर है, दिनांक 7 मार्च 2026 से ये लापता हैं। घटना के समय इन्होंने जीन्स टॉप व चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8756688176। नंबर एक बार पुनः सुन लें 8756688176। राकेश कुमार ने हमें थाना हरदंत नगर गिरंट जनपद श्रावस्ती से सूचित किया है कि सुमित्रा देवी, जिनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, इकहरा शरीर, ये दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने जीन्स टॉप व गले में मटर माला पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7518808152। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7518808152। जय जय राम ने हमें थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती से सूचित किया है कि सुनीता, जिनकी उम्र 30 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा शरीर है, ये दिनांक 12 अप्रैल 2026 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने गुलाबी साड़ी, लाल ब्लाउज पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 7703053156। नंबर एक बार पुनः सुन लें 7703053156। रजिया ने हमें थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती से सूचित किया है कि रेशमा, जिनकी उम्र 17 वर्ष, कद 150 सेंटीमीटर, रंग सांवला, चेहरा गोल, सामान्य शरीर है, ये दिनांक 22 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। घटना के समय इन्होंने काले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना आप कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के

0: ओए भरमार।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूले
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अवधी लोकगीत संजोली पांडे के गाए। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं पचरा।

लोकमाद्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संजोली पांडे के गाए अवधि लोकगीत। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है और अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए

आज के शेष वकल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसमें आज का विषय होगा साइंस एंड टेक। युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:45 पर होगा कार्यक्रम नई उड़ान। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे वार्ता, कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत। वार्ताकार होंगी डॉक्टर आसिया बानो। नए बाग लगाने की तैयारी इस विषय पर डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी से सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंट करेंगे इनसे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती किसानी में, और कार्यक्रम का प्रसारण समय आपको बता दें आज शाम 6:50। खेल जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अखाड़े से ओलंपिक तक, इस विषय पर कोच ऋषि श्वेत सिंह से राघवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता। हिंदी कार्यक्रम में रात 8:00 आप सुनेंगे डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव की वार्ता, सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव। चंदन दास की गई गजलों का अनुश्रोता ले सकेंगे आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अहमद अली खान का गायन। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगी। गन्ने की फसल में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी सुनिएगा कल कृषि चर्चा कार्यक्रम में सवेरे 6:05 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सवेरे 7:00 नीना सोनकर बताएंगी पंचफोरन, स्वाद और स्वास्थ्य का संगम विषय के बारे में। विविधा कार्यक्रम होगा कल सवेरे 7:10 पर। कार्यक्रम में कल का विषय होगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। उर्दू प्रोग्राम हम लेकर हाजिर होंगे सवेरे 9:30 पर। दिन में 1:15 पर अपराजिता कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी आशुतोष कुमार सिंह से भेंटवार्ता। बचपन संवारती, जीवन निखारती, शासन की योजनाएं, भेंट करता होंगी ममता उपाध्याय। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे उन्नत बीज का चुनाव विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। युवा तरंग कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 5:10 पर, वहीं कार्यक्रम नई उड़ान होगा शाम 5:45 पर। डिजिटलीकरण और स्मार्ट पंचायतें, प्रवीण कुमार सिंह की वार्ता आप सुनेंगे कल के लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी, जिसमें आलेख एवं वाचन होगा डॉक्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी का, संपादक होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अंग्रेजी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:31 पर। हिंदी कार्यक्रम होगा कल रात 8:00, इसमें आप सुनेंगे वार्ता प्रकृति और प्रगति का संतुलन। वार्ताकार होंगे पवन तिवारी। जाफर हुसैन खा की गाई नात और कवानियों का आनंद आप ले सकेंगे कल के सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर। शास्त्रीय संगीत में कल सवेरे 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 5:10 हुए हैं। आप सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। दोस्तों, जब जून का महीना आता है, ये जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तब हम सभी के जहन में ताज़ा होती हैं बचपन की यादें। और बचपन की यादों में झांकें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी मैदान में दौड़ न लगाई हो, दोस्तों के साथ क्रिकेट न खेला हो, रस्सी कूद, गिल्ली डंडा ये सब खेल, या फिर कभी कबड्डी या खो खो जैसे मज़ेदार खेलों का आनंद न लिया हो। अब आप कहेंगे कि भाई सुरभि, ऐसे खेल तो कौन सभी खेले हैं। जी दोस्तों, हम सभी ने ये सभी खेल खेले हैं, क्योंकि खेल हम सभी की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, जो ना केवल हमें खुशी देता है बल्कि जीवन जीने की

या खो खो जैसे मज़ेदार खेलों का आनंद ना लिया हो। अब आप कहेंगे कि भाई सुरभि, ऐसे खेल तो सभी खेले हैं। जी दोस्तों, हम सभी ने ये सभी खेल खेले हैं, क्योंकि खेल हम सभी की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, जो ना केवल हमें खुशी देता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अब आप कहेंगे, सुरभि आज खेल के विषय में अचानक से कैसे बात करने लगी? तो दोस्तों, आज है 11 जून और हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, इसी अवसर पर आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि खेलों का जीवन में महत्व क्या है। साथियों, खेल केवल एक गतिविधि नहीं है बल्कि एक स्वस्थ जीवन की नींव है, और स्वस्थ जीवन सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि खेल हमें जीतने की खुशी और हार से सीखने की शक्ति देते हैं। खेल का मैदान जीवन का छोटा रूप है दोस्तों। यहाँ हमें लक्ष्य बनाने, मेहनत करने, टीम के साथ काम करने और चुनौतियों का सामना करने का मौका मिलता है, और यही सीख हम अपने जीवन में आजमाते हैं और सफलता पाते हैं। आज जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और अधिकांश समय मोबाइल, लैपटॉप और सोशल मीडिया पर बीतने लगा है, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि खेल ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम ना सिर्फ अपने शरीर बल्कि अपने मस्तिष्क को भी सक्रिय रख सकते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस विषय पर और भी बात करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, एक वक्त था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन साथियों, वक्त अब बदल चुका है। हकीकत तो ये है दोस्तों कि पढ़ाई जहाँ तक अपने ज्ञान के विकास के लिए ज़रूरी है, उसी तरह शरीर के विकास के लिए ज़रूरी है खेलकूद। युवा साथियों, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर सक्रिय और ऊर्जावान रहता है, हृदय मजबूत होता है, तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता और निर्णय क्षमता बेहतर होती है। जानते हैं साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि या फिर खेल में भाग लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यानी कि खेल केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ऐसे में युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने में खेलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खेल युवाओं को अनुशासन, समय प्रबंधन और नेतृत्व जैसे गुण सिखाते हैं। खेलों के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे निखारते हैं। आज भारत के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करके देश का गौरव बढ़ाया है। और इन सफलताओं के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण छिपा होता है। यही खेल भावना हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हमें ये संदेश देता है कि खेलों को केवल प्रतियोगिता के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें जीवन का अभिन्न हिस्सा मानें। यदि आप खिलाड़ी नहीं भी हैं, तब भी किसी न किसी खेल या शारीरिक गतिविधि से जुड़े रहिए। सुबह की दौड़, साइकिल चलाना, योग, बैडमिंटन, क्रिकेट या कोई भी पसंदीदा खेल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और एक बात और साथियों, कि खेल कोई बच्चों का खेलने काम नहीं है। खेल आप भी खेल सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज रह सकते हैं। याद रखिए साथियों, जो युवा खेल के मैदान से जुड़ता है, वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और साहस के साथ करता है। इसी प्रेरक संदेश के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: दोस्तों, अक्सर जब करियर की बात होती है तो हमारे मन में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य कोई पारंपरिक पेशों की छवि उभरती है। लेकिन आज के समय में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां न केवल सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर भी मिलता है। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है समाज कार्य, जिसे अंग्रेजी में हम सोशल वर्क कहते हैं। समाज कार्य साथियों केवल सेवा या परोपकार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पेशेवर क्षेत्र है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और गैर सरकारी संगठन सहित अनेक क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। आज के बदलते सामाजिक परिदृश्य में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं की मांग लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में युवाओं के लिए ये जानना आवश्यक होगा कि इसे हम समाज कार्य के क्षेत्र में करियर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं और रोजगार के क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी जी। साथियों, उनका स्वागत करते हैं और आइए सुनते हैं ये वार्ता जो समाज कार्य में रोजगार के अवसर के बारे में बताती है।
1: समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है, जिसमें अपनी सहायता स्वयं कर सके। समाज सेवा अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है, क्योंकि समाज सेवा उन सभी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण कर उस परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण, परिवार, समुदाय तथा समाज को प्रभावित करते हैं। भारत में समाज सेवा का कार्य प्राचीन काल में राजाओं द्वारा दान देने, यज्ञ करने एवं धर्मशालाओं इत्यादि के निर्माण कार्य द्वारा होता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले सुधार कार्यक्रमों ने भारतीय जनमानस को भी प्रभावित किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास द्वारा विधवा विवाह आरंभ हुआ और सती प्रथा पर रोक लगी। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में समाज सेवा के माध्यम से समाज सुधारों को नई दिशा दी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक संस्था की स्थापना करके स्नातकों को समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इन प्रशिक्षणार्थियों को वेतन भी दिया जाता था। इस तरह आधुनिक भारत में समाज कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्य की नींव पड़ी, जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की पूर्ण सहायता हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 90 के दशक से राज्य द्वारा उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के फलस्वरूप दिनों दिन सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर सिमटते जा रहे हैं तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कई गुना बढ़े हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में न केवल गैर सरकारी संगठन सक्रिय हुए हैं, अपितु बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं कारपोरेट हाउस भी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यदि युवा वर्ग परंपरागत मार्ग से हटकर कुछ करना चाहता है तो समाज सेवा के माध्यम से वह अपना कैरियर बना सकता है। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को ऐसे समाज सेवकों की आवश्यकता है जो जागरूक हों और उनमें निस्वार्थ सेवा करने की भावना हो। वर्तमान समय में समाज कार्य की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया है। अब यह कार्य केवल दया या परोपकार की भावना से ही नहीं जुड़ा है, अपितु रोजगार के क्षेत्र में भी युवा वर्ग को आकर्षित कर रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवा वर्ग के लिए यह क्षेत्र सुनहरे अवसर उपलब्ध करा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी विभागों, निजी व सरकारी अस्पतालों में रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा हो रही हैं। चिकित्सीय समाज शास्त्र, जिसे मेडिकल सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करके निजी अथवा सार्वजनिक अस्पतालों में सेवा देकर अच्छी कमाई की जा सकती है। औद्योगिक संगठनों में भी कर्मचारियों के कल्याण एवं संरक्षण

0: के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है। समाज सेवा के क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए देश के कई संस्थानों में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक मानसिकता, व्यावसायिक कौशल, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों के प्रबंधन के लिए तैयार करना है। इससे देश में नए सामाजिक आर्थिक परिवेश के लिए व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने में सहायता मिलती है। अपराध शास्त्र एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त युवा कारागार, सुधार गृह, पर्यवेक्षक गृह, बाल गृह तथा रिमांड होम्स जैसे संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इन संस्थानों में सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य कार्य कैदियों के लिए रचनात्मक एवं सृजनात्मक वातावरण का निर्माण करना होता है। परिवार, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान कर हमारे युवा समाज शास्त्र या समाज कार्य जैसे विषयों में उपाधि प्राप्त करके यूनिसेफ, यूनेस्को, दिव्यांग कल्याण केंद्र, अनाथ आश्रम, महिला उद्धार गृह जैसे संस्थानों में रोजगार पा सकते हैं। निजी एवं सरकारी कंपनियों में कार्मिक अधिकारी, समुदाय संगठनकर्ता, समन्वयक आदि पदों पर भी रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। आज विश्व में लाखों की संख्या में स्वयंसेवी संस्थाएं मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय हैं। इन संस्थाओं को बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनमें न केवल सेवा का जज्बा हो अपितु संबंधित क्षेत्र की जानकारी भी हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं जैसे यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, रेड क्रॉस, लायंस क्लब तो प्रत्येक वर्ष भारतीय विशेषज्ञों की तलाश में बड़े शहरों में सेमिनार का आयोजन करते हैं। कई संस्थाओं में निदेशक, उपनिदेशक, कार्यक्रम अधिकारी जैसे पदों पर अच्छे वेतनमान के साथ नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्र हैं जिसमें युवाओं को कोऑर्डिनेटर, सर्वे ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जैसे पदों पर काम करने का अवसर मिलता है। विकास की तीव्र गति के साथ व्यावसायिक समाज सेवा एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। समाज सेवा की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तियों, परिवारों, दंपतियों, समूहों अथवा समुदायों के साथ काम करना पड़ता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में उचित बदलाव लाकर उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने तथा ऊपर उठने में सहायता करना है।
1: दोस्तों, तो आपने जाना कि सोशल वर्क में रोजगार के अवसर क्या क्या हैं। तो साथियों, सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, आइए सुनते हैं एक गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवा पसंद युवा तरंग में। साथियों, हम सभी को दिन में एक रूप समान 24 घंटे मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हाथ मलते रह जाते हैं और समय की कमी की शिकायत करते हैं। लेकिन साथियों, इसका कारण समय की कमी नहीं है, बल्कि इसका कारण है समय प्रबंधन की कमी। जी दोस्तों, समय दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन, पद या अन्य चीज़ों को खो जाने पर भी दोबारा मिल सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इसीलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सफलता के रूप में पुरस्कृत करता है। साथियों, सफलता की राह सुगम करने के लिए जरूरी है समय प्रबंधन, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा, परिश्रम और अवसर जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्व

महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन। दोस्तों, समय प्रबंधन की शुरुआत होती है अपनी प्राथमिकताएं तय करने से। दिन भर के कार्यों की आप सूची बनाइए, जिसे हम टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं, और ये तय कीजिए दोस्तों कि कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो काम सबसे पहले जरूरी हो उसे सबसे पहले कीजिए, है ना साथियों, क्योंकि जब सबसे ज़रूरी काम को पहले पूरा करने की आदत सफलता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी तरह साथियों, आज के समय में मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और अनावश्यक इंटरनेट उपयोग हमारे बहुमूल्य समय का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने समय का लेखा जोखा रखें। जैसे हम अपने बटुए के पैसों का हिसाब रखते हैं ना, उसी तरह हमें अपने कीमती समय का भी हिसाब रखना चाहिए और उन एक्टिविटीज़ को सीमित कर देना चाहिए जो हमारे लक्ष्य में योगदान नहीं दे रही हैं, या जो भी एक्टिविटी प्रोडक्टिव नहीं है, वो एक्टिविटीज़ के समय को हमें सीमित कर देना चाहिए। इसी तरह साथियों, समय प्रबंधन का एक जो सबसे सरल सूत्र है वो है योजना बनाइए और अपनी प्राथमिकता तय कीजिए और नियमितता बनाए रखिए। सफलता के लिए नियमितता बहुत ज़रूरी है। एक कहते नहीं है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो साथियों, अभ्यास निरंतर अगर है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करेंगे, एक क्लियर प्लानिंग के साथ करेंगे, तो हमारे काम अधिक व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे। याद रखिए दोस्तों, सफलता अचानक नहीं मिलती, ये छोटे छोटे प्रयासों और समय के निरंतर सदुपयोग का परिणाम होती है। और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। साथियों, वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक गीत का, आइए सुनते हैं ये गीत।

तो साथियों, हम बात कर रहे थे सफलता के लिए जरूरी है समय प्रबंधन। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई, विश्राम और मनोरंजन के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक रियलिस्टिक समय सारणी बनानी होगी, टाइम टेबल, उसका नियमित पालन करना होगा। याद रखिए साथियों, आपकी छोटी छोटी दैनिक उपलब्धियां ही बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, यानी कि रास्ता आपका छोटे छोटे कदमों से ही तय होगा। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि जो टाल मटोल की आदत से बचें हम। अक्सर हम कठिन कार्यों को बाद के लिए छोड़ देते हैं और इससे हमारा काम का प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। इसीलिए जो कार्य दोस्तों आज किया जा सकता है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। तो साथियों, सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि उसका निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। तो आज ही ये संकल्प कीजिए कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और अनुशासित जीवन शैली भी बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है कार्यक्रम में आप सभी से विदा लेने का। अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

ये सिर्फ एक शेर नहीं है दोस्तों, बल्कि उस जज्बे की पहचान है जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। और यही जज्बा आज हमारे खिलाड़ियों की आंखों में भी दिखाई देता है जब वे तिरंगे के सम्मान के लिए मैदान में उतरते हैं। आज का दिन दोस्तों प्रेरणा, संघर्ष और जुनून का दिन है। एक ओर हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और दूसरी ओर नमन कर रहे हैं अमर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को। आज उनकी ये जयंती है। दोस्तों पहली नज़र में खेल और क्रांति दो अलग अलग विषय लग सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो दोनों की आत्मा एक ही है, हार ना मानने का जज्बा। खेल हमें सिखाते हैं अनुशासन, समर्पण और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वहीं बिस्मिल जी का जीवन हमें बताता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। काकोरी आंदोलन के इस महानायक ने अपनी कलम से युवाओं में देशभक्ति जगाई, अपने साहस से इतिहास रच दिया। सोचिए एक खिलाड़ी वर्षों तक अभ्यास करता है, पसीना बहाता है, हारता है, फिर उठता है और आखिरकार देश के लिए पदक जीतता है। ठीक उसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनगिनत संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया। आज जब हमारा जो देश है खेलों में आगे बढ़ रहा है, खेलों के मैदान में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो हर पदक, हर जीत और हर तिरंगा हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम अपने जीवन में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लें और साथ ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में होती है जान, और जुनून हो तो फतेह होता है हर मैदान।

हौसलों की उड़ान हो तो आसमान छोटा पड़ जाता है, इरादे अगर देश के लिए हो तो इंसान इतिहास बन जाता है। नमस्ते आरती, स्वागत करती है आपका आपके कार्यक्रम नई उड़ान में। दोस्तों, क्या खूब कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है।

0: समय बदलता है, सोच बदलती है, सोच बदलती है तो काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कभी दफ्तर का मतलब सुबह 10 बजे हाजिरी और शाम 5 बजे छुट्टी हुआ करता था, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में दफ्तर हमारी जेब में है, मोबाइल पर है और काम की दुनिया लैपटॉप के स्क्रीन तक सिमट गई है। वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स, डिजिटल क्रिएटर्स और एआई आधारित प्रणालियाँ, इन सब ने काम करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो क्या ये बदलाव अवसरों के नए दरवाजे खोल रहा है या फिर काम और निजी जीवन के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज के विशेष खास सेगमेंट में बदलती कार्य संस्कृति और डिजिटल पीढ़ी पर हमारी साथी एंकर अमिता चित्रांशी ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बात की। तो आइए सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बदलती कार्य संस्कृति और डिजिटल पीढ़ी क्या कर रही है, डिजिटल दौर की नई कार्यशैली को समझने की कोशिश करते हैं।
1: समय के संग कदम बढ़ाना, यही आज की पहचान है। तकनीक के इस नए दौर में बदल रहा हर इंसान है। दफ्तर अब स्क्रीन पे सिमटे, सीखना भी आसान है। डिजिटल पीढ़ी के सपनों को मिला नया आसमान है।

जी हाँ, आज हम युगांतरण की श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे बदलती कार्य संस्कृति और डिजिटल पीढ़ी यानी डिजिटल दौर की नई कार्य शैली पर। तकनीक ने न केवल हमारे काम करने के तरीकों को बदला है बल्कि कार्यस्थल, समय और अवसरों की परिभाषा भी बदल दी है। अब घर बैठे काम करना, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल मीटिंग, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जैसे कार्यशैली युवाओं के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इन्हीं बदलाव को समझने के लिए आज हम लोगों की राय जानेंगे, विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डिजिटल पीढ़ी किस तरह की नई कार्य संस्कृति को अपना रही है।

0: डिजिटल दौर की इस नई कार्यशैली को सबसे तेजी से अपनाया है युवा पीढ़ी ने। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल कौशल और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने उनके सीखने और काम करने के तरीकों को बदल दिया है। आइए जानते हैं एक छात्र से कि वो इस बदलाव को किस तरह देखते हैं।
1: जी मैम, मेरा मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। यह बदलाव काफी सकारात्मक है। पहले सीखने के लिए हमें क्लासरूम या किताबों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इंटरनेट की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने से नई चीजें सीख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा ने सीखना अधिक आसान, सस्ता और सभी के लिए सुलभ बना दिया। आज छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस और डिजिटल नोट्स की वजह से कठिन विषय को समझना भी बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया है। अब लोग नई टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग और प्रोफेशनल स्किल्स घर बैठे सीख सकते हैं। मेरे अनुसार ऑनलाइन शिक्षा ने न केवल सीखने की गति बढ़ाई है, बल्कि लोगों को अधिक आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी बनाया है।

0: छात्रों की बातों से साफ है कि डिजिटल तकनीक उनकी पढ़ाई और सोच का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इस बदलाव को आकार देने में शिक्षक की बड़ी भूमिका है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे ही शिक्षक ब्रिजेश पांडे जी से, जो ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और इस नई कार्यशैली को वो करीब से देख रहे हैं।
1: सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षण की कार्य संस्कृति में वो किस तरह के बदलाव को देखते हैं।
1: देखिए, पहले क्या होता था ना कि जो शिक्षा को देने का तरीका था वो पूरा क्लासरूम ड्रिवन था। अब हम देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन टूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगे हैं। इनफैक्ट पहले होता क्या था कि आपको अगर कोई ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो आपको जाकर के यूनिवर्सिटी या किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से ही लेना पड़ता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस ऑनलाइन ग्रेजुएशन डिग्री देने लगे हैं। तो जो चीज़ पहले क्लासरूम के चार दीवारी के भीतर होती थी, वह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से होने लगी हैं। तो हमने क्या देखा है कि पहले एग्जाम्स ऑनलाइन हुए और धीरे धीरे करके फिर टीचिंग का माध्यम वो ऑनलाइन हुआ। बहुत सारे नए तरीके आ गए जिससे आप बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे आपको देख सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड अपना अपने इनसे बच्चों से शेयर कर सकते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उससे एकदम रियल टाइम फीलिंग जो हो सकती है इतनी हो सकती है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि हर 4-5-6 महीने में एक नया परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आप देखेंगे तो मतलब AI टूल्स खुद शिक्षक बन जाएंगे। तो ये बहुत लाइकली है और मुझे लग रहा है 1-1.5 साल में ये चालू हो जाएगा।
0: तो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े युवाओं के भविष्य की कार्यशैली के लिए आप उन्हें कैसे तैयार कर रहे हैं?
1: टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है ना कि बच्चे ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे घर में अगर आप देखेंगे तो जैसे जब कंप्यूटर आया था बहुत लोग कंप्यूटर यूज करना नहीं जानते थे। कंप्यूटर एक लग्जरी थी, हर किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होता था। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो स्मार्टफोन के आने से क्या हुआ ना कि चीज हमारे हाथ में आ गई। आप देखेंगे कि स्मार्टफोन का यूज हर कोई कर लेता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो अडेप्टेबिलिटी है टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है कि बच्चों को ज्यादा अडेप्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पोर्शन रखना पड़ेगा बच्चों को। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसका अभाव था, जिसके पास थी वो स्मार्ट कहलाते थे। तो मैं जो एक परिवर्तन देख रहा हूँ आगे आने वाले सालों में कि टेक्नोलॉजी बहुत यूज करना शायद घातक होगा, क्योंकि आज की खुद की जो सोचने की क्षमता है, जो लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, सब चली जाएगी। टेक्नोलॉजी को आंख बंद करके मत यूज करो। इसलिए क्या होगा कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग कम करेंगे और अपने बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेंगे वो शायद बाकियों से बेहतर होंगे। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल्स आती है, मतलब हम लोग तैयारी कराते हैं कैप इंटरव्यू और राइटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दे। जो बच्चे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना वो ठीक से बोल नहीं पाते, मतलब भाषा में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं और बहुत सारी चीजों में उनकी कमियां होती हैं। तो टीचर्स होते हैं बच्चों से।

0: ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आंख बंद करके AI टूल्स को एकदम रैंडमली और कैसे भी यूज ना करें। एक उसके अंदर थोड़ा सा चॉइस रखें और किस काम के लिए यूज कर रहे हैं उसको मतलब उस पर ध्यान दें ताकि उनकी अपनी सोचने की क्षमता और लिखने की बोलने की क्षमता वो बनी रहे। इससे क्या होगा ना कि जॉब मार्केट में या फिर आम चीजों में भी उनका अपना जो एक ओरिजिनलिटी है वो बना रहेगा।
1: जिस तरह शिक्षकों और छात्रों ने डिजिटल माध्यम को अपनाया है उसी तरह कार्यस्थल पर भी तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ी है। आज कई कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से काम कर रहे हैं। इन बदलाव को करीब से महसूस करने वाली एक निजी कंपनी की महिला कर्मचारी से जानते हैं कि डिजिटल दौर ने उनकी कार्यशैली को किस तरह बदला है।
2: हेलो अमिता, मैं अपर्णा सक्सेना बोल रही हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। डिजिटली काम करने से मुझे सबसे पहले लगता है कि जो ऑफिस आने जाने का समय था और संसाधन लगते थे उनकी बचत होती है क्योंकि हम घर बैठ के ही काम कर पाते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि जब हम घर से काम करते हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस और बेहतर हुआ है और जो स्ट्रेस हमें लंबे ट्रैफिक में जाने से लगता था वो भी कम हुआ है। और मैं क्योंकि एक 1.5 साल की बच्चे की मदर हूँ तो मुझे लगता है कि घर पे रहने से मेरा चाइल्ड है उसकी मैं केयर बहुत अच्छे से कर पाती हूँ।
1: अच्छा, पारंपरिक नौकरी की कार्यशैली और वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन काम में आप किसे और क्यों बेहतर मानती हैं?
2: देखिए, जो पारंपरिक थी कि 10 से 5, तो 10 से 5 हम वर्क फ्रॉम होम में भी 10 से 5 ही नौकरी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम बदल गया है, पर घर में रह करके जैसे 10 से 5 ऑफिस में ये होता है कि 10 बजे पहुंच के 5 बजे लौटना ही है, बट अगर कुछ काम ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गई है काम में तो हमें कभी कभी एक्सटेंड करना पड़ता है ऑफिस में, तो वो चीज़ हम घर पे रहकर बिना ये सोचे कि अरे घर टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम होंगे, तो वो घर में रह करके अगर कोई इमरजेंसी आती है तो टाइम एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। अगर वो 10 से 6 भी हो जाता है तो हम आराम से कर पाते हैं कि हम दूसरे दिन 1 घंटा लेट काम कर लेंगे, तो वो एक मेंटल सुकून है कि हमने अपने काम में भी अच्छे से ध्यान दिया, उस जब इमरजेंसी थी तो हमने एक्सटेंड भी किया विदाउट एनी मतलब प्रेशर।
1: जब कामकाज डिजिटल हो रहा है तो भुगतान के तरीके भी बदलना स्वाभाविक है। आज नकदी की जगह ऑनलाइन पेमेंट ने काफी हद तक ले ली है। इस बदलाव ने लोगों के समय की बचत की और कारोबार को भी नई रफ्तार दी है। आइए सुनते हैं एक ऑनलाइन पेमेंट उपयोगकर्ता की राय।
3: मेरा नाम प्रशांत है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज के समय में जो डिजिटल पेमेंट है उसका बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है और डिजिटलाइजेशन से एक लोगों को बढ़ावा मिला है क्योंकि लोगों के पास जब डिजिटल करेंसी नहीं थी तब लोगों को कैश के भरोसे रहना पड़ता था। कभी कभी बैंक बंद है, ATM में कैश नहीं है, लोग परचेजिंग नहीं कर पाते थे, या कभी आप कहीं घूमने गए और पैसा कैश कम पड़ गया आपके पास तो लोग परचेजिंग नहीं कर पाते थे। आज डिजिटलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें आसान हो गई। हम भी कभी जाते हैं घर से अभी कैरी करके लेके जाए या ना जाए मोबाइल जरूर लेके जाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से हम कहीं भी हमारा कुछ चीज़ का मन कर गया, कुछ चीज़ जरूरत लगी, हम कभी भी पेमेंट बड़े इजीली कर सकते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। अगर पैसा घर पर रह गया तो लोग नहीं आ पाते थे, कहीं फंस भी जाते थे तो वो नहीं आ पाते थे। ऑनलाइन पेमेंट होने से आज चीज़ें ऑनलाइन बुक हो जाती हैं, लोगों का टाइम बचता है, लोगों उसकी कॉस्टिंग कम आती है ऑनलाइन आने से। पहले लोगों को परचेज करने के लिए या किसी चीज़ का पेमेंट करने के लिए वहीं जाना पड़ता था जमा करने के लिए कैश में या ड्राफ्ट के तौर पर, ड्राफ्ट में भी बैंक चार्जेस वगैरह जाते हैं, तो डिजिटलाइजेशन से लोग घर बैठे तुरंत कर देते हैं, इससे उनका टाइम भी कम लगता है, उनका जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम आती है।
1: डिजिटल दौर ने कार्यशैली को नई दिशा दी है लेकिन कार्य के मूल्य अनुशासन जिम्मेदारी और समर्पण आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इन बदलाव को सबसे करीब से देखा है उन लोगों ने जिन्होंने पारंपरिक कार्यालय व्यवस्था से लेकर डिजिटल कार्य संस्कृति तक का सफर तय किया। आइए अब सुनते हैं एक अनुभवी वरिष्ठ कर्मचारी की राय जो हमें बताएंगे कि समय के साथ कार्य संस्कृति में क्या क्या बदलाव आए हैं और नई पीढ़ी इस बदलाव को किस तरह अपना रही है।
4: महेंद्र सिंह भदौरिया उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के ही सिंचाई विभाग की विश्व बैंक पोषित परियोजना UPWSRP में सलाहकार के रूप में अनुभव प्राप्त किया है। आज हमें राष्ट्रकवि मैत्री संजी गुप्त की उपपंक्ति याद आती है, परिवर्तन ही यदि उन्नति है।

0: तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु हमें तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। तो इसका आशय यही है कि बदलाव ही संसार का नियम है, और आज ये नियम हमारी उंगलियों पर नाच रहा है एक क्लिक और दुनिया मुट्ठी में। यही डिजिटल क्रांति है। आज दुनिया में डिजिटल क्रांति की तेज गति से बहती हवा ने श्रम और समय की प्रशंसनीय बचत कर समाज के सामने एक नई दिशा और नवीन दृष्टि दी है। इस नवीन कार्य संस्कृति से जहां वाणिज्य व्यवसाय उद्योग जगत में एक आशातीत सफलता प्राप्त की है, वहीं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती और किसानी भी इस उपलब्धि से अछूती नहीं रही। तभी तो आज खेतों में और खलिहानों में हल बैलों की जगह ट्रैक्टर और कंबाइंड थ्रेसर लोकप्रिय हो रहे हैं। फिर भी याद रखें, टेक्नोलॉजी से काम लो पर टेक्नोलॉजी मत बन जाओ। सामान्य जीवन में भी आज कार्यालय में काम करने के लिए कलम के स्थान पर कंप्यूटर और शिक्षा जगत में ब्लैक बोर्ड डस्टर के स्थान पर डिजिटल डिवाइसों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। वर्चुअल बैठकों और ऑनलाइन कक्षाओं के प्रभावी प्रचलन ने सभी को चमत्कृत कर दिया है। तभी तो नई पीढ़ी डिजिटल संचार क्रांति का पूरक और पर्याय बन गई है। फिर भी ध्यान रखें, मशीन से काम करवाइए लेकिन खुद मशीन मत बन जाइए। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमें मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारी नई पीढ़ी जो अति ऊर्जावान, बुद्धिवान, सृजनशील और श्रमशील है, उसे अपनी इस तकनीकी कार्य संस्कृति में सामाजिक संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों की भी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि मशीन और मनुष्य के बीच एक संतुलित सामंजस्य स्थापित हो सके, जिससे हमारी मूलभूत सामाजिक संरचना को कोई आघात न पहुंचे। याद रखिए, होठ से दुनिया चलाइए पर मन से रिश्ते भी निभाइए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि याद रखिए, स्क्रीन की चमक में दिल की रोशनी कम न होने पाए, प्रगति की दौड़ में इंसानियत पीछे न छूट जाए, क्योंकि आखिर में मशीनें डेटा संभाल सकती हैं पर संवेदना सिर्फ मनुष्य के पास है। मन से संवेदनशील बने रहिए और मशीन से काम लीजिए। यही नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है।
1: बदलती कार्य संस्कृति हमें ये सिखाती है कि समय के साथ सीखना और स्वयं को बदलना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है। तकनीक केवल एक साधन है, असली शक्ति हमारी रचनात्मकता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों में है। आने वाला समय और भी अधिक डिजिटल होगा, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हर स्क्रीन के पीछे एक इंसान है, जिसकी भावनाएं, सपने और संघर्ष हैं। यदि तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन बना रहे, तो ये नई कार्यशैली केवल सुविधाजनक ही नहीं बल्कि अधिक मानवीय और समृद्ध बन सकती है। अपनी इन्हीं बातों के साथ आज की युगांतरण की श्रृंखला बदलती कार्य संस्कृति और डिजिटल पीढ़ी यानी डिजिटल दौर की नई कार्यशैली, इस विषय को यहीं पर विराम देती हूं। मैं अमिता, नमस्कार।
2: तो हमारी सहयोगी अमिता के साथ हमने विभिन्न लोगों के विचारों को समझा बदलती कार्यशैली और डिजिटल युग की नई कार्यशैली के संबंध में। तो कहीं ना कहीं तकनीकी ने काम तो आसान किया है, तेज किया है, सुलभ बनाया है, पर वहीं समय प्रबंधन, मानसिक संतुलन, मानवीय जुड़ाव जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। ऐसे में ज़रूरत है तकनीकी को अपनाने की, लेकिन उसके साथ जीवन में संतुलन बनाए रखने की, क्योंकि आखिरकार मशीनें काम को आसान बना सकती हैं, लेकिन सोच, संवेदनाएं और रचनात्मकता आज भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत हमारे लिए नई राहें खोलती है। बस जरूरत है चलते रहने की।

और इस दुनिया में नित नई चीज़ें हो रही हैं, और बात अगर हम विकास की, रोज़गार की और बदलते उत्तर प्रदेश की करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। डिजिटल क्रांति की एक नई शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा यानी गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का शुभारम्भ किया है। इस परियोजना के तहत पहले चरण में लगभग 8,000 न्याय पंचायतों और बाद में 57,000 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। लक्ष्य है करीब 20 लाख घरों को तेज इंटरनेट सुविधाओं से जोड़ना। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 से अधिक डिजिटल उद्यमी तैयार किए जाएंगे जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। साथ ही लगभग 1,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। अच्छा, डिजिटल कनेक्टिविटी से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो प्रदेश की नई उड़ान में एक और अध्याय जुड़ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो ट्रायल्स थे टर्न अराउंड के, वो सफलतापूर्वक हो गए हैं और 15 जून को पहली व्यावसायिक उड़ान होने जा रही है जो लखनऊ से नोएडा के बीच में होगी। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के कार्यक्रम से फिलहाल के लिए आपसे लूँ अनुमति, तो दीजिए अपने साथी आरती को आज ही पर इजाज़त। नमस्ते, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान मीडियम वेव के मीटर पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आप सुनिए खोए हुए व्यक्ति से संबंधित कुछ सूचनाएं। थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली से रामेश्वर हमें सूचित करते हैं कि सावित्री देवी दिनांक 7 मई 2026 से कहीं लापता हैं। सावित्री देवी की उम्र है लगभग 41 वर्ष, कद 5 फीट, रंगोरा और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना होने या मिलने पर कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता है रामेश्वर पुत्र श्यामलाल गुप्ता, निवासी ग्राम गौघाट चौराहा मजरे मजगवां, थाना शिवगढ़ जिला रायबरेली। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 760।

07 454552 मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने 7607-4545-52। थाना गंगा घाट जिला उन्नाव से संगीत कुमार हमें सूचित करते हैं कि निशा दिनांक 20 फरवरी 2026 से कहीं लापता है। निशा की उम्र है 26 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। इनके बारे में कोई भी सूचना होने या मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। पता है संगीत कुमार निवासी ग्राम त्रिभुवन खेड़ा थाना गंगाघाट जिला उन्नाव। इनके बारे में कोई भी सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8429823067। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने 8429823067। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं अब समाप्त हुईं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भारतेन प्रतिरक्षण व्याप्तिं सुदृढं कर्तुं सार्वजनिक स्वास्थ्यस्य रक्षणार्थं च प्रयत्नान् समर्थयितुं मालदीव देशं प्रति 20,000 यावत् खसरा सूच्यौषधीनां प्रायः 3 टन चिकित्सा सामग्रीं च प्रेषितम्। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् एतत् सहयोगं द्वीपराष्ट्रे वर्धमानानां खसरा प्रकरणानां निवारणे साहाय्यं करिष्यति तथा च मालदीव्स सर्वकारस्य प्रतिक्रिया उपायान् सुदृढं करिष्यति इति। तस्य नेबरहुड फर्स्ट विजन महासागर इत्येतयोः अन्तर्गतं भारतं मालदीव्स देशेन सह संयुक्त प्राथमिकतासु निकटतया कार्यं कर्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अद्य राजस्थाने जैसलमेर जनपदे रामगढ़े 20 किलोवाट क्षमतायुतस्य FM प्रेषकस्य आभासीय उद्घाटनम् अकरोत्। जयपुरस्थे आकाशवाणी परिसरे समायोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटन कार्यमिदं सम्पन्नम्। अनेन सह राज्ये FM प्रेषकाणां संख्या विवर्ध्य 49 जाता। नूतनः प्रेषकः सीमावर्ती क्षेत्रेषु 80 किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति। एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्री वैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छ पर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम् अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितं यत् 20%-30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीडा गृहे आरभ्यते इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ देवेश भैया,
1: देखो घाम तो बड़े तगड़े सोईला, गर्मी देखो पूरे जतन से फिर अपन प्रभाव दिखाए रही
0: है। तो हो यह समय तो ये है कि संझा वंझा बेरिया दुचार जैसे अगर कपड़ा वपड़ा कहूँ सूख बहरे फैलाए हो तो उ तन के झीसा आवा बरस गए तो वही माँ का हो था कि वह गील हो जाए तो अभिन सारे देखो तो फिर मौसम गर्म बना है। और यह है समय भैया सबसे ज्यादा बचे हम पंचन का जरूरत है, काहे बदे न बची हो तो बीमार पड़ जाइयो।
1: बिल्कुल भैया,
0: काहे कहीं जैसे दिन माँ है बहुत गर्म है और भाई काम बूथ कीन जात है तो दही बहुत गर्माई जात है और बहरे से हम बाजार हाट से जब आई थे तब जौन मुड़वा है वो एकदम टपके लागत है।
1: बिल्कुल भैया, जब आप घरे से बाहर निकलत हो घामे में काम काज करत हो या कोनो काम से घरे से बाहर गए हो

0: तो भाई घामे से लौट के आयो तो एक तो थके रहा थो, दूसर घामो लाग रहा थे। तो हिमा होत है का जब घरे लौट के आओ तो यू होते गटई सुखाई रही है, पानी पी लियो। हाँ, तो यहू काम बहुत जने करते हैं कि तुरंत लेके पानी, चाहे भले ठंडा ना पिए, वैसे हमार का है कि यूं मतलब है कि थोड़ देर सुस्ताई लियो।
1: हाँ।
0: तब वही के बाद जोन पानी वानी पिए खोए पियो, जहाँ चूक होत है यही माँ मन ठंड गर्म से बीमार पड़ जाते। और जब भैया बीमारी बाढ़त है तो ये समझ लियो कि खर्चो बाढ़त है
1: भैया, सीधे तौर पर जुड़ा है।
0: हाँ, और ये सब बात देखो कहूँ ना कहूँ अपनी दिनचर्या जीवन शैली जौन है खान पान है वही पे निर्भर करत है, लेकिन आदत अपन है जौन वहू के कारण तमाम चीज़ें ऐसा हो जाते हैं कि स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। और जब स्वास्थ्य खराब होते तो भैया दवाई के खर्चा बढ़ाते हैं, और जब दवाई के खर्चा बढ़ाते हैं तो भैया जेब पे इतना लागत है कि कहूँ अतिरिक्त भार पड़ गया है, जैसे कोई जेब काटे डाल रहा है इस जान पर।
1: बिल्कुल भैया, और ये बात तो जौने समय इलाज करा वह समय तनिक कमो पड़त है, मूल जब धीरे धीरे ठीक हो जात आदमी और तब जब जोड़त घटावत है तब वो ज्यादा पता लागत है।
0: बिल्कुल,
1: और यही वजह हम पंच ये सोचित है कि जितना हो सके हम पंच निरोग रही, कौनो मेर के दिक्कत ना हुए।
0: भैया देखो रोग व्याधि हो गई वो तो उतना नहीं खलत है भाई, चलो ठीक हुई गए, लेकिन जब ये आप कहो कि बाद में जोड़ घटाव होते तो यूं लागत है कि अरे हम इतने के दवाई खा डारन, अरे हम इतनी महंग दवाई खा डारन। भैया कभों कभों तो हम बताई ऐस होत है बहुत जनन का तो ये स्थिति हो जाता है कि उनके बीमारी जौन है वो कभों कभों ऐसन गंभीर हो जाते है, या ऐसी कौनो बीमारी रहा था जैके दवा आपके चलाइन कहे लंबी चले कहे, लेकिन वो आपन जौन इलाज रहा थे वो अधूरा छोड़ दिए थे, काहे से कि दवाई बड़ी महंग पड़ रही है। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या हुई जाती।
1: बिल्कुल, यकरे बदे देखो बहुत पंच ई काम करत है जौन बात तुम कहो ठीक कि दवाई बिचवम छोड़ देते हैं, तो ऐसे का जौन पहले दवाई कहे रहा था वह का कोनो फायदा नहीं रहा था और बीमारी जौन है वो बढ़ जात है।
0: तो भैया देखो दवा सही से चलत रहा है, आपके स्वास्थ्य ठीक रहा है, यही के लिए हम सब अपन प्रयास तो करबे करी थे, लेकिन जो अपन सरकार है वह प्रयास करत है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ऐसने भैया कल्याणकारी और लाभकारी योजना है जनमानस खातिर, जहिमा सस्ते दर पे दवा उपलब्ध है, जेनेरिक दवाई जौन गुणवत्तापूर्ण दवा है वो आपका सस्ते दर में मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया, और यही एक चीज हम और बता दे कि कुल मेर के दवा मिल जाता है, बस तनी हम पंचन का वही का जानकारी रखे पड़त है कि हमें कौन बीमारी है कौन दवा है और वही के जौन जेनेरिक दवा है वो कौन है, और जब वही के जानकारी हो तो हम पंच जाए के वही का ले सकी थे। कबो कदार भैया यह होत है कि जैसे वो दवा वही समय हुआ नहीं है तो वही का जब उन्हें कह दिन जाए कि हाँ भैया ये का तू मंगा ली है, तो वह मंगाई के कुछ समय बाद वो दवा हम पंचन का दे देते हैं, और वही में सबसे बढ़िया फायदा ये रहा था कि दवाइयों कम पैसा का रहा था, जेब भारों कम पड़ा था, और हम पंच आपन इलाज पूरी तरह से आसानी से करवा ले थे।
0: बिल्कुल भैया, और ये जौन दवाई है सबसे बड़ी बात, जैसे आपका महंगी महंगी कंपनी के दवाई रहत है वो आपके जैसे फायदा पहुंचावत है, वही तरीके से ये दवाई फायदा आपके पहुंचावत है, बस जौन है आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे जाए के बतावे के है कि ये बीमारी हमका है और हमका ई दवा चाहिए, तो देख के कि कौन दवाई को उमा वो जौन पड़ा रहा थे ना वो सब देख लेते हैं कि हाँ ये चीज इमा है, वह वही के देख के भैया आपका दवा दे दी है कि आपकी दवाई है। इमा देखो यही नहीं, जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है, तमाम तरीके की बीमारी हैं, यहू के भैया जौन है तमाम दवाई मिल जाते, और सर्जरी वाले जौन उपकरण होते हैं या सर्जरी वाला जौन सामान होता है किहू का ऑपरेशन ऑपरेशन हुए तो वहू इमा सस्ते दर पे उपलब्ध है।
1: बिल्कुल भैया, अभी कहा था तो अभी हम अपने घटना बताए दे घर हिन के कि जौन बिटिया वाला है वो तनी गिर गए तो एक मुड़े में चोट लग गए, तो जौन पट्टी होता है रुई होता है और दवाई लगाई जाती है गिलाकी जौन होता है ओकरे ऊपर ट्यूब लगाई जाता है, कुल हम वहीं से लायन है और भैया मनबाना 50 रुपये में हमारा कुल काम हो गया है। तो ये चीज जौन बात बतायो ये बिल्कुल सही बात है कि वही माँ हर मेर के सामान हम पंचन का आसानी से मिल जाता है और हम पंच अपन दवाई कराए लेते हैं।
0: बिल्कुल भैया, विभिन्न विभिन्न रोग के दवाई के अलग अलग दाम होते हैं, लेकिन यू है कि दवा तबो यहाँ सस्ती मिल रही है।

0: अगर जौन है आपका क्षेत्र जौन है वहाँ आप पता कर लियो कि अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कहाँ है, हुआ से जाए के आप संपर्क कर लियो, अपन दवाई हुआ से आप प्राप्त कर सकते हो।
1: बिल्कुल भैया। और देखो देवेश भैया, जब हम पंच ठीक रहबे तब हम पंच अपन घर के विकास कर पौबे, अपने गांव का आगे बढ़ा पौबे और अपने समाज का आगे बढ़ा पौबे, और तब हमार जो समाज है वो बढ़िया तना आगे बढ़ी। और यकरी ता एक चीज और जरूरी है, वो ई कि हम पंच जौन अपन काम कर थी वोका तो करबे करी, साथे साथ अगर कौनो नवा काम हम पंच करे चाहित है तो वही का बढ़िया तना सीख ले, वही के जानकारी ले ली, फिर वह काम का करी तो वही मां नुकसान केर संभावना कम हो जात है और साथे साथ फायदा केर संभावना बढ़ जात है।
0: बिल्कुल भैया, फायदा के संभावना बढ़ जाते है और अपन कौशल जो है दिखावे के या वही के निखारे के अवसर भी मिलत है। और देखो भैया, बात कौशल के उठी है तो कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत, यह विषय पे देखो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आसिया बानो जी। तो आप सुना जाए कि का जानकारी वो दे रही हैं कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत के बारे में।
1: बिल्कुल भैया,
2: भारत गांव का देश है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। देश की लगभग 75% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, कम आय और शहरों की ओर पलायन रही है। इस समस्या का सबसे बड़ा टिकाऊ समाधान कौशल विकास। कौशल विकास का अर्थ है व्यक्ति की मौजूदा क्षमता को निखारना और उसे बाजार की मांग के अनुरूप नया हुनर सिखाना। जब गांव का युवा, किसान या महिला किसी उपयोगी कौशल में निपुण हो जाता है तो वह सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदलता बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देता है। इस कारण कौशल विकास को आज ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का आधार माना जा रहा है। देश को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण का सशक्त होना बहुत जरूरी है। गांव के नौजवानों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कौशल विकास योजना को देश भर में लागू कर युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें सामाजिक दृढ़ता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक वेतन या न्यूनतम दूरी से अधिक वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध कराना है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश के युवाओं को अल्पकालिक बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग देना है। इसमें भारत सरकार की ओर से सीधा कोई निश्चित वेतन या फिक्स आमदनी नहीं मिलती, लेकिन कुछ विशेष कोर्स और प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। कौशल विकास योजना में लगभग 400 से अधिक रोजगार उन्मुख कोर्स शामिल हैं। इसमें परंपरागत कार्यों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, 5G, साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक कोर्स भी उपलब्ध हैं। कौशल एवं ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। कौशल का उच्च स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। भारत में पहली बार कौशल को रोजगार परक बनाने की कोशिश हुई है और इसके परिणाम स्वरूप उद्यमशीलता एवं कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए तथा गरीबी, अशिक्षा और आतंकवाद जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान किया जाए। भारत की 75% जनता गांव में निवास करती है। ग्रामीण जनता ज्यादातर कृषि आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहती है। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं पशुपालन जैसे परंपरागत कार्यों में संलग्न है। लगातार गरीबी, अशिक्षा से लगातार संघर्ष करते हुए भी ग्रामीण राष्ट्र निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहे हैं। आज विश्व के साथ स्पर्धा करना है तो इन गांवों में रहने वाली जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके उनका मार्गदर्शन करें। इसका उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने हेतु कौशल भारत, कुशल भारत योजना की शुरुआत भारत सरकार ने विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को एक मिशन के रूप में की। इस मिशन की कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। यह प्रशिक्षित युवाओं को न्यूनतम मजदूरी से अधिक

0: वेतन वाली नौकरी आदि लाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ती हैं। इसके तहत ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित कर मुख्य धारा की नौकरियों से जोड़ा गया है। इसके जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत ग्रामीण युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और पूर्व शिक्षण की मान्यता के जरिए कुशल बनाया जा रहा है। तीसरा, कृषि कौशल योजना, ग्रामीणों को आधुनिक बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कृषि आय में वृद्धि होती है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई यह पहल मजबूत स्टार्टअप को इकोसिस्टम व संस्कृति को बढ़ावा देने, उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के साथ ही साथ देश में नौकरियों की मांग करने वालों के बजाय नौकरियां देने वालों को विकसित करना है। पांचवा है स्टैंड अप इंडिया। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक महिला उधारकर्ता प्रति बैंक खाता 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। छठा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई यह योजना गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को शिशु, किशोर और तरुण का ऋण प्रदान कर नए उद्यम विकसित करने की दिशा में प्रयास है। यह ऋण वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, MFI और NBFC द्वारा दिए जाते हैं। सातवां है अटल इनोवेशन मिशन। इस मिशन योजना में इंक्यूबेशन सेंटर, तकनीक व नवाचार उद्यमों, स्टार्टअप को विकसित करने में सहायता प्रदान करना, इसके अंतर्गत व्यावसायिक नियोजन, बाजार में प्रवेश व वित्तीय मामलों से संबंधित सलाह है। संस्थानों को मजबूत बनाने, समाज के वंचित वर्गों को कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण के साथ साथ विनिर्माण के क्षेत्र में आवश्यक कुशल मानव संसाधन को विकसित कर मेक इन इंडिया पहल में सहायता करना है। आठवां, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NGO द्वारा संचालित इन योजनाओं में स्थायी कृषि, गैर इमारती वन उत्पाद और बाजार संपर्क स्थापना पर बल दिया गया। इस योजना के द्वारा देश में बहुत सारी महिला किसान लाभान्वित हुई हैं। नवा है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना। समेकित कार्ययोजन वाले जिले दुर्गम व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए होनहार युवा व्यवसायियों को क्षमता निर्माण अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसका संचालन 2016-17 से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ऑन रूरल लाइवहुड स्टार्टअप ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम, कृषि में कौशल विकास हेतु व्यवसाय विशेष के लिए समर्पित संस्थान, युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में एक अलग कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय की स्थापना की है। इस योजना के तहत औपचारिक शिक्षा से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। सरकार ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का विजन रखा है। साथ ही सरकार ने अप्रेंटिस से संबंधित कानून में भी समुचित बदलाव कर कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए अप्रेंटिस के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। अप्रेंटिस की व्यवस्था से कई देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा है। ग्रामीण भारत में कौशल विकास योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और PMKVY के माध्यम से लाखों रोजगार सृजित हुए हैं। इन योजनाओं से अब तक 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है और करीब 55-60% उम्मीदवारों को सीधे वेतनभोगी स्वरोजगार मिला है। बी बॉक्स एक निजी संगठन की भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल युवा रोजगार क्षमता 2024 में लगभग 51% थी, जबकि 2017 में यह लगभग 40% थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नवीनतम अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में लगभग 3% हो गई है। इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं ग्रामीण भारत कौशल विकास के परों पर उड़ना सीख रहा है और शीघ्र ही हमारा ग्रामीण भारत अपने ही संसाधनों और युवाओं के कौशल विकास की मदद से जल्द ही बहुत आगे निकल जाएगा।
1: देवेश भैया।
2: हाँ रामजीत भैया,
1: देखो कितने आज अपन गांव है

0: कितना बढ़िया तना आगे बढ़ रहा है और कितना कुछ अपने गांव घर में हो रहा है, ये सब बातन का हम पंचन का जानक चाहिए और कैसे आगे बढ़ रहा है यह बात का समझक चाहिए। कहता है डॉक्टर आसिया बानो बहनी बहुत बढ़िया तना बताइन कि कौशल विकास से सशक्त होता ग्रामीण भारत, तो ये बात जो उनके रही बिल्कुल ठीक लाग हमें।
1: बिल्कुल भैया, बात उनका ठीक लाग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दीन, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी खातिर उनका बहुत बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद।
0: और भैया एक बात और बताए दी कि हमहू पंचन का अगर कहूँ से जानकारी मिलत है कोनो चीज का, हम पंच सीखे चाहित है या क्यों बताए रहा है, तो वही का सीखे चाहिए और वही का काम करे चाहिए, लेकिन साथे साथ अपने आस पास यो ध्यान देख चाहिए कि आइस कोनो छोट लड़का या आइस कोनो छोट बच्चा जौन जेकर उम्र स्कूल जाए के है और वो कहूँ कोनो मजबूरी वश कोनो दुकान पर या कोनो होटल पर या कोनो जगह अगर काम कर रहा है, तो हम पंचन के नैतिक जिम्मेदारी बनत है कि हम पंच वही का हुआ से आगे बढ़ाई और अगर वो पढ़े चाहे रहा तो वही का पढ़े में योगदान करी।
1: बिल्कुल रामजीत भैया, देखो और बहुत बढ़िया बात कहो, और काल देखो बाल श्रम निषेध दिवसों है 12 जून का, और आज आप ये बात कह रहे हो, तो यू जौन है हम सबका एक तरीके से प्रतिज्ञा लेके चाहिए कि कहूँ अगर लड़का बच्चा छोट है, वो पढ़े लिखे वाले उम्र के लड़का बच्चा कहूँ काम कर रहे हैं, तो एक सूचना दी जाए तुरंत,
0: बिल्कुल,
1: ताकि उन लड़कन का हो सकत है भाई जबरदस्ती काम करावा जात हो, या ऐसा कोनो काम करावा जात हो कि जोने से उनका शारीरिक मानसिक रूप से क्षति पहुंच सकत हो, तो इन सब से बचावे खातिर ही ये जरूरी है कि बाल श्रम का रोका जाए, वहीं पे प्रतिबंध लागे।
0: बिल्कुल भैया, और जब बात कहो कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर, तो एक बात हम भैया बतावे चाहिए कि छोट लड़का छोटे होता और बड़ा बड़े होता है, अगर वो कौनो काम कह रहा है भले वो अपन कितना अच्छे तरह से करे लेकिन बड़ा के नजर में वो काम लगभग गलत रही, तो ये से का होता है कि फिर कऊ जगह हम देखे है कि आदमी हाथों उठाए दिए थे या बहुत अपशब्द कह दिए थे, तो अगर चीज कहूं देखो तो तुरंत यही कीता है आवाज उठाओ, कहते हैं ई शांत रहे वाली बात नहीं है, अपन भविष्य जौन है उन लड़कन के रास्ते हो के गुजरत है और यही में हम पंचन का साथ दिए की जरूरत है और वह जगह से उन लड़कन का निकारे की जरूरत।
1: बिल्कुल भैया,
0: और देखो भैया एक चीज और बता दी कि जब निकारे की बात है तो घरों में जो अपन घरेतीन होते हैं वनहो जौन दबे कुचले अपन काम करवाइन लिए थे,
1: बिल्कुल,
0: कभो मान मनवल से कभो रिसियाई के कभो कोनो मेर और ना ही तो कुछ भत चरायु के वह अपन काम करवाए जरूर नहीं है, तो ऐसा ना एक गवाई लेके हम आयन है, तो ई लोकगीत सुनवाए दिन जा अपने पंचन का।
1: बिल्कुल, आओ सुना जाए ई कहरवा जेके कलाकार हैं बिमला।
0: चलो

0: दिवेश भैया।
1: हाँ रामजीत भैया,
0: देखो बात बिल्कुल सही है और यह मेयर के मान मनोवल जौन है वो अपने खेती पाती में और अपने हाथ व्यवहार में तो लगे रहा था। और एक बात और बता दी, यह मान मनोहर जब अपने खेती पाती में दिखाते हैं तो फसल तनी और बढ़िया हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: बोलो कैसे?
1: कैसे?
0: वो ऐसे कि भाई जैसे कोनो बात कह दो घर इतनी नाराज हो गए तो फिर वह झोंक में ज्यादा काम हो जाता है। और कबो वह कह दिन वो हम नाराज हो गए पंच तो फिर वह झोंक में हम पंच काम तेज करे लगी था।
1: बिल्कुल,
0: तो कबो कबो गुस्सा कर आपन आनंद रहा था।
1: बिल्कुल भैया, गुस्सा के प्यार मोहब्बत के हर चीज के अपन आनंद होते है, लेकिन खेती पाती में एक चीज और होता है कि जब आप अपन खेत के जौन फसल होते वही के निगरानी करत रहत हो अच्छे से, या देखत रहत हो कि इमा कोनो रोग दो कोनो व्याधि कीट पतंगा कछु दिखाई तो नहीं पड़ रहा, जब आप कहे के मतलब कि वही का अच्छे से देखभाल करत रहत हो तो कोनो काम गड़बड़ नहीं हो पावत।
0: हम समझ गए भैया कहो कहा था कि कुल मिलाए के कुल मेर से अपने खेती पाती में अगर प्रबंधन बढ़िया है हर चीज के तो फिर कोनो मेर का दिक्कत नहीं होत है। फिर वही प्रबंधन चाहे कीट रोग केर हो, चाहे अपने माटी केर हो, चाहे खाद पानी केर हो, चाहे फिर समय केर हो, कोनो मेर के और अगर वो प्रबंधन गड़बड़ाई जात है तो भैया निश्चित तौर पर अपन फसल जौन है वो गड़बड़ाई जात है।
1: बिल्कुल सही बात है भैया। अब काहे से देखो प्रबंधन जौन है वो बड़े लाभ के चीज होते है। लाभ के चीज ये लिए होते है कि भाई आप जौन भविष्य में खतरा नुकसान हो वाला हो वही से आप पहले सजग रहा थो, और जब आप इसे पहले से तैयारी किए रहा थो तो जौन नुकसान अगर आपका होए कहे तो वही के मात्रा या नुकसान के जौन दर है वो कम हो जाता है, या कहो नुकसान होबे न करे, आप पूरी तरीके से पूर्ण रूप से सुरक्षित रह जाओ।
0: बिल्कुल भैया, और यही तय देखो हम पंचन का समन्वित नासी जीव प्रबंधन जौन है वही का अपनावे की जरूरत है। अब यही में कहा है कि जैसे हम पंच अपने खेती पाती में किनारे किनारे हम जैसे मेड़ हो गए या जो जहाँ पानी के ज्यादा नरहा हो गए तो वही का अगर हम पंच साफ सुथरा रखे कोनो मेर के खरपतवार वही में न रहे तो जौन वही में कीट पलत हैं वही न पली हैं और आसानी से जौन पानी है वह आगे बढ़ा करी। और यह मेर के यांत्रिक क्रिया जौन होत है चाहे वो निराई गुड़ाई हो गए वह मेर से हम अपने खेत का जब साफ सफाई बढ़िया तरह कह देते है तो जौन कीट अपन फसल का नुकसान पहुंचा सकत है जौन खर अपने फसल का दबाए सकत है वह सब खत्म हो जाते हैं और अपन जौन फसल है वो बढ़िया तना लहलहात है।
1: बिल्कुल भैया, रामजीत भैया जौन आप कहो समन्वित नाशी जीव प्रबंधन ये पद्धति ही ऐसा है कि ये जौन नुकसान पहुंचावे वाले कीट हैं या रोग हैं इनका नियंत्रित करे खातिर होते है। यही के उद्देश्य ही यही है कि जौन नाशी जीव के संख्या है उनका जौन है आर्थिक नुकसान के स्तर जौन है वो इसे नीचे रखा जाए। और आप यांत्रिक तरीका कहो तो इमा तमाम जौन है प्रबंधन के तरीका है, जैविक नियंत्रण के तरीका है, जहिमा आप जौन है प्राकृतिक जौन मित्र कीट हैं उनका आप उपयोग करके उनका सुरक्षा प्रदान करके जौन शत्रु कीट हैं उनका खात्मा कह सकत हो, उनका नष्ट कह सकत हो, और रासायनिक और सांस्कृतिक नियंत्रण यही तरीके से।
0: बिल्कुल भैया, यही माँ एक ट्रैपो आवत है, अगर हम पंच वही ट्रैप का लगवा ली तो बहुत से बहुत हद तक जौन आपन फसल है वो बच जात है। कहते हैं जौन कीट हो तो वही माँ आकर्षित हो जाते तो एक बाद वही का अपन

0: नष्ट कर
1: हाँ,
0: दिया।
1: वो जिका वो चिपचिपा वाला फीता
0: हाँ
1: कहा जाता है, तो इमा जाते हैं उनके पंख कीट पतंगा के चिपक जाते हैं, तो फसल पे यहर बहार नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। यही तरीके से तमाम विधियां हैं जो उनकी कीट पतंगा रोग दोग से अपन फसल का सुरक्षित कराते हैं, और इनका जो है अपनावे के आवश्यकता है। रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं उनके उपयोग कम से कम करे चाहिए, लेकिन
0: बिल्कुल
1: अगर
0: भैया,
1: मान लो भैया ऐसा दिख रहा है कि फसल का बहुत भारी नुकसान हो सकता है, तो उनका अगर आप उपयोग कर रहे हो तो सही मात्रा और सही रसायन के
0: बिल्कुल
1: जानकारी कई
0: भैया।
1: के तब आप उसके उपयोग करो।
0: हाँ और यही मैं एक बात हम और कहे चाहिए कि हर खेत का माटी हर जगह हर चीज अलग अलग होता है। कहू जाने का होते हैं कि अपने हारी व्यवहारी कहूँ जगह देख के आए कि वनहू को बतने खेत है, वनहू वह फसल बोए हैं और उनके यहाँ ऐसे दिक्कत आई, तो अपने हम उस चीज़ के इस्तेमाल कर ली और हम वह चीज़ से निजात पाई जाए। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करे चाहिए। कहे कहें वह वथुम अपन इस्तेमाल करते है, वह भाई कृषि वैज्ञानिक से गए पूछ आए जानकारी ले लेन, अब उनके फसल कौना बीज कौना ये सब के जानकारी हम पंचन का ना रहा, कितना खाद पानी डाले काव के है यहो को जानकारी हम पंचन का ना रहा। तो यह स्थिति में का हो जाता है कि जौन हमार फसल है या तो दवाई कम पड़ गए तो वही पर पूरी तरह लाभ नहीं मिलत, दवाई ज़्यादा पड़ गए
1: तो
0: तो जौन
1: नुकसान हो
0: हाँ
1: जाता है।
0: नुकसान अलग हो जाता है। तो कुल मेर के नुकसान होता है अपने
1: बिल्कुल
0: फसलों
1: भैया
0: केर और अपने पैसों केर।
1: सही बात आप कहा। तो जॉन आप ये बात कहो कि सबके खेत के माटी सबके भौगोलिक स्थिति जॉन रहते हैं वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। जैसे हमका सबका अगर मान लो कोनो बीमारी हुई जाए और तुम्हों का मान लो बुखार आ रहा, महू बुखार आ रहा, लेकिन का है इमा अंतर यही, तुम्हारे शारीरिक क्षमता कुछ अलग
0: अलग
1: है
0: है बिल्कुल
1: हमारा
0: भैया,
1: अलग है, तो कितना दवाई कौन दवाई तो का खाए लाभ हुई कौन दवाई हमका खाए लाभ हुई, जैसे
0: बिल्कुल
1: अलग
0: भैया
1: अलग होते वही तरीके से अपन जो खेत है वही की स्थिति परिस्थिति पे ही निर्भर करते हैं कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में डाली जाए या का चीज के कैसे उपयोग की जाए।
0: बिल्कुल भैया। और यही कुल कामन केर अगर हम पंच योजना बढ़िया तरह बनाए ली तो कौनो मेर के दिक्कत नहीं होता है। एकरे साथ एक चीज हम पंच और ध्यान धरे चाहिए कि कौदा हम पंच सुनित तो है जनबो करित है कि हम नवा बीज लाई सही बीज लाई और जौन जहाँ पर मार्क पड़ा रहा था हम वही कलाई संशोधित रहे कौनो मेर के दिक्कत ना हुए, वो करे बादो कौदाएँ ऐसा हो जात है कि हम पंच बीज लाए ना पाए या जाए ना पाए या घर में जौन पड़ा रहा है हम बीमार हो गए कुछ हो गया तो हम वह बीज का इस्तेमाल कर दिए। तो ऐसे का होता है कि अपन जौन उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है, वो उतना बढ़िया तना नहीं होता या फिर कम हो जाता है। तो यही बदे हम पंचन का उन्नत बीज या उन्नत प्रजाति के इस्तेमाल जरूर करे चाहिए। और यही समय देख लो अपने बागन का लगावे के जो समय है वो आ चुका है, तो अगर क्यों पंच नवा बाग लगावे जाए रहा है तो वही माँ का वो का योजना रखा है कौन कौन उन्नत प्रजाति रखा है और कैसे वो का समायोजित करे, ये सब चीज के अगर जानकारी हो जाए तो जौन बाग लगावे के काम है ये आसान हो जाइए।
1: बिल्कुल भैया, तो यही माँ देखो जो ना आप नए बाग लगावे वाली बात कहो, तो नए बाग लगाने की योजना और उन्नत प्रजातियां यह विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र राजन भैया, और इनसे बतकही कह रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ दोनों जने के बतकही का लाभ उठावा जाए और सुना जाए ई भेंटवार्ता।
0: बिल्कुल भैया,
2: किसान भाइयों बहनों, जहाँ खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में बागवानी शुरू करना चाहते हैं, तो नए बाग लगाने की योजना और उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा के डॉक्टर शैलेंद्र राजन साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां नए बाग लगाने की योजना बनाए हैं किसान बागवान भाई, तो क्या कुछ सलाह है आपकी?
3: सबसे पहले तो हमको ये देखना है बाग कहाँ लगाना है, साथ ही साथ उसके लिए आपको किस तरह के पौधे चाहिए उसके बारे में सोचना होगा, साथ ही साथ कौन सी प्रजातियाँ आप वहाँ पर लगाने जा रहे हैं ये सबसे प्रमुख होता है। तो हम लोग जानते हैं पुराने ज़माने में 12x12 मीटर पे पौधों को लगाते थे, पहले आम को और लीची को जामुन को इन सबको 12 मीटर पे, तो कोई 10 मीटर पे लगाते थे, लेकिन आज समय बदलता जा रहा है क्योंकि ज़मीन की कमी हो रही है, अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम लोगों का प्रयास रहता है। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखें आप, किस फल वृक्ष के लिए आपको कितनी दूरी पर लगाना है और कौन सी विशेष किस्म का प्रयोग करना है जिससे आपको अधिक लाभ मिले। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दूरी का ध्यान आप इसलिए रखें क्योंकि यदि आप नियमित रूप से अपने बाग की व्यवस्था करते हैं, उसमें कटाई छटाई करते हैं, तो कम दूरी पर अवश्य लगाएं, लेकिन यदि आप इतना आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपको समुचित दूरी पर ही लगाना चाहिए क्योंकि घने बाग हो जाने में उनमें

0: फलन की समस्या हो जाती है। थोड़े समय बाद फलाने कम हो जाते हैं, पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और घने हो जाने से उनसे मिलने वाला मुनाफा कम हो जाता है। इसलिए आम को यदि लगाएं तो 10 बाई 10 मीटर के बजाय 8 बाई 8 मीटर पे आ सकते हैं, 6 बाई 4 मीटर पे लगा सकते हैं, 9 बाई 6 मीटर पे लगा सकते हैं। पुरानी परंपराओं से हटके लोग लगाने लगे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बहुत पास पास भी लोग लगाते हैं, 2.5 बाई 2.5 पे लगाते हैं, 2.5 बाई 5 पे लगाते हैं, लेकिन वहाँ हमको नियमित रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि शाखाएँ एक दूसरे से लड़ें ना। फल लेने के बाद उसमें थोड़ी कटाई छटाई करें। आम में कटाई छटाई विशेष तौर की होती है, लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है जिसको कि आप पास भी लगा सकते हैं। अमरूद के बाग 2.5 बाई 2 पे या 2 बाई 1.5 पे भी लगाए लोग और उसमें अच्छी सफलता मिली है लोगों को, लेकिन यदि नियमित रूप से इनकी कटाई छटाई ना की जाए तो अफलन होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में अमरूद भी लगाएं तो उसमें 5 बाई 5 पे लगा सकते हैं, जिसमें 5 बाई 5 में लगाने में आपके 400 पौधे आते हैं। अगर आप 10 बाई 10 पे अगर कोई बाग लगाते हैं तो 100 पौधे ही आते हैं, तो 4 गुना पौधे बढ़ जा रहे हैं। तो 4 गुना पौधे बढ़ने का ये लाभ होता है कि शुरू से ही कम फल भी आया तो चूंकि 4 गुना आपके पौधे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो 4 गुना उपज मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, जो छोटी हो रही है, ऐसे में सघन बागवानी और अति सघन बागवानी का दौर है, तो किसान भाई बहन इस ओर आगे आए, इसके लिए फलदार पौधों का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, इस प्रयोजन से अमरूद और बेर बहुत अच्छा है। अमरूद में लगाएं यदि आप तो 3 बाई 3 पे अच्छी बागवानी कर सकते हैं, आप अच्छी फसल भी मिलेगी और उसको नियमित रूप से आप फसल भी ले सकते हैं। लेकिन पास में पौधे लगाने के कारण आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष तौर पे अमरूद पे। एक तो उसका आकार छोटा रखें, उसकी कटाई छटाई करनी है, दूसरा सही समय पर फल लेने के लिए भी। लेकिन जब बहुत पास लगाते हैं तो सही समय पर फल लेने के लिए हम लोगों को कटाई छटाई करनी तो पड़ती है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो कटाई छटाई आकार के लिए करते हैं वो सही समय में फल हमको देने में असमर्थ होती है
1: जी।
0: इसलिए 3 बाई 3 से कम पौधों को ना लगाएं
1: अमरूद में।
0: अमरूद में 3 साल तक 4 साल तक अच्छा फल मिलेगा, लेकिन जैसे ही पौधों का आकार बढ़ा तो उसको आपको कटाई छटाई करनी आवश्यक हो जाएगी। इसलिए 3 बाई 3 पे लगा के सघन बागवानी कर सकते हैं,
1: यानी बीच बीच में प्रूनिंग और ट्रेनिंग भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, आप देखते हैं अमरूद में 2 तरह की फसल आती है, एक बरसात की फसल होती है, एक जाड़े की फसल होती है। तो हम क्या करते हैं, अमरूद की बरसात की फसल जो कि अच्छे क्वालिटी की नहीं होती है उसको ख़त्म करने के बहाने उसकी प्रूनिंग ट्रेनिंग भी कर देते हैं
1: जी।
0: 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जाड़े की फसल को बढ़ाने के लिए जिसकी गुणवत्ता अधिक है, अधिक उसका मूल्य मिलता है, उसको हम रखने के लिए अप्रैल और मई में छटाई करते हैं। उस छटाई से 2 लाभ होते हैं, एक तो फूल जो आते हैं वो जुलाई में आते हैं, उससे जाड़े में फसल मिलती है, पौधों का आकार छोटा हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी नए फलदार वृक्ष लगाने हैं तो अगर गड्ढों की खुदाई नहीं किए हैं तो गड्ढों की खुदाई रेखांकन के अनुसार करना होगा।
0: 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे वहाँ पर खोदे जाएं जहाँ पर बहुत कंकड़ीली या पथरीली या बहुत कड़ी मिट्टी हो, जिसमें कि खुदाई कभी ना हुई हो, ना कुछ हुआ, ना कुछ लगा हो, पेड़ पौधे ना जमे हों, तो ऐसी जगह पे 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जहाँ खेती हो रही है, जहाँ फसल हो रही है, जहाँ मिट्टी नरम है, जहाँ उपजाऊ है, वहाँ पर छोटे आकार का गड्ढा भी आप खोद सकते हैं। लेकिन अगर आप पौधा लगाते समय ही उसमें एक जैविक खादें, कंपोस्ट, गोबर की खाद इत्यादि का उसका प्रयोग थोड़ा सा एक डलिया ही पौधा लगाते समय करेंगे तो शुरू में होने वाली वृद्धि बाद में पौधे को अच्छा आकार देगी और उसके परिणाम अच्छे होंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में गोबर की खाद जरूर प्रयोग में लाएं। रासायनिक खाद बाद में प्रभाव करती है जब उसकी जड़ें विकसित होने लगती हैं, परंतु जब तक जड़ें विकसित नहीं होती हैं तब तक हमको पौधे को उस स्थान पर स्थापित करना होता है। उसके लिए हमको विशेष ध्यान इसलिए भी ज़रूरत होता है, आप लोग सुनते हैं कि पौधे की पत्तियां सूख रही हैं, छोटी हो रही हैं, बढ़वार नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए अधिक जैविक खाद मिलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से उस गड्ढे के अंदर भर दें। जितने भी गड्ढे में कीड़े हैं, बीमारियां हैं, उनके सब प्रकोप से बचने का आपको धूप के वजह से इनसे निजात मिल जाती। लेकिन अब चूंकि समय निकल गया है, बरसात आ गई है, अब आपको ध्यान रखना है कि गोबर की खाद जरूर मिलाएं। और दूसरा, दीमक सबसे बड़ी परेशानी का एक कारण होता है और आमतौर पर हम देखते हैं कि दीमक के प्रकोप से छोटे नए पौधे नष्ट हो जाते हैं और जहाँ पानी कम हुआ तुरंत दीमक ऊपर को जाने लगता है। इसे लगातार सिंचाई करें, सिंचाई के साथ उसको पानी में क्लोरोपायरीफॉस नाम की दवा होती है वो भी मिलाएं, और अगर आपका नाली से पानी आ रहा है तो क्लोरोपायरीफॉस का एक डब्बा वो उसमें रख सकते हैं जहाँ से पानी जा रहा है,
1: छेद करके
0: ताकि वो धीरे धीरे उसमें आए और जो पौधे के आसपास के क्षेत्रों में जो दीमक है वहाँ से उसका बचाव कर सके।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी नए बाग लगाने जा रहे हैं किसान बागवान भाई बहन, तो फलदार पौधे

0: मुर्गों की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी चुने?
1: आमतौर पे किसान भाई बागों को अब लगा रहे हैं व्यवसाय के लिए। व्यवसाय के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ग्राहक किस तरह की किस्म का अधिक दाम देता है। जिस किस्म का अधिक दाम नहीं मिलता है उसको हमको उगाने में कभी लाभ नहीं मिलता है। कभी कभी पूरा बाग लगाने के बाद आप किनारे किनारे अपने मेड़ के आसपास भी बहुत सारी ऐसी किस्में लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी पकती हों या बहुत देर में पकती हों। इस तरह से क्या होगा, आपको निरंतर फल मिलते रहेंगे आपके घर के लिए तथा बाजार में ले जाने के लिए भी आपको समय समय पर फल उपलब्ध होने से अधिक लाभ मिल सकता है। आप देखते हैं आम में, यहाँ पर आमतौर पर लोग दशहरी लगाते हैं हमारे लखनऊ के आसपास के एरिया में। लखनऊआ ज़्यादा होता है, चौसा और लंगड़ा बहुत कम है, लेकिन लंगड़ा और चौसा का दाम मार्केट में बहुत अच्छा मिल रहा है
0: जी।
1: आप देखेंगे दिल्ली के मार्केट के आसपास पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चौसा और लंगड़ा जा रहा है। लंगड़ा हमारा मशहूर होता था बनारस का, वहाँ से हटके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गया। क्यों? क्योंकि सारा लंगड़ा वहाँ से दिल्ली मार्केट जाता है, वहाँ उसका अच्छा दाम मिलता है। वैसे ही जितने बड़े बड़े मार्केट हैं जैसे लखनऊ है, इनके आसपास के क्षेत्रों में चौसा और लंगड़ा का दाम अच्छा मिलता है और आने वाले वर्षों में हो सकता है निर्यात के लिए चौसा को अधिक हम लोगों को महत्व देने की संभावना हो, तो ऐसी दशा में चौसा लगाएं। साथ ही साथ अब कल्टार आदि के प्रयोग से नियमित फलन भी होता है चौसा और लंगड़ा में, तो इसलिए भी हमको इनके एकांतर फलन से डरने की बात नहीं है, लेकिन इनका क्षेत्रफल बढ़ने से हमको किसान भाइयों को अधिक लाभ होगा। दूसरी चीज़, अभी तक ग्राहकों को पता ही नहीं था कि आम्रपाली और मल्लिका क्या होती है
0: जी,
1: लेकिन आज ग्राहक समझने लगा है और मल्लिका और आम्रपाली का ज़्यादा दाम दे रहा है, उसको लगाने से लेट फसल होती है। वो लखनऊआ सफेदा के साथ आती है लेकिन उसका दाम लखनऊआ सफेदा से भी दुगना मिलता है। 40 रुपये जो आम मिलता है दूसरा, तो 60-70-80 रुपये तक उसका दूसरे मल्लिका और आम्रपाली जैसी वैरायटी उनका मिल जाता है।
0: डॉक्टर साहब, नए बाग लगाने की बात चल रही है तो आजकल आम की रंगीन किस्में भी आ गई हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं बाजार में।
1: अब धीरे धीरे लोगों में कम मीठा आम खाने की और रंगीन आम खाने की चाह बढ़ गई है। आकर्षण ग्राहक को खींच रहा है और वो उसका 3-4 गुना दाम तुरंत देता है। कुछ विदेशी किस्में हैं जैसे टॉमी एटकिंस है, सेंसेशन है। हमारे संस्थान से भी 2 किस्में निकाली गई हैं, अंबिका और अरुणिका।
0: डॉक्टर साहब, किसान बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे नए बाग लगाने की योजना और उन्नत प्रजातियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो?
1: सभी का हमारे संस्थान में स्वागत है, साथ ही साथ वो मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं, 94-15-79-49-97 94-15-79-97 94-15-79-97।
0: डॉक्टर शैलेंद्र राजन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और नए बाग लगाने की योजना और उन्नत प्रजातियों का चुनाव कैसे करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देवेश भैया।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो, हमहू पंच अगर नए बाग जो अगर हम लगाए की योजना बनाए रहे हैं तो जानकारी बहुत बढ़िया रही कि नए बाग लगाने की योजना और उन्नत प्रजातियों पर इतनी बढ़िया तरह डॉक्टर शैलेंद्र राजन भैया बताएं और इतने बढ़िया उनसे पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इनका बहुत बहुत
3: धन्यवाद
2: जो उनके स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित रहा है, तो बहुत बढ़िया बात कही रहा है भैया।
3: बिल्कुल भैया, और देखो अपने जो श्रोतापंच हैं उनका इंतजार हुई कि कौनो गीत गौना ही अपनी बैठकी में हम सब लेके आए हुई हैं, तो काहे ना कुछ गीत गौना ही सुनवाई दी जाए।
2: बिल्कुल भैया, अच्छी लाचारी लायन है और लाचारी सुन के एकदम जौन जीव है ना वो एकदम गनगनाए जाए, एकदम आनंद से भर जाए।
3: हाँ
2: तो एका सुना रहे हैं रामायण राम और साथी भैया, तो अब एका सुना जाए और आनंद उठावा जाए।
3: बिल्कुल भैया।

0: भैया पियावा जौन है ना हेरही है तनी ध्यान धरक पड़ी। अब तुह भैया हेरवाया ना कहूँ मेला वेला ले जाए तो वहीं छोड़ आओ।
1: नहीं भैया ऐसा कछुना होई। और देखो हम यूं कह रहे हैं रामजीत भैया कि आपके हाथ माम का दिख रहा है बाजार भाव।
0: भैया बाजार भाव हाथ में नहीं दिखा था, बाजार भाव तो हम पंचन के जहन में हमेशा रहा था। और वही का हम पंच देखो अपने यादव रखित भाई डेली वही मंडी जाए है और रोजे वही जितना चीज है सबके बारे में जानकारी मिला करत है। तो भैया बाजार भाव तो हम पंचन का बतेबे करबे, वैसे पहले मौसम बता दे।
1: बिल्कुल,
0: तो भैया तरी मौसम के जानकारी जो बहुत जरूरी है वो हम पंचन का जरूर होक चाहिए। तो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 से लेके 15 तक पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। साथ ही साथ वज्रपात के और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के झोंकादार हवा चले के संभावना है और 14 और 15 में कोनो विशेष चेतावनी नहीं है। तो भैया ये है मौसम के हाल। और अब अपने पंच भाई का बाजार भाव जरूर बता दिन जाए। तो चार मंडी का जो बाजार भाव है लखनऊ कानपुर गोंडा और अयोध्या, वही का भैया शुरुआत की जाए।
1: बिल्कुल भैया, तो लखनऊ मंडी में गेहूं धड़ा 2585 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 2585 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा मंडी में गेहूं दड़ा 2523 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या मंडी में 2585 रुपया प्रति क्विंटल। चावल कॉमन लखनऊ मंडी में 3500 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 3450 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 3000 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 3060 रुपया प्रति क्विंटल। चना छोटा लखनऊ मंडी में 6650 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 6350 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 6800 रुपया प्रति क्विंटल, अयोध्या 6400 रुपया प्रति क्विंटल। अरहर दाल भैया लखनऊ मंडी में 10800 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर 10570 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा 10800 रुपया, अयोध्या 10900 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया, और यही के साथ जो आपने मटर सफ़ेद रही वो रही 4480 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से लखनऊ मंडी में, कानपुर में 4000, गोंडा में 4200 और अयोध्या में 4260 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और आलू सफ़ेद जौन रहा है वो लखनऊ मंडी में रहा है 850, कानपुर मंडी में 780 रुपया, गोंडा 975 और अयोध्या 855।

0: रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। प्याज जौन लाल होते वही के लखनऊ मंडी के बाजार भाव रहा 1380, कानपुर 1320 और अयोध्या केर 1300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और जौन टमाटर लाल होते वही के लखनऊ मंडी के बाजार भाव 2650, कानपुर 2150 और अयोध्या केर 2000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अब जानकारी के लिए जा कल के कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल भैया, कल श्रोता पंच लोकायतन कार्यक्रम में सुनिए वार्ता डिजिटलीकरण और स्मार्ट पंचायतें। वार्ताकार हुई हैं प्रवीण कुमार सिंह भैया और खेती किसानी में किसान डायरी जो उनकी कृषि समाचार पर आधारित हुई है जैके आलेख एवं वाचन रही है डॉक्टर कृष्ण बिहारी त्रिवेदी भैया के और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के हुई है।
0: यही साथ है देवेश भैया, अगर अपने पंच भाई अपन कोनो बात हम पंचन का कहे चाहें या अपन कोनो इच्छा बतावे चाहें तो वही की तरह कागज कलम उठाए लें और लिखें हमार पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001। और यही के साथ जो ईमेल आईडी है वह का जरूर लिख लें farmandhomeairlko@gmail.com।
1: और भैया देखो घड़ी इशारा कर रही कि अपने पंच भाई से लीन जाए अब आज्ञा।
0: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29,00,000 मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
4: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक

0: में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
3: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य हैं, ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां

0: 160,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
1: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है, उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं, उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
0: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
2: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया, उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
0: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव के मीडिया पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए और प्रस्तुत है खेल जगत। कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अखाड़े से ओलंपिक तक इस विषय पर कोच ऋषि श्वेत सिंह से राघवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता।

श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम

0: से इसे जाना जाता था। तो मल्लयुद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
1: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में।
0: जी जी।
1: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है।
0: जी जी।
1: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
0: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
1: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है। पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीज़ें नहीं थी। उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी। हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते थे। मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
0: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
1: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन। किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा। तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको। आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल। और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
0: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
1: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं

0: डाइट प्रोग्राम क्या है,
1: जी
0: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम
1: जी
0: लोगों ने
1: जी
0: अच्छा अपना मेडल खो दिया,
1: जी जी जी
0: तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर ये, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है।
1: जी
0: अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते, और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती
1: जी
0: है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
0: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है,
1: जी
0: अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज़ करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि
1: जी
0: हम
1: जी
0: अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं, और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है,
1: जी
0: आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियाँ हो रही हैं, बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप,
1: जी।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो, और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं, जब गलतियां करेगा, और उसका सबसे बड़ा जो चीज़ होती है मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
1: बिल्कुल
0: पाएंगे उस चीज़ को,
1: बिल्कुल
0: और गलतियां होती हैं, तो
1: जी।
0: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है, तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हाँ मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी, हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रहे, मेंटली स्ट्रांग थी, उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ, साक्षी मलिक ने लगाया था मेडल लाया, नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे लास्ट में बाई फॉल करके, 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती, तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है हमें अदर कोच है जो भी टीम कोच गया वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल या जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की, तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे, मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाए,

0: जी
1: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
0: जी
1: मगर
0: जी
1: महिला और उत्तर प्रदेश, आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
0: जी
1: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
0: जी
1: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
0: जी जी जी
1: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
0: जी जी
1: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है, महिलाओं की जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है, आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक
0: जी
1: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
0: जी
1: आइए।
0: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना
1: देखिए,
0: चाहिए?
1: एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
0: जी
1: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है, तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।
0: जी
1: 10 साल तक बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप
0: जी
1: बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
0: जी जी
1: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
0: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
1: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है,
0: जी
1: ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफ़ी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल से लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं।
0: जी
1: इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
0: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
1: जी
0: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
1: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
0: जी
1: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल,
0: जी
1: अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
0: जी जी
1: एक
0: जी
1: दो अंकों के अंतर से
0: आ रहे
1: मेडल से रह गए थे,
0: जी
1: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
0: जी
1: अमितिम पंघाल
0: जी
1: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
0: जी
1: करती
0: जी
1: हैं।
0: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
1: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी एशियन गेम्स ट्रायल में वो दीपक पुनिया से ही हारा,
0: जी
1: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
0: जी जी
1: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
0: जी जी
1: चंचल सिरोही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
0: जी
1: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में हम, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अखाड़े से ओलंपिक तक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कोच ऋषि श्वेत सिंह से राघवेंद्र सिंह की भेंटवार्ता, और इसी के साथ ही आज का खेल जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जावेद अख्तर का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। के श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी की आवाजों में फिल्म का नाम है तारा।

कॉकटेल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी नीरज श्रीधर और कविता सेठ की। और इसी के साथ ही वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात के 8 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव। वार्ताकार है डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार की भी खुशबू आती थी। गलियों में, चाय की दुकानों पर और घरों के आंगन में खबरों की चर्चा होती रहती थी। लोग फुर्सत से समाचार पत्र पढ़ते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। जिंदगी की भागम भाग के कारण अब अखबार की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और उसी पर घूम रहा है हमारा पूरा संसार। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, इन्हीं को हम सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं। एक शोध अध्ययन के अनुसार 11 से 18 वर्ष आयु के युवा दिन भर में औसतन 64 बार मोबाइल पर सोशल साइट्स का प्रयोग करते हैं या देखते हैं। युवा और वृद्ध जन भी इसमें पीछे नहीं हैं। संक्षेप में कहें तो सोशल मीडिया ने हमारी जीवन शैली ही बदल दी है, बोलचाल तथा सोच को भी प्रभावित किया है और इसने एक नया भाषाई जनतंत्र उत्पन्न किया है। सामाजिक मीडिया ने मानव संचार को पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भाषा के रूप, स्वरूप और प्रयोग में काफ़ी बदलाव किया है। हिंदी भाषा भी इस बदलाव से अछूती नहीं है। पहले हिंदी मुख्य रूप से साहित्यकारों, लेखकों और सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सामान्य रूप से बोली जाती थी, लेकिन शहरी युवा वर्ग उससे दूर होता जा रहा था। आज सोशल मीडिया ने

हिंदी को एक वर्ग विशेष के एकाधिकार से मुक्त किया है। अब लाखों करोड़ों युवा रोज हिंदी में लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, कॉमेडी हो, राजनीति हो या संस्कृति, सभी में हिंदी दृश्य श्रव्य सामग्री तथा पठन सामग्री की प्रचुरता पाई जाती है। लेकिन जहां सोशल मीडिया ने हिंदी के पठन पाठन तथा उपयोग को एक नई ऊंचाई तथा अभिव्यक्ति दी है, वहीं इसने हिंदी के मूल स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन भी कर दिया है। हिंदी में सामाजिक मीडिया के प्रभाव के कारण संक्षिप्तता, अनौपचारिकता, नई शब्दावली का विकास और हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रित प्रयोग, जिसे हिंग्लिश के नाम से जानते हैं, बढ़ा है। सोशल मीडिया में प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों का भी काफ़ी प्रयोग बढ़ा है और मानक पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होनी चाहिए। इसमें बहुत अधिक शुद्धता या व्याकरण निष्ठता का आग्रह करना इसे क्लिष्ट और दुरूह बनाता है, जो भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में कहीं न कहीं बाधा डालता है। सामाजिक मीडिया ने इसे व्यापक जनसंख्या तक पहुंचाया है, इसके प्रचार प्रसार को प्रभावशाली बनाया है। युवा वर्ग ने भाषा का प्रयोग करने का नया तरीका खोजा है, जो इसे अधिक जीवंत और गतिशील बनाता है। शब्दों को तथा भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का भी प्रचलन बढ़ा है। कुछ विशेष शब्द जैसे वायरल, ट्रेंडिंग, रील, ट्रोल, पोस्ट, म्यूट, ब्लॉक, शेयर और लाइक जैसे शब्दों का आम जीवन में बोलबाला बढ़ गया है, ये प्रचलन में आ गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी के संयोजन से उत्पन्न हिंग्लिश युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। वे अब बिना हिचकिचाहट अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि अतीत में वर्षों से एक वंचित वर्ग और महिलाएं थीं जो सदियों तक चुप रहने को मजबूर थीं। उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज सोशल मीडिया पर वे खुलकर अपनी बात रख रही हैं। और इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से तकनीकी विकास, उपभोक्तावाद, बाजारवाद जैसी शक्तियों का दबाव भी है। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में भी हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है। क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों को भी नई पहचान मिली है, जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब अब सोशल मीडिया पर खूब प्रचलित हैं। अनेकों नए कवियों, लेखकों और क्रिएटर्स को सोशल मीडिया के कारण एक नई पहचान मिली है। उन्हें सामने आने का मौका मिला है। उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल को, अपनी विधा को व्यक्त करने का अवसर मिला है। रचनाओं के प्रकाशन की जटिलताओं से मुक्ति मिली है। अब शायरी, कहानियाँ, गीत संगीत, कविताएँ कुछ ही क्लिक में करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार सोशल मीडिया का भी प्रभाव दो तरफा है। हमारी हिंदी भाषा की शुद्धता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। लंबे गहरे विचारों की जगह छोटे छोटे वाक्य और इमोजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इससे भाषा की गहराई, भाव और विस्तार दोनों ही कम हो रहे हैं। सोशल मीडिया में अब शॉर्ट शब्दों का प्रयोग या अंग्रेजी शब्दों के शॉर्ट वर्जन का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, जिससे हिंदी की मूल भावना तथा व्याकरण की शुद्धता पर काफ़ी विपरीत असर पड़ा है। सबसे चिंताजनक बात है सोशल मीडिया में फेक न्यूज, गाली गलौज, ट्रोलिंग और अश्लील भाषा का प्रयोग, जिसका असर आम जनता पर, खासकर बच्चों और किशोरों पर भी पड़ा है। लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिजिटल हिंदी की नई अवधारणा विकसित करनी होगी, जो शुद्ध भी हो, सरल भी हो और आधुनिक भी हो। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल हिंदी लेखन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को शुद्ध

0: हिंदी के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद भी अपनी पोस्ट, कमेंट और मैसेजेज में जितना हो सके शुद्ध, सुंदर और मर्यादित हिंदी का प्रयोग करें। तकनीकी के विकास के साथ हम सोशल मीडिया के प्रयोग को बंद तो नहीं कर सकते, हम इसमें सुधार करके हिंदी को व्याकरणनिष्ठ, शुद्ध और प्रभावशाली बना सकते हैं। युवाओं को जागरूक करके हम उन्हें हिंदी के प्रति शुद्ध लेखन और पठन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, भाषा वो है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त कर सके। अगर हम सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं शुद्ध हिंदी में व्यक्त करेंगे तो न केवल हमारी भाषा बचेगी बल्कि वह और समृद्ध भी होगी। सोशल मीडिया ने हिंदी को वैश्विक मंच प्रदान किया है। अब इस मंच का उपयोग हम सभी को हिंदी की गरिमा बढ़ाने, शुद्धता लाने और मर्यादा बनाए रखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं है, हमारी पहचान भी है। सामाजिक मीडिया ने हिंदी भाषा को सरल, लोकप्रिय और सुलभ बनाया है, किंतु इसके साथ ही भाषा की मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। हम सबको इसके प्रति सजग रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। सोशल मीडिया भाषा विकास में निश्चित ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: सोशल मीडिया का हिंदी भाषा पर प्रभाव, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवकांत श्रीवास्तव की वार्ता। और इसी के साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात के 8:10 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंदन दास की गाई चंद गजलें।

जुदाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की। गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों को अभी आपने सुना फिल्म धड़कन में, और इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन

0: लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग

0: उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48

0: इस टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज़ पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तईं मुल्क के अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजू हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैनुफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है, और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजा करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोग के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोज़गार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नज़रियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तिफादा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने

0: मांग को बढ़ाना है। ये आकाशवाणी है। इत्तिलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज जयपुर में वाक़ आकाशवाणी की इमारत में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में FM ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी, जिससे लोगों को वसी तर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है, जो कि मुल्क के जमहूरी सफ़र में एक तारीखी संगे मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज़ में शेख मोहम्मद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भारत की क़्यादत करने में जनाब मोदी की मुसलसल कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हालिया बरसों में मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त को उजागर किया। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बा इख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोबा खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत सी अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीब के लिए मकान मोदी हुकूमत की तवज्जो का अहम शोबा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रियासतों को 4 करोड़ से ज़्यादा मकानात देही इलाकों में इकतसादी तौर पर कमज़ोर कुनबों के लिए सौंपे गए हैं। गज़ा की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी इसी दौरान PM सेवा निधि स्कीम के तहत अभी तक खांचा फरोशों को 1,12,00,000 से ज़्यादा कर्ज फराहम किए गए हैं। भारत के समाजी तहफ़ का अहाता जो 2015 में 19% था, इसमें तेज़ी के साथ इजाफा होकर 2025 में 64% से ज़्यादा हो गया है। आकाशवाणी से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े हमलों से खबरदार किया है और उसने मुतनब्बे किया है कि वो ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के अहम हिस्सों का कंट्रोल हाथ में ले लेगा। इस तरह मगरबी एशिया में कशीदगी और ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर इंतहाई सख्त हमला करेगा और बिलाखिर तवानाई के अहम असासों का कंट्रोल हासिल कर लेगा, जिसमें खर्क जजीरे का ऑयल टर्मिनल शामिल है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीका और ईरान लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इधर ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दून में निशाना बनाकर जवाबी हमले किए और इस तरह खित्ते में तनाज़े के वसत इख्तियार करने के सिलसिले में तशवीश पैदा हो गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 158वीं रेगुलर कोर्स और 141वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की परेड का जायज़ा लेंगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 2 मरतबा ओलंपिक मेडल याफ्ता सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरवा को 22-20, 21-12 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला चेन सू यू से होगा। एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जिसमें दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड़ को 21-13, 21

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। और कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू आपके साथ। साथियों, आज है 11 जून और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। साथी, खेल केवल मनोरंजन का साथी नहीं बल्कि ये हमें अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन देने का संदेश भी है। दोस्तों, बचपन का नाम आते ही सबसे पहले खेल कूद की यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं। कभी कबड्डी, कभी खो खो, कभी गिल्ली डंडा तो कभी क्रिकेट। खेल हमें जीतने के साथ साथ हार को स्वीकार करना भी सिखाते हैं। तो भाई, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है प्रोग्राम का वो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आप सबसे मेरा सवाल ये है कि आप हमें ईमेल करके बताइए आपके अपने बचपन का पसंदीदा खेल कौन सा था और उससे जुड़ी कुछ यादें हमारे साथ साझा करिए हमें ईमेल करके। और हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो जल्दी जल्दी से हमें ईमेल करिए अपने बचपन की जुड़ी कुछ खेल से यादें और साथ ही सुनिए अपने फरमाइशी गीत। फिलहाल हमें इंतज़ार है आपके ईमेल्स का, तब तक आप इंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू आपके साथ। साथियों, आज के इस डिजिटल युग में बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर पर अपना अधिक समय बिताते हैं, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रतिदिन कुछ समय खेल कूद के लिए निकालना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। तो भाई, हम कोशिश करें कि हमारे घर में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको कुछ ना कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुँचे, दोनों को बेनिफिट पहुँचे। फिलहाल कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को, जो कि हमें आया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, और इसे हमें भेजा है सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने, और इन्होंने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ को फिल्म कटी पतंग में। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर यह प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट तक पहुँचा रहे हैं। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

आपके पत्र आपके मेल @gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर हमें इंतज़ार है आपके ढेर सारे ईमेल्स का, और साथ ही आपके फरमाइशी गीतों का, और साथ ही साथ क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो खेल से जुड़ी अपनी कुछ बचपन की यादें हमारे साथ साझा करिए। आपको एक बार मैं ईमेल एड्रेस फिर से बता दूँ, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और भाई हमारे पास एक ईमेल आ चुका है एडवोकेट वारिस अली खान जी का, और इनके साथ ये ईमेल भेजने वाले हैं इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। और ये ईमेल हमें लिख भेजा है इन्होंने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, और ये लिखते हैं कि मेरा बचपन का यानी इनका बचपन का जो खेल है, फेवरेट गेम है, वो है कैरम। और भाई कैरम को हम सब कैसे भूल सकते हैं, पहले के समय में जब हम सब भाई मैं तो जब अपनी नानी के घर छुट्टियों में जाती थी ना, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन घर का होता था, तो लोग घंटों तक हम सब मिलकर कैरम खेल सकते थे। इतना फेवरेट हम सबका कैरम होता है कि क्या ही बात बताऊँ मैं। बचपन की यादें ताज़ा कर दी आपने वारिस अली साहब। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

साथियों, कार्यक्रम में शामिल कर लेते हमारे आज के अगले ईमेल को, जो कि हमें आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट लोहा जिला खीरी से। और ये ईमेल हमें लिख भेजा है विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा ऋचा गुड़िया, सुरभि राजेश और विजय पांडे जी ने। और ये लिखते हैं कि जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। धैर्य, विश्वास और मेहनत हर कठिनाई को आसान बना देती है। बिल्कुल सही बात कही श्रोता।

हमारा जो जीवन है ये भी एक खेल की तरह ही होता है, कभी जीत होती है तो कभी हार होती है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं ना, अंततः मंजिल उन्हीं को मिलती है। फिलहाल कार्यक्रम में सुनवाते हैं इनकी पसंद का ट्रैक, फिल्म का नाम है सौतन की बेटी और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आ चुका है हमारा अगला ईमेल, और ये ईमेल हमें लिख भेजा है रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले। और ये लिखते हैं कि बचपन का जो इनका पसंदीदा खेल था वो था गोली खेलना। और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं हम उनको बता दें कि यहाँ गोलियाँ से मतलब है कंचे का खेल। तो भाई मैं यही कहूँगी कि आज भले ही मोबाइल और वीडियो गेम्स का दौर हो, लेकिन बचपन के उन कंचों की खनक और दोस्तों के साथ खेली गई वो बाजियाँ ना आज भी हमारी यादों में ताज़ा हैं।

और भाई आइए, अब वक्त है कार्यक्रम में इनकी पसंद का ट्रैक सुनने का। तो चलिए आपको सुनाते हैं फिल्म विधाता का गीत, आवाजें हैं आशा भोसले की और साथियों की।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 9:51 और हमारे पास पहुंच चुका है हमारा आज का अगला ईमेल। और ये ईमेल हमें लिख भेजा है संबलपुर कांकेरी से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव ने। और ये लिखते हैं कि कंचे खेलने में इनको बहुत मजा आता था बचपन में। छुट्टी वाले दिन सुबह से ही कंचे लेकर घर से निकलते थे और सारे दोस्तों के साथ मजे से खेलते रहते थे। जितने ज़्यादा कंचे जीतते थे उतने ज़्यादा मज़ा, और जितने हारते थे उतनी ज़्यादा उदासी। तो भाई सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। एक समय तो जब गांव और मोहल्लों में बच्चों की जेबें जो थी वो रंग बिरंगे कंचों से भरी होती थी। मिट्टी में छोटा सा गड्ढा बनाकर और एक निशाने पर कंचे मारकर खेलना, ऐसा खेल हुआ करता था अगर आप सबको याद हो तो। भाई क्या मज़े थे उन दिनों के। आज हालांकि हम ऐसे डिजिटल युग में आ चुके हैं कि इन सब की जगह हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली है, तो लेकिन हमें इन सब जो हमारे खेल हैं, पुराने खेल, इन सबको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। जब मौका मिले तो इनका लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए।

फिलहाल आइए आपको सुनवा देते हैं हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपकी पसंद पर। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फागुराम जी।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चला है रात के 9:56 और कार्यक्रम है हमारा अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर। तो जल्दी से शामिल कर लेते हैं हमारे आज के अगले ईमेल को जो कि हमें लिख भेजा है किसान रेडियो क्लब कुरसठ हरदोई से राम खिलावन अविनाश द्विवेदी विजय पांडे मनी राम देवेंद्र दीक्षित जी ने।

इसी ईमेल के साथ हम शामिल करेंगे एक और ईमेल, क्योंकि वक्त हमारे पास है बहुत कम। और ये ईमेल हमें लिख भेजा है विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी ने सांडी जनपद हरदोई से। और इनके साथ साथ कुछ नाम और भी ऐड करूंगी, वो हैं सोनम कुशवाहा, प्रहलाद कुमार मिश्रा, कुशराव कुशवाहा, आर के विद्यार्थी जी। और चलिए आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। हमें ईमेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

साथियों अब वक्त है आज के आपकी पसंद कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। आपका प्यार, आपका साथ और आपकी फरमाइशें ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान बने रहे, मैं मीनू आपसे अनुमति लेती हूँ कार्यक्रम समाप्ति की। नमस्कार।

हीर रांझा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है अवतार।

बंटवारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान का राग यमन में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान का राग यमन में सरोद वादन, और इसी के साथ ही आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड

0: research and manufacturing. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही है रीमा पाराशर।
3: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद आपका।
3: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
4: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
3: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
4: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
3: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
4: सबके साथ ही। मैं

0: अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से

0: से बात, यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़। देखिए, इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी? कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियाँ लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब।

0: करीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूं।
1: सर लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले, अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है, परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर,

0: और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं, तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे, एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
1: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
0: हमने अल नैनो की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाएं तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग है जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूं, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहां पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहां कम संभावना है, कहां ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टिकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टिकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ देश

0: उसको बहुत पसंद करता है और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो,

0: एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति ख़त्म कर दीजिए, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी, उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेंजी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति

0: व्यक्ति होगी उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा, बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे। और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीज़ें, आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
0: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो। और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं के लिए सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस ओर हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं और अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।